आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत अभी आप सुनेंगे सुधा माथुर द्वारा राग यामिनी बिलावल।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुधा माथुर द्वारा गाया राग यामिनी बिलावल सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार 6 दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और दो अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैराशॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पांचवे दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Neena Rakel. State governments of Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in protests over the alleged NEET UG examination irregularities. Bihar State Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all first information reports, FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on 26th of July. As per the official statement, person arrested on detained in connection with cases filed prior to the deadline will be released immediately. The government also guaranteed that no future direct or indirect action will be taken regarding incidents before the cut-off time. Assam's Home and Political Department also informed that cases had been registered in Assam in connection with the protests, resulting in the arrest of 13 persons. However, the state government has decided that no adverse legal action will be initiated by any of the police authorities within the state against those persons who have been involved in these protests. Foreign Secretary Vikram Misri met with Hua Chunying, Vice Minister of Foreign Affairs of China in Beijing, and reviewed the entire gamut of bilateral relations. Mr. Misri also discussed means of advancing the vision that India and China are partners. According to the Embassy of India in China, both officials also acknowledged the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas. Earlier in the day, Mr. Misri discussed ways to enhance bilateral exchanges between India and China at the political and people-to-people levels during his meeting with Ho Liang, Deputy Secretary General of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC, in Beijing. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador to India, Dr. Oleksandr Polishuk, yesterday, following the attack on commercial vessel MV Omorphi, in which an Indian national was killed. Conveying its serious concern over the incident, the ministry condemned such attacks on commercial shipping in the strongest terms, underscoring their adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation, and international commerce. The External Affairs Ministry said in a statement that the ambassador was requested to convey to the Ukrainian authorities India's strong concerns over the targeting of commercial vessels. The ministry reiterated that such actions endanger the lives of innocent civilian seafarers, are unacceptable and must be avoided. The Ministry of Tourism has signed a Memorandum of Understanding with Air India to promote India as a preferred global tourism destination under the iconic Incredible India brand. The agreement was signed in New Delhi in the presence of Union Tourism and Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat. The collaboration aims to leverage Air India's extensive domestic and international network along with Ministry's destination promotion initiatives to enhance India's global tourism visibility. Under the MOU, the Ministry and Air India will undertake joint promotional campaigns, co-branded destination marketing and tourism storytelling across digital and offline platforms. In the Commonwealth Games, India's Sharmila Dhankar clinched the nation's second gold medal, winning the women's shot put F-57 final in Glasgow last night. The victory saw India's medal tally reach 10 by the end of day 5, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze. With a season-best throw of 9.81 metres, Sharmila also made history as India's first ever Commonwealth Games gold medalist in para-athletics. The F-57 classification is for athletes with lower limb impairments, limb deficiencies or reduced muscle power. In the same time, Shilpa K. Shaila was upgraded to the bronze medal, further boosting India's tally. In weightlifting, Valuri Ajay Babu produced a remarkable performance to win silver in the men's 79-kilogram category. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं चिंतन।

संत कन्फ्यूशियस एक महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। वे हर व्यक्ति की समस्या को सुनते थे और उसका निवारण भी किया करते थे। एक बार उनके एक प्रिय शिष्य ने उनसे पूछा, श्रीमान, एक अच्छी सरकार के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से किन किन चीजों की जरूरत होती है? कन्फ्यूशियस ने काफी देर विचार कर जवाब दिया, एक तो पर्याप्त मात्रा में अन्न और धन धान्य होना चाहिए, दूसरा पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र भी होने चाहिए, और तीसरा उस राज्य के राजा के पास जनता का पूरा विश्वास होना चाहिए। शिष्य ने फिर सवाल किया, अगर राजा के पास अन्न और धन धान्य न हो

तो संत कन्फ्यूशियस ने फिर कुछ देर विचार किया और जवाब दिया, राजा के खुद के पास अन्न और धन धान्य न हो तो चिंता की कोई बात नहीं, राज्य से इस सब की पूर्ति हो सकती है। शिष्य ने फिर सवाल किया, और यदि राजा के पास अस्त्र शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न हो तो क्या राज्य का शासन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है? संत ने फिर कुछ देर विचार किया और जवाब दिया, यदि राजा के पास अस्त्र शस्त्र न हो तो भी राज्य का शासन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, बशर्ते उस राजा के मन में किसी के भी प्रति बैर या द्वेष की भावना न हो और न ही राजा लड़ाकू प्रवृत्ति का हो। शिष्य की जिज्ञासा फिर बढ़ती गई। उसने कन्फ्यूशियस से एक और सवाल किया, श्रीमान, यदि किसी राजा के पास अन्न और धन धान्य भी ना हो, अस्त्र शस्त्र भी ना हो और जनता का विश्वास भी न हो तो क्या राज्य का शासन चलाया जा सकता है? इस बार संत को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, किसी भी राज्य का शासन अन्न धन धान्य और अस्त्र शस्त्र के बगैर तो निश्चित रूप से चलाया जा सकता है, परंतु यदि राजा के पास जनता का विश्वास न हो तो राज्य का शासन कदापि नहीं चलाया जा सकता। कन्फ्यूशियस का यह जवाब सुनकर शिष्य बिल्कुल शांत हो गया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका, गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा आप सुनेंगे 8:45 पर।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

प्रस्तुत है रामचरितमानस के बाल कांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम के यश की कथा कही है।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आपने सुना, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। नीट प्रकरणे छात्राणां विरोध प्रदर्शनावधौ कथितारक्षकैः कृतानि कार्याणि अधिकृत्य विपक्षदलानां कोलाहलात् ह्यः संसदः उभे सदने लोकसभा राज्यसभा च स्थगिते अभवताम्। लोकसभायां ह्यः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतम्। एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति। तेषु दोषसिद्धानां कृते अधिकतमः 10-वर्षीयः कारावासः, 10-कोटिरूप्यकपर्यन्तः अर्थदण्डः तथा दोषसिद्धानां सम्पत्त्यधिग्रहणञ्च सम्मिलितमस्ति। प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चितुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेषद्रुतन्यायालयानां स्थापनं विधेयके अनिवार्यरूपेण विहितम्। एतदपि विधीयते यत् अपराधस्य सूचना आरक्षकस्थानके अभिलिखितदिनांकात् 2 मासाभ्यन्तरे अन्वेषणं सम्पन्नं भवेत् तथा च आरोपपत्रप्रस्तुतेः 3 मासाभ्यन्तरे न्यायनिर्णयः सम्पन्नः भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य पवनचन्दना नागाभरत डाका इत्येताभ्यां सह संवादम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् वार्तालापे विक्रम 1 इत्यस्य सफलता विशेषतया चर्चिता, अन्येष्वपि कतिपयेषु रोचक विषयेषु चर्चा जाता। प्रधानमन्त्री तयोः जीवनयात्रां भावियोजनाश्च श्रुत्वा हर्षम् अभिव्यक्तवान्। तेनोक्तं यत् तयोः ऊर्जा महत्वाकांक्षा सकारात्मक दृष्टिश्च भारतस्य निज अन्तरिक्ष परितन्त्रस्य सजीव भावनां प्रतिबिम्बयति। प्रधानमन्त्री स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य समूहस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। उत्तर प्रदेश प्रशासनेन उच्चतम न्यायालयः संसूचितः यत् अयोध्यास्थितस्य राममन्दिर न्यासाय प्राप्त दान राशेः कथित दुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं लखनऊ परिक्षेत्रस्य आरक्षक महानिरीक्षकस्य किरण एस इत्यस्य अध्यक्षतायां 4-सदस्यात्मकं विशेषान्वेषण दलं निर्मितम्। अस्मिन् दले एकः आरक्षक उपमहानिरीक्षकः, एकः वरिष्ठाराक्षक अधीक्षकः, एकक्ष अपर आरक्षकाधीक्षकः अपि भविष्यन्ति। उच्चतम न्यायालयेन राज्य प्रशासनं निर्देशितं यत् विशेषान्वेषण दले 5वें सदस्यरूपेण न्यायिक लेखा परीक्षकः अपि नियोज्यताम्। एतद्दलं 2 सप्ताहाभ्यन्तरे स्व प्रथम स्थिति प्रतिवेदनं न्यायालये समर्पयिष्यति। न्यायपीठं राममन्दिरदानराशेः कथित दुरुपयोगस्य तथा न्यासस्य वित्तीय लेखानां केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्वेषणार्थं प्रस्तुताः याचनाः शृणोति स्म। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य विशेष न्यायालयेन कथित राममन्दिर दान चौर्य प्रकरणे सर्वेषाम् 8 अभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः 14 दिनानि यावत् वर्धितः। भारतीय भारोत्तोलिका ज्ञानेश्वरी यादवः ह्यः ग्लास्गो नगरे आयोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदकतालिकायाम् 1 स्वर्णपदकं, 3 रजतपदकानि, 1 कांस्यपदकञ्च एवम् आहत्य 5 पदकानि सन्ति इति वार्ताः। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उधर असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य की किसी भी पुलिस प्राधिकरण

0: द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इस बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi interacted with Pawan Chandana and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. State governments of Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in the protest over the alleged NEET UG examination irregularities. Bihar's State Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all first information reports, FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on 26th of July. As per the official statement, persons arrested or detained in connection with cases filed prior to the deadline will be released immediately. The government also guaranteed that no future direct or indirect action will be taken regarding incidents before the cut of time. Assam's Home and Political Department also informed that cases had been registered in Assam in connection with the protests resulting in the arrest of 13 persons. However, the state government has decided that no adverse legal action will be initiated by any of the police authorities within the state against those persons who have been involved in these protests. Foreign Secretary Vikram Misri met with Hua Chunying, Vice Minister of Foreign Affairs in China, in Beijing and reviewed the entire gamut of bilateral relations. Mr. Misri also discussed means of advancing the vision that India and China are partners. According to the Embassy of India and China, both officials also acknowledged the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas. Earlier in the day, Mr. Misri discussed ways to enhance bilateral exchanges between India and China at the political and people-to-people levels during his meeting with Hong Liang, Deputy Secretary General of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC, in Beijing. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador to India, Dr. Oleksandr Polishchuk, yesterday following the attack on a commercial vessel MV OMORFI in which an Indian national was killed. Conveying a serious concern over the incident, the ministry condemned such attacks on commercial shipping in the strongest terms, underscoring the adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation, and international commerce. The External Affairs Ministry said in a statement that the ambassador was requested to convey to the Ukrainian authorities India's strong concerns over the targeting of commercial vessels. The Minister of Tourism has signed a Memorandum of Understanding MOU with Air India to promote India as a preferred global tourism destination under the iconic Incredible India brand. The agreement was signed in New Delhi in the presence of Union Tourism and Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat. The collaboration aims to leverage Air India's extensive domestic and international network along with the Ministry's destination promotion initiatives to enhance India's global tourism visibility. Under the MOU, the Ministry and Air India will undertake joint promotional campaigns, co-branded destination marketing and tourism storytelling across digital and offline platforms. In the Commonwealth Games, India's Sharmila Dhankar clinched the nation's second gold medal, winning the women's shot put F57 final in Glasgow last night. The victory saw India's medal tally reach 10 by the end of day 5, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze. With a season best throw of 9.81 meters, Sharmila also made history as India's first ever Commonwealth Games gold medalist in para athletics. The F57 classification is for athletes with lower limb impairments, limb deficiencies, or reduced muscle power. In the same event, Shilpa Keshila was upgraded to the bronze medal, further boosting India's tally. India Meteorological Department IMD has forecast very heavy rainfall today over parts of Chhattisgarh, Odisha, Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Madhya Maharashtra, Punjab, South Interior Karnataka, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Coastal Karnataka. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। आज आप सुनेंगे जसलीन कौर के गाए शब्द।

संगीती का कार्यक्रम में आज आपने जसलीन कौर के गाए शब्द सुने। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीना चौहान का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, नई सुबह अपने साथ एक नया सवाल लेकर आती है कि आज का दिन हमें क्या सिखाएगा। शायद जिंदगी हर सवाल का जवाब जो है ना वो तुरंत नहीं देती, लेकिन हर उगता हुआ सूरज ये जरूर कहता है कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है। कभी मुस्कुराहट बनकर, कभी किसी अपने की आवाज बनकर, तो कभी किसी अनजानी राह पर चलने की हिम्मत बनकर जिंदगी हमें आगे बढ़ना सिखाती है। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

यार, एक ऐसा एहसास है जो बिना दस्तक दिए दिल में उतर जाता है। पहले किसी की बातें अच्छी लगती हैं, फिर उसकी मुस्कान, और फिर धीरे धीरे उसकी हर अदा अपनी सी लगने लगती है। और जब दोस्तों प्यार सच्चा हो तो हंसी भी इजहार बन जाती है और खामोशी भी दिल की जुबान।

0: को साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो बिना किसी शर्त की जाती है। वो दूरियों में भी धड़कती है, खामोशियों में भी मुस्कुराती है और यादों में भी जिंदा रहती है। कभी किसी का नाम होंठों तक नहीं आता, लेकिन दिल की हर धड़कन उसी का पता पूछती रहती है। ऐसी ही मासूम, गहरी और रूह से जुड़ जाने वाली मोहब्बत का एहसास लिए ये गीत हर उस दिल को छू जाता है जिसने कभी किसी को सच्चे मन से चाहा हो। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब बस यहीं तक सफर था, लेकिन वही पल उसे असली ताकत से भी मिलवाता है। गिरना मंजिल का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का पहला कदम होता है। जब हम अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने बीते हुए कल से आगे निकल जाते हैं ना, तभी दिल कहता है कि अब फिर से उड़ चलें। उड़ान सिर्फ आसमान में नहीं होती, उड़ान तो सोच की होती है, सपनों की होती है और उस भरोसे की होती है जो हमें हर बार टूटकर भी फिर से खड़ा कर देता है। तो आइए अपनी उम्मीदों को फिर से पंख देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: इस समय आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग मेरे यानी मीना चौहान के साथ। दोस्तों, जिंदगी के सफर में मंजिल से ज्यादा मायने रखता है किसी का साथ। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं कि उनकी मौजूदगी ही हर मुश्किल को आसान बना देती है। उनके साथ होने से खामोशियां भी सुकून देने लगती है और दूरियां भी उम्मीद का रिश्ता बन जाती है। सच्चा साथ वही होता है जो खुशियों में मुस्कुराए और मुश्किलों में बिना कुछ कहे हाथ थाम ले।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
6: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
5: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
7: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
5: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
4: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाके।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram 1.
7: पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
6: बिहार एंड असम गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ केसेस एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट ओवर नीट एग्जामिनेशन। Bihar's Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on the 26th of July. We have more from a correspondent.
8: According to a public notice issued by the Home Department, no punitive, retaliatory or adverse legal action will be taken against any person who participated in the protest held anywhere in the state to 6 p.m. on 26 July. The legal process to withdraw all first information reports, complaints and show cause notices registered during this period will be initiated immediately. The government has also announced that all persons arrested or detained in connection with these cases will be released at the earliest. It has further clarified that no direct or indirect action will be taken against the individuals named in these cases in future. Savita Parikh, Akashwani Samachar, Patna.
6: Assam government has decided to withdraw all criminal cases registered in connection with NEET protests. Authorities have also been instructed to review all arrests and detentions made in connection with these cases and expedite the release of the arrested persons. After reviewing the circumstances surrounding the protest and taking into account the need to strengthen accountability and undertake systemic reforms in the examination and higher education ecosystem, the state government decided not to pursue further legal action against those involved. According to the order, no adverse legal action will be initiated by any police authority in Assam against persons who participated in the protests. The government also directed that the process for withdrawing all the registered cases, irrespective of the stage of legal proceedings, should be initiated promptly in accordance with the law. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 21st of this month when Prime Minister Narendra Modi had called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. The Prime Minister has also reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, NCPI, have also been invited to attend the alliance meeting. The Minister of Tourism has signed a Memorandum of Understanding, MOU, with Air India to promote India as a preferred global tourism destination under the iconic Incredible India brand. The agreement was signed in New Delhi in the presence of Union Tourism and Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat. The collaboration aims to leverage Air India's extensive domestic and international network along with the ministry's destination promotion initiatives to enhance India's global tourism visibility. Under the MOU, the ministry and Air India will undertake joint promotional campaigns, co-branded destination marketing and tourism storytelling across digital and offline platforms. In a social media post, Mr. Shekhawat said the partnership will leverage Air India's extensive global network and India's diverse tourism offerings to strengthen the country's presence in key international markets. He said that the collaboration will include joint destination campaigns, promotion of stopover tourism, and exploration of initiatives such as a Visit India Pass. The government has announced the setting up of a task force to support the toy sector and help India achieve a 5% share in the global toy market by 2032. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal made the announcement while addressing a stakeholder meeting on the toy sector organized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, in New Delhi. The Minister of Commerce and Industry said that the task force will focus on integrating the country's toy industry with global value chains, strengthening manufacturing capabilities, and improving ease of doing business. On the occasion, Mr. Goyal said the growth of India's toy industry reflects the country's progress towards the goal of Viksit Bharat. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website

0: Commonwealth Games. Meanwhile, Indian boxer Lovlina Borgohain is already assured of a medal at Glasgow 2026 after receiving a quarter-final bye in the women's 75kg event. Chirag Jha from Sports Desk.
1: President Draupadi Murmu has congratulated Sharmila Dhankar on winning the gold medal in the women's shot put F57 event at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In a social media post, the president said that by becoming India's first ever Commonwealth Games gold medalist in para-athletics, Sharmila has achieved a landmark feat. The president also congratulated Sarvesh Anil Kushare for clinching the silver medal in the men's high jump event at the Commonwealth Games. Further, President Murmu congratulated Valluri Ajay Babu on securing the silver medal in the men's 79kg weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated Bindya Rani Devi Soro Khaibam for winning bronze in the women's 58kg event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neena Arakkal.
2: Thank you, Abhishek. After protests, Parliament to debate tougher paper leak bill, leads Hindustan Times. Pradhan resignation fails to break Parliament logjam as opposition blocks business, headlines the Statesman. The Pioneer in its editorial piece, A Digital Fix for a Crisis of Trust, says restoring trust in examination system demands a secure and tamper-proof architecture, and who better than Nandan Nilekani to help build it. India's weightlifters continue to do the heavy lifting, bring home three more Commonwealth Games medals, reports Hindustan Times. Kiyogo Higashino, who made Japanese crime fiction a global obsession, dies at 68, reports the Indian Express. And finally, the Odyssey nears $1 billion at global box office, reports Financial Express. Well, the paper says Christopher Nolan's The Odyssey is well on course to become another global box office blockbuster. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those jailed under various charges. NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milans meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in the women's shot put event at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निजाम की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने विक्रम वन की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का अहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है। और दौलती मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी पवन चंदाना और नागा भारत दाका के साथ गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि उनकी बातचीत में विक्रम वन की कामयाबी नीज कई दिगर दिलचस्प मौजूदात पर खासतौर से तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कंपनी के दोनों बानी अफराद के सफर और मुस्तकबिल के उनके मंसूबों के बारे में वाकफियत हासिल करने के बाद मसर्रत का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तवानाई, जोश और मुस्बत अंदाजे फिक्र से भारत के खलाई शोबे के प्राइवेट इको निजाम के मुतहर्रिक जज्बे की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम के तहीन ने ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में भी विक्रम वन की कामयाबी की सताइश की थी।
4: विक्रम वन इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
3: बिहार सरकार ने उन अफराद के खिलाफ केस और दीगर कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है जिन्होंने नीट यूजी इम्तिहान में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर एहतजाज में हिस्सा लिया था। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: बिहार के महकमे दाखिला की तरफ से जारी किए गए एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक 26 जुलाई को शाम 6 बजे से कबल रियासत में कहीं भी एहतजाज में हिस्सा लेने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कोई ताजीरी, इंतकामी या नामुवाफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मुद्दत तक दर्ज कराई गई सभी FIR फौजदारी शिकायतों और वजह बताओ नोटिस वापस लेने के लिए कानूनी अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक वक्त की मजकूरा हद से कबल दाखिल किए गए केसों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए अफराद को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। सरकार ने यह यकीन दहानी भी कराई है कि इस मुद्दत से पहले के वाकयात के सिलसिले में मुस्तकबिल में कोई बराह रास्त या बिलवास्ता कार्रवाई नहीं की जाएगी। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
3: आसाम के उमूर दाखिला और सियासी उमूर के महकमे ने भी कहा है कि नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर एहतजाज के सिलसिले में रियासत में केस दर्ज किए गए थे और 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अलबत्ता रियासती सरकार ने यह फैसला किया है कि इन मुजाहिरों में शामिल होने वाले अफराद के खिलाफ रियासत के अंदर पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई नामुवाफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इंतखाबात में पेपर लीक होने के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतालिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाकये में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के तहत सरकार के अहद को दोहराया था। इधर तृणमूल कांग्रेस से अलहदा होने वाले ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI को भी NDA की मीटिंग में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस समझौते पर दस्तखत किए गए। इस इश्तराक का मकसद आलमी सतह पर भारत की सियाहती झलक को उजागर करने के लिए वजारत के इकदाम के साथ साथ एयर इंडिया के वसी अंदरून मुल्क और बैन-उल-अक़वामी नेटवर्क को बरूए कार लाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शेखावत ने कहा कि इस साझेदारी से अहमियत की हामिल बैन-उल-अक़वामी मार्केट्स में भारत की मौजूदगी को मुस्तहकम बनाने के लिए भारत की मुतनव्वे सियाहती सलाहियत उजागर हो सकेगी। सरकार ने खिलौनों के शोबे को तकवियत पहुंचाने और खिलौनों की आलमी मार्केट में 2032 तक भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने में मुआवनत के लिए एक टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में सनत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे के ज़ेर एहतमाम खिलौनों के शोबे के बारे में एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने कहा है कि ये टास्क फोर्स आलमी वैल्यू चेन के साथ मुल्क की खिलौनों की सनत को मरबूत करने, मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत को मुस्तहकम बनाने और कारोबार करने में सहूलत पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। इस मौके पर जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की खिलौनों की सनत की तरक्की से विकसित भारत के मकसद की समत मुल्क की पेशरफ्त की अक्कासी होती है। یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر

0: और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया गोनेन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की छह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब की छह सुर्खी है, पेपर लीक के खिलाफ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। अखबार प्रताप लिखता है, इंजीनियरिंग मसनूआत की बरामदात में 21% इजाफा, 5 गुना से ज्यादा की छलांग। अखबार ने तजारती जहाज पर हमले में एक भारतीय मल्लाह की मौत के वाक़े पर एहतजाज दर्ज कराने के लिए यूक्रेन के सफीर को तलब किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता के हाथों त्यागराज स्टेडियम में 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किए जाने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार इनकलाब ने ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामेनाई के इस बयान को अहमियत दी है कि अमन मुआहदा लबनान पर इसराइली हमलों के खात्मे से मशरूत। अखबारात की दीगर अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह है, गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद नेतन्याहू अमरीका रवाना।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निजाम की सताइश की है। वजीर आजम ने विक्रम वन की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का अहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं फतेह अली का सितार वादन। ये पेश कर रहे हैं राग नट भैरव। इनके साथ तबले पर संगत की है मोहम्मद अकरम ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे फतेह अली का सितार पर बजाया राग नट भैरव। इनके साथ तबले पर संगत की थी मोहम्मद अकरम ने। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
2: आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं।
3: 18 जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है जिसे एक एग्जोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को DNA राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल DNA सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक DNA में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
2: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है। लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
4: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है। जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग जगह वहां पर आयोजित की गई 2010 में। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता है। तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया। आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते हैं। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण। इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसमें 9 टाइगर रिजर्व्स को शामिल किया गया। आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहां पर हैं।
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
4: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो है वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना। इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-Stripe ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-Stripe ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है। यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित

0: कैमरा ट्रैप है, उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए। जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए, या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पे निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। IIT कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों है।
2: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये हैं धरती में बहुत सारे, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट से नहीं बनते हैं। उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे NdFeB बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो एनडी जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो एनडी की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी बजाय की कि जब हम एनडी और एफई को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्युमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
2: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी। कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं,
2: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
3: जुलाई का ये महीना सिर्फ मानसून की फुहारे लेके नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुरानी डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीढ़ी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।
1: श्रोताओं, इसी के साथ आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
4: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है।
5: अभी आप विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
1: अभी आप पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम की सराहना की थी।
3: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
2: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वो 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। वहीं असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि दिल्ली में देर रात छात्रों पर गोलीबारी हुई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक इस समय संसद भवन में आयोजित की जा रही है। इस बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक प्रतिष्ठित ब्रिक्स देशों के संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में संस्कृति से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स देशों के कलाकार रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधिमंडल जनजातीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन की

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 10:10 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हर एक सुर में आपका ही एहसास हो, हर एक सुर में आपका ही एहसास हो, जो गीत बजे यहाँ पर वो आपके लिए खास हो। आपकी फरमाइश से महके ये फजा सारी, जैसे हर एक लम्हा आपके प्यार के साथ हो। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस प्यारे से गीत से।

दोस्तों, आपके मेल हमारे पास लगातार आ रहे हैं और जैसे ही हमारे प्रोग्राम का समय शुरू होता है और उससे पहले ही आपके मेल आने शुरू हो जाते हैं, तो इससे पता लगता है कि आप हमारा कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुनते हैं। और पढ़ते हैं, आपकी सबसे पहली फरमाइश जाफराबाद मराठवाड़ा से हैं। सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, कुमार सईद, कुमारी प्रणाली, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी हर्षता देशमुख। और ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशाल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी, इनकी फरमाइश आई है नेपा नगर पद्मा टॉकीज से। और ये फरमाइश हमारे पास आई है रोशन देवांगन की, इन्होंने लिखा है, आदरणीय प्रस्तुतकर्ता महोदय, आपकी मधुर प्रस्तुति और गीतों का सुंदर चयन कार्यक्रम को बेहद आनंददायक बना देता है। आपकी आवाज़ और समर्पण के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे ही हमारा मनोरंजन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी कि आपने हमें इतना सराहा, और हम कोशिश करेंगे कि अपना कार्यक्रम और बेहतर बना सकें। रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। और कुछ हमारे श्रोता हैं जो बार बार फरमाइश करते हैं, पर कोशिश हमारी यही रहती है दोस्तों कि एक ही बार आपका नाम शामिल किया जाए, क्योंकि हमें सबकी फरमाइश को पूरा करना होता है। बालोद छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव, डोली बेबी, पूजा तामूरिया, राधिका, प्रभा देवी तामूरिया और अल कबीर। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी फरमाइश कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। छोटा सा एक सफर और बहुत लंबी जिंदगी, छोटा सा एक सफर और बहुत लंबी जिंदगी, आपका साथ मिल गया तो संवर गई जिंदगी। बिल्कुल दोस्तों, आपका साथ अगर हमारे साथ होता है ना, तो हमारे अंदर भी एक उत्साह सा पैदा हो जाता है कि कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा बनाया जाए। तो पढ़ते हैं आपकी ये अगली मेल। ये आया है हीरामन शेंदे का और इन्होंने भी अपनी फरमाइश भेजी है। अगली फरमाइश हमारे पास

साई है, महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभप्रसाद अरण्य, राखी तृप्ति, ये पूरे परिवार ने अपनी फरमाइश भेजी है। और चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और ये फरमाइश हमारे पास आई है बबलेश पंवार की। इन्होंने हमें नमस्कार बोला है, नमस्कार आपको हमारा। और बीकेपी परिहार, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से, इन्होंने हमें कहा है हार्दिक नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार। बेहतरीन प्रस्तुति के साथ साथ बेहतरीन नगमे आप सुनवाते हैं, हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आनंद उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ज़र्रा नवाजी का बहुत शुक्रिया। तो अगली फरमाइश हमारे पास आई है उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, इनका मेल हमारे पास आया है जमशेदपुर से। और अगली फरमाइश हमारे पास है मानसरोवर गार्डन दिल्ली से, संगीता, सरोज, सुखविंदर, गुरदयाल जी, प्रीति, सिमी और इशिता की, और हिसार से हैं सचिन, वीना, आदित्य और रश्मि। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, हमें भी चैन तभी आता है जब हम आपकी सारी फरमाइशें पूरी कर दें। तो अगली फरमाइश हमारे पास आई है गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, हरजिंदर सिंह भाटिया की ये फरमाइश हमारे पास आई है। और चोखंदी बुलंद शहर से ये हमारे नियमित श्रोता हैं और इनकी फरमाइश हमारे पास हमेशा ही आती है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू, भाविक सिक्का, और जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित। इन्होंने कहा है कि हमें कोई भी अपनी पसंद का गीत सुनवा दीजिए। भंवरपुर से हैं राधे श्याम देवांगन, चंपा देवांगन, नेहा, राजू, जगदीश देवांगन, हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा, पूनम गगनेजा, विशाल गगनेजा, इनका फिर से हमारे पास मेल आया है, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अरण्य आनंद, सत्यमानंद, झारखंड से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है कि दुनिया के लिए तुम सिर्फ एक व्यक्ति हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया तुम हो। और यही एक दोस्त के महत्व और आपके जीवन में उनके खास स्थान को एक वाक्य में बयां कर देता है। तो दोस्ती जो है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, और ये है कि दोस्त अच्छा और सच्चा होना चाहिए। तो पढ़ते हैं अगली फरमाइश हमारे दोस्तों की। ये फरमाइश आई है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, इन्होंने लिखा है कि हम भी आपके नियमित श्रोता हैं और बड़ी शिद्दत से कार्यक्रम सुनते हैं। गुजारिश है आपसे, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और आपका हर पल खुशियों से भरा भरा हो। बिल्कुल दोस्तों, और आपकी इन दुआओं के लिए भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप हमारे लिए इतनी दुआएं करते हैं। और अगली फरमाइश हमारे पास ये आई है मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से हैं, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा, सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, आरव खुराना, एस के पप्पी, ग्वालियर से ये फरमाइश थी हमारे पास। और उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम में अभी मेरे जीवन साथी का खूबसूरत नगमा चल रहा था, लाजवाब प्रस्तुति के लिए आपका शुक्रिया, और कृपया किसी भी गीत में शामिल करें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, इनका हमने पहले मैसेज पढ़ा है, तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। दोस्तों, आप सब की फरमाइशें हमारे पास लगातार आ रही हैं और समय भी बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो कोशिश है कि आप सब की फरमाइशों को पूरा किया जाए। और ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है सुदर्शन मुखी की। मुरादाबाद धूलापुर से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय, हिमांशु। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, रविंद्र सिंह छाबड़ा। रघुवीर नगर से दिलावर खान हसीना, बानो एलिजा नायाब और लड्डू। जिनेंद्र श्रोता संघ महाराष्ट्र से हैं रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई और इनका पूरा परिवार। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, दंतरेंगी से हैं ये, और इन्होंने लिखा है कि आपका कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, आप हमारा मेल शामिल करें। हमने आपका मेल शामिल कर लिया है और आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हरियाणा से हैं अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट्स,

लाइंस लिखी हैं। इन्होंने लिखा है कि इंद्रप्रस्थ की गूंज में एक जादू सा छाया है, अर्चना सचदेवा ने फिर समा बेहद सुरीला बनाया है। शब्दों में है मिश्री घुली, आवाज में है वो कशिश, हर सुनने वाले के दिल की पूरी होती जैसे ख्वाहिश। जबरदस्त अंदाज उनका हर दिल को छू जाता है, रेडियो ऑन करते ही चेहरा खुद ब खुद मुस्कुराता है। सुरों की इस महफिल की वो एक ही रानी है और उनकी हर प्रस्तुति बड़ी लाजवाब है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है ऐसा लग रहा है, पर शुक्रिया बहुत बहुत। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है दत्तरेंगी से, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, और घनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। इन्होंने लिखा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत मक्कड़, कमाल सुहानी और पिंगा वाला चौक जालंधर से ये हमारे पास मेल आया है। पंकज शर्मा, और ये अगला मेल है शीशपाल वर्धान का। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, इनका मैसेज हमारे पास आया है मंदिर वाली गली कुरावाली से। और ये हमारे पास अगला मेल आया है कोयला सोल्जर कसम। अच्छा, इन्होंने ये लिखा है कि इन इन फिल्मों के आप गीत सुनवा दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे अपने प्रोग्राम में ये सुनवा पाएं। मेरठ कैंट से ये दिग्दर्शन और कविता गौड़ का ये मेल आया है, तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: बिल्कुल दोस्तों, कई बार अजनबी भी इतने प्यारे हो
1: जी
0: जाते हैं कि पता ही नहीं लगता। और ये हमारे पास अगली फरमाइश आई है, इन्होंने लिखा है कि अर्चना जी, आप जब आती हैं तो हमारी मेल को गुम कर देती हैं। ऐसा तो नहीं है दोस्तों। शाहदरा दिल्ली से हैं ये, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशुरी धान खुराना। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हम आप सभी के मेल को शामिल करें, और हमारा ऐसा किसी से कोई भी वो दुश्मनी तो है नहीं, आप सभी हमारे दोस्त हैं। और ये फरमाइश हमारे पास आई है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भारत मक्कड़, सहानी जालंधर से, मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। और इन्होंने लिखा है कि हमसे कोई नाराज़गी है कि आपने हमारा मेल शामिल नहीं किया है, तो हमने आपका मेल शामिल कर लिया है। और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से फिर से ये इन्होंने का मैसेज आया है, तुलसी मस्किन जी का। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान, बेबी गरवी। उत्तर प्रदेश से हैं यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। और ये फरमाइश हमारे पास आई है डोई राणा जी की, नेहरू विहार दिल्ली से, आदिल कुमार गुन्नौर से, राशिद हुसैन अंसारी। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, अब समय समाप्त हो चला है और अब आपकी फरमाइश कार्यक्रम से अपनी दोस्त अर्चना को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आगे आने वाले कार्यक्रम। नमस्कार।

0: अभी आप आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इन द प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया था। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वो 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट पवन चंदना और नागा भारत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम एक की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम एक भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम की सराहना की थी।
2: विक्रम 1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में नवविकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। इन परियोजनाओं से उत्तर भारत भोपाल की रेल और सड़क संपर्क और मजबूत होगा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता।

अभी आपने गुरदास मान की आवाज़ में ये गीत सुना। इसी के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में दिव्यांश श्रीवास्तव का संतूर वादन राग बसंत मुखारी में। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप दिव्यांश श्रीवास्तव का संतूर वादन सुन रहे थे, राग बसंत मुखारी में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शैला और बिंद्या रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के

0: her an dön.
1: दोस्तों कहते हैं मौसम कुदरत का आईना है जो हर पल अपना रंग बदलता है। कभी धूप की गर्मी और कभी बारिश की ठंडक, कभी सर्द हवा का एहसास। और मौसम सिर्फ बाहर से नहीं बदलता बल्कि हमारे मन और सेहत पर भी असर डालता है। इसीलिए हर मौसम का स्वागत कीजिए और हम भी आपका स्वागत करते हैं। तो आज के कार्यक्रम घर आंगन के इस प्यारे से शो में मैं हूँ आपकी दोस्त रहो सिमरन कौर,
2: और स्वीकार कीजिए रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और आप हमें सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर।
2: जी, और सिमरन काली घटाएं छा गई हैं और बारिश बरस रही है, जगह जगह बारिश हो रही है और मन भी खिल उठा है। लेकिन हम तो ये कहेंगे जहां भी हो संतुलित बारिश हो, और बारिश के मौसम में कुछ छोटी छोटी सावधानियां बहुत काम आती हैं। और वही जो है हमारा सवाल है आज हमारे श्रोताओं से कि बारिश के मौसम में आप कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं छोटी छोटी सी। तो ये इस सवाल का जवाब हमें लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत, फिल्म थी प्यासा सावन और आवाज थी सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की।
1: जी। और जहाँ एक और बारिश हो रही है, मेघ गरज बरस रहे हैं, तो आज का दिन है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस सिमरन। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की बस हमारी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे जो अस्तित्व है उसका आधार है जो पेड़ है, नदियां, पहाड़, जंगल, पशु पक्षी, स्वच्छ हवा, ये सभी मिलकर ही तो हमारी धरती को जीवन प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा रश्मि जी आपने। और लेकिन बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण की गंभीर नुकसान हो रहा है।
1: और देखिए जो ये आज का दिन है ना, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को समझाना कि अगर हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो भाई आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगी, स्वच्छ
0: बिल्कुल
1: वातावरण कैसे मिल पाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा। और हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या बड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये सच भी है कि छोटे
1: जिम्मेदारी है कब
0: बिल्कुल
1: हमें लगता है ऐसा,
0: और लेकिन ये सच भी है कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: जैसे हम मिलकर एक पेड़ लगा सकते हैं या घर में अपने पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग कर सकते हैं, और जब आप कमरे से निकलें तो भाई बिजली का जो बटन है वो बंद कर दें और बिजली की बचत करें और अपने आसपास भी स्वच्छता बनाए रखें।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वास्तव में हम अपने भविष्य की रक्षा कर रहे होते हैं। प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ देती है और हम अब हमारी बारी है कि हम उसे कुछ लौटाएं।
1: तो क्यों ना हम एक संकल्प लें आज के दिन कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे और इस धरती को हरा भरा रखने में अपना योगदान करेंगे। याद रखिए, प्रकृति बचेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल सही।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौंडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में गीत फिल्म थी नज़दीकियाँ। और
1: सिमरन, हमें ये मेल आ चुकी है जो हमने सवाल पूछे थे। मधु किरण जी दिल्ली से कह रही हैं कि मैं तो अपने घर के आसपास और छत पर पानी खट्टा नहीं होने देती, बाजार से कटे हुए फल नहीं खरीदती और मच्छरों से बचने के लिए उचित साधनों का भी प्रयोग करती हूँ, लेकिन भाई बरसात में नहाने से जो आनंद आता है ना, वही वो तो मैं बता ही नहीं सकती। और फोड़े फुंसी भी नहीं होते, त्वचा के जो रोग हैं उनसे भी निजात मिलती है। और एक और मेल हमारे पास आया है
0: कौन सा है?
1: जी, जो हमेशा सबसे पहले मेल करते हैं,
0: सब
1: नवीन
0: वही मैं
1: भाटिया
0: सोच रही
1: जी।
0: थी, आज रश्मि जी ने पहले वो वाला पढ़ दिया और नवीन भाटिया जी का रह गया। चलिए आप पढ़ दीजिए।
1: मोतीनगर नई दिल्ली से कह रहे हैं कि मैं बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं हम लोग, और मजबूरी में अगर बाहर जाना पड़े तो अम्ब्रेला, रेनकोट और अपनी स्कूटी की डिग्गी में भी हम रख लेते हैं। तो भाई जैसा कि कहा कि बाहर का खाना अगर आप खाते हैं ना, तो
0: बिल्कुल।
1: रहता है कि बीमार पड़ने का थोड़ा डर रहता है
0: कितना
1: बारिश के मौसम
0: मौसम
1: में।
0: है, तो इस मौसम में तो सावधानी बहुत ही अच्छी है कि ऐसा ही
1: जी
0: होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि लिवर को प्रभावित करता है, अगर उसमें कोई भी देर से कटा हुआ रखा हुआ ढका हुआ ना हो। और लिवर से जुड़ी हुई जो बीमारी है हेपेटाइटिस, आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, तो
0: बिल्कुल
1: उसके
0: सही,
1: बारे में आप कुछ बताना चाह रही थी।
0: बिल्कुल। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग लिवर यानी यकृत को प्रभावित करती है, और ये वायरस के संक्रमण दूषित भोजन और पानी, असुरक्षित रक्त चढ़ाने और संक्रमित सुई के उपयोग और असंतुलित जीवन शैली के कारण हो सकती है।
1: जी, और भाई ये जो बीमारी है इसके प्रति जागरूकता पैदा करना और इसके बचाव के उपयोगों की जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसके लक्षणों के बारे में हम थोड़ा समझ लें कि आरंभिक जो लक्षण है, थकान महसूस होना, भूख कम लगना, बुखार, उल्टी, पेट में दर्द, आंखों या त्वचा का पीला पड़ना, ये सारे हेपेटाइटिस
0: और
1: के
0: रश्मि
1: लक्षण हैं।
0: जी, ये तो अच्छी बात है कि हेपेटाइटिस से बचाव संभव है, इसीलिए हमें कुछ कुछ खास बातों

0: ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्वच्छ भोजन, पानी का सेवन करें, केवल सुरक्षित और नई सुई का उपयोग सुनिश्चित करें, और रक्त चढ़ाने से पहले उसकी जांच की पुष्टि जरूर कर लें और डॉक्टर की सलाह से टीकाकरण अवश्य करवाएं।
1: जी बिल्कुल। और जो इस विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आइए हम संकल्प लेते हैं कि अपने लिवर का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और समय समय पर जांच भी कराएंगे और हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने में अपना योगदान देंगे, तो तभी तो हम बरसात के मौसम का आनंद ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी स्वामी। और रश्मि जी, एक मेरे पास मेल आया है सुनैना गुप्ता का मेरठ से।
1: जी
0: इन्होंने ये लिखा है कि बारिश के मौसम में सबसे अच्छी सावधानी, अगर आप भीग जाएं बाहर से आएं, तुरंत गीले कपड़े बदल दें क्योंकि ठंड लग जाएगी और बुखार आ जाता है। इससे अच्छा है लौंग तुलसी अदरक वाली चाय जरूर पिए। तो
1: जी
0: हम
1: और
0: सबसे पहले यही काम करते हैं।
1: सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति अगर और जुड़ गए हैं सोनीपत से और कह रहे हैं कि बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, घर का ताजा भोजन करना चाहिए। ये मेल हमें प्राप्त हुई है और साथ ही एक और हमें मेल प्राप्त हुई है, सुरभि कह रही हैं मयूर विहार से कि बाहर का खाना तो न खाएं लेकिन गीले जूते कपड़े बदल लें, पैरों को सूखा रखें और अगर फिसलन वाली जगह है वहां पर धीरे चलें। विशेषकर वो कह रही हैं बुजुर्गों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है और बहुत तेज बारिश हो या जल भराव हो तो अनावश्यक यात्रा से भी बचें। और साथ में बहुत अच्छी उन्होंने एक बात कही है कि मौसम की चेतावनी और स्थानीय प्रशासन की सलाह पर अवश्य ध्यान दें। तो सुरभि जी, बहुत अच्छी सलाह के लिए आपका हम धन्यवाद
0: जी,
1: करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और रश्मि जी, अब बात कुछ करें, कुछ खास
1: जी
0: मजेदार बात
1: जरूर।
0: करें। बात करते हैं मैट्रिमोनियल साइट पर ध्यान देने योग्य बातों की।
1: भाई वाह, मतलब सीधे बारिश
0: अच्छा,
1: से आप विवाह की ओर मुड़ गई हैं।
0: अब
1: हाँ
0: विवाह, क्योंकि आज के दौर में रिश्ते ढूंढने का तरीका काफी बदल गया है।
1: जी
0: पहले जहां परिवार रिश्तेदारों के माध्यम से रिश्ते तय होते थे, वहीं अब मैट्रिमोनियल वेबसाइट और ऐसा भी लोगों की पहली पसंद बन गया है। क्या
1: जी
0: करें?
1: लेकिन भाई ये तो ठीक है कि भाई ये देखना पड़ता है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स का जब आप उपयोग करें ना तो कुछ बातों का ख्याल अवश्य रखें। अब सबसे पहली बात तो ये है कि उस प्रोफाइल की सच्चाई को जांचें। किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइल को देखकर तुरंत विश्वास न करें। उसकी शिक्षा और नौकरी और पारिवारिक जानकारी उसको अच्छी तरह से समझें और जहां तक संभव हो जानकारी की पुष्टि भी करें।
0: और इसके अलावा दूसरी बात ये कि अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें और शुरुआत में अपना घर का पता, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। ऑनलाइन सुरक्षा हमेशा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: जी और अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत पड़े तो फिर ऐसा ना करें, कुछ बातचीत जरूर करें, एक दूसरे को समय दें और वीडियो कॉल या व्यक्तिगत मुलाकात से पहले थोड़ी सावधानी बरतें। पहली मुलाकात हमेशा किसी सार्वजनिक स्थल पर करें या परिवार या करीबी लोगों को इसकी जानकारी अवश्य दें।
0: और इसके अलावा, अगर वीडियो कॉल का व्यक्तिगत मुलाकात से पहले की बात जो आपने की वो भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो कॉल में भी ये ठीक नहीं रहता कि हम एक दूसरे के साथ जब बातें करते
1: सावधानी
0: हैं,
1: हमें रखनी
0: सावधानी बरतनी
1: चाहिए।
0: चाहिए
1: जी
0: हमेशा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी आर्थिक लेन देन से बचें। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से पैसों की मांग करता है तो एकदम होशियार हो जाए, और धोखाधड़ी का संकेत ये हो सकता है।
1: देखिए, अब समय बदल रहा है दोस्तों, तो मैट्रिमोनियल साइट्स अच्छे रिश्ते ढूंढने का एक बेहतरीन माध्यम हो सकती है, लेकिन समझदारी और सावधानी के साथ। तो जो एक सही रिश्ता जो है वो विश्वास से बनता है, सम्मान से बनता है और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो पारदर्शिता पर आधारित रहता है। तो सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लीजिए और सुरक्षित रहिए।
0: बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत, फिल्म थी वक्त की दीवार और गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। रश्मि जी, एक मेल आया है।
1: जी बोल बताएं।
0: ये आया है चंद्र विहार।

0: पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहें और खुले मैदान से में रहें, और घर में जो बिजली के तार और प्लग हैं, वो स्विच, वो गीले हाथों से ना
1: ना
0: छुए। तो ये
1: छुए।
0: भी सावधानी जरूरी
1: बहुत
0: है।
1: बहुत
0: अगर
1: बड़ी
0: पानी
1: सावधानी है।
0: एक अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और पानी भरा हुआ है, तो ध्यान रखें कि थोड़े बिजली खंभों से बच कर रहे।
1: क्योंकि इस
0: बहुत
1: समय
0: अच्छी
1: ना
0: जानकारी।
1: बिल्कुल, और इस समय रश्मि जी क्या होता है कि गीले हम हाथ तो लगा देते हैं जल्दी जल्दी स्विच पर, एकदम देखते भी नहीं है कि
0: जी
1: घर में आए और दरवाजा खोला और लगा दिया, तो उससे
0: जी
1: फिर वो वही दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा,
0: जी
1: है ना।
0: और ऐसा भी होता है सिमरन कि जब बारिश का समय होता है तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होता है कि सीलन वगैरह ना हो, जैसा कि आपने बताया। तो अगर सीलन का ध्यान रखना है और हम चाहते हैं कि घर में खुशबू बनी रहे, तो
1: मुझे
0: एक
1: वही
0: जड़ी
1: चीज
0: बूटी
1: याद आ
0: ऐसी
1: रही
0: है जो बहुत
1: बिल्कुल
0: काम की है। जड़ी
1: सही
0: बूटी
1: कहा,
0: तो नहीं है बल्कि अच्छी खासी पेड़ होता है,
1: पेड़ होता
0: और
1: है
0: वो है चंदन
1: सुंदर।
0: का पेड़।
1: क्योंकि ये सच है कि ये रोग मुक्त और त्वचा के लिए प्रसाधनों में जो है वो यूज होता है चंदन, है ना।
0: जी इस्तेमाल
1: मतलब
0: होता
1: इस्तेमाल
0: है।
1: होता है, और खास तौर पर कपूर, नींबू, खीरा, गुलाब और पुदीना, पुदीना का जो निचोड़ होता है वो भी इसमें यूज होता है, जो हमारे हम जो जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे क्रीम, पाउडर, कुछ कई चीजें इस्तेमाल करते हैं सौंदर्य प्रसाधन के लिए,
0: आप
1: उसमें
0: कहना
1: भी यूज
0: चाह रही हैं,
1: होते हैं
0: आप कहना चाह रही
1: चंदन की तरह,
0: हैं,
1: चंदन की तरह।
0: जी,
1: जी हाँ।
0: आप कहना चाह रही हैं कि अगर हम रोग मुक्त त्वचा अगर चाहते हैं तो चंदन के साथ ये सब चीजों का भी इस्तेमाल होता है। और इसमें अगर हम चंदन की बात करें तो इसमें सिर्फ औषधीय गुण ही नहीं होते बल्कि ये प्रत्यक्ष रूप से त्वचा को प्रभावित करते हैं और दर्द में भी आरामदायक होते हैं। और अगर सौंदर्य प्रसाधन को ले लीजिए तो ये सारी जड़ी बूटियां तो इस्तेमाल होती ही हैं।
1: और अगर हम बात करें चंदन की, तो भारत में लोकप्रिय चंदन का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, इसकी लकड़ी, इसका पाउडर, इसका लोशन, तीनों ही तरह से काम में लाया जा सकता है।
0: जी और त्वचा के लिए तो ये बहुत लाभकारी होता है। भाई भारत में जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि चंदन से सौंदर्य और त्वचा दोनों की रक्षा होती है, जलन और खरोंचों को भी दूर करता है और त्वचा को कम उम्र दिखाने में चमत्कारी प्रभाव देता है।
1: और ये सभी तरह की त्वचा के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि ये हल्का लोशन होता है, इसीलिए रूखेपन को दूर करके चेहरे की चमक लाता है, और चंदन युक्त क्रीम त्वचा को प्रदूषण, सूर्य की तेज धूप से भी बचाती है।
0: जी और सिमरन अगर आपके पास चंदन की लकड़ी का छोटा सा भी टुकड़ा है और उसको अगर आप रगड़ लें और उसका जो लेप है माथे पर लगा लें, तो विश्वास कीजिए ये गर्मी के मौसम में ठंडक भी देता है, खुशबू भी देता है और आपके मन मस्तिष्क को बिल्कुल तरोताजा कर देता है। तो रूखेपन को भी दूर करता है और चंदन युक्त जो क्रीम होती है वो तेज धूप से जैसे बचने के लिए आजकल कहते हैं ना सनस्क्रीन, तो जो उसका लेप होता है एक तरह से सनस्क्रीन का भी काम करता है। और चंदन का तेल कई प्रसाधनों में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी भीनी भीनी जो खुशबू है भाई वाह, उसके तो क्या कहने। तो चाहे बारिश का मौसम हो या गर्मी का, हर मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो क्या कहते हैं, चंदन एक रूपनिक।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में गीत, फिल्म थी आंगन की कली।
1: जी,
0: और
1: और कितना खूबसूरत बोलते हैं सिमरन, भाई सुख के लिए पड़े दुख भी सहना, है ना। तो भाई अगर आपको सुख चाहिए जिंदगी में तो ये तो एक पहिया है, एक दुख आता है उसके बाद सुख आता है, और
0: बिल्कुल
1: यही आप शायद मुझे लग रहा है अगली
0: बात
1: बात
0: ही करने
1: बताने
0: है,
1: वाली
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बात ही कुछ
1: लेकिन
0: ऐसी
1: इस
0: था।
1: बात से पहले हम कुछ मेल शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आए हैं, आप कहें तो शामिल करें।
0: बिल्कुल करिए।
1: जी, इदरीस सैफी जुड़ गए हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं भी रोड पर अगर पानी भरा हो तो और रास्ता अनजान हो तो वहां पर गाड़ी ना चलाएं, भाई ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अनवर साबरी कह रहे हैं, लेकिन अनवर साबरी जी ने अब कोई वो लिखा नहीं है, संदेश नहीं लिखा, सिर्फ नाम लिखकर भेज दिया है। और कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह और शाहजहां बेगम कह रहे हैं कि आपकी आवाज जो है प्रीति मोहन जी से मिलती जुलती है, रश्मि जी आपकी आवाज।
0: वो बहुत
1: और
0: अच्छी है, तो बहुत
1: जी,
0: तारीफ
1: इसके
0: किया उन्होंने
1: अलावा
0: भी
1: हमारे पास
0: रश्मि
1: एक
0: जी
1: और
0: की।
1: संदेश आ गया है, आप हैं विवेक विहार से हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष जी। वो कह रहे हैं कि जब आप बारिश में वाहन चलाएं बाहर निकले तो ध्यान रखें, क्योंकि तेज बारिश में जो दिखाई देना कम हो जाता है, तो वाहन धीमी गति से चलाएं। और साथ ही में लिखते हैं कि अगर आप दोपहिया वाहन पर हैं तो हेलमेट जरूर पहने, और साथ में जो रेन गियर रखें, माने आप कुछ बरसाती वगैरह साथ लेकर चलें, और पानी में वाहन बंद हो जाए तो उसे बार बार स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, भाई ये मेरे लिए भी जानकारी है। और अंडर पास और निचले इलाकों में और तेज बहाव वाले रास्तों से वो कह रहे हैं बचें, ये भी बहुत जरूरी है। भाई अंडर पास में जो है पानी भरने का डर रहता है, वहां सावधान रहें, और सड़क पर चलते समय खुले मेन होल और टूटे फुटपाथ से सावधान रहें। हमारे श्रोता कितने जानकार हैं, जागरूक हैं, और क्यों ना हो भाई, FM
0: बिल्कुल
1: गोल्ड से जुड़े हैं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के श्रोता हैं, ये तो वाकई बहुत जागरूक और सावधान है, और हम भी उनसे बहुत कुछ रोज सीखते हैं।
0: मैं भी ये कहने वाली थी, इसीलिए परेशानी में सांस को बनाए रखे,
1: जी
0: परेशान ना होइए क्योंकि जीवन
1: तो
0: एक यात्रा है, इसमें सुख दुख दोनों आते हैं। कभी खुशियों की धूप होती है, कभी कठिनाइयों के बादल छा जाते हैं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि परेशानी के समय हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए।
1: जी, अभी जैसे ट्रैफिक की ही बात हो रही थी, तो अंधेरी रात के बाद जैसा आपने कहा कि नया सवेरा आता है और हर परेशानी कोई ना कोई सीख सिखा कर जाती है। कई बार ऐसा होता है सिमरन कि हम परेशानी में ना घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं, और हम अपने अंदर जो छिपी शक्ति है उसको पहचान नहीं पाते।
0: बिल्कुल सही।
1: भाई जिन लोगों ने मुश्किल समय में धैर्य और साहस बनाए रखा, वही आगे चलकर सफलता की मिसाल भी बने।
0: देखिए, चाहे बीमारी हो, आर्थिक समस्या हो, रिश्तों में तनाव हो, या फिर किसी प्रियजन का बिछड़ना, हर चुनौती का सामना हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए।
1: जी, और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका परिवार है, मित्र है, आपके अपने हैं, ये सब आपको मानसिक शक्ति देते हैं। और साथ में अच्छी बातें पढ़ें, संगीत सुने, प्रार्थना करें, और अपने मन की बात अपने विश्वसनीय व्यक्ति से या किसी दोस्त के साथ जरूर साझा करें।
0: और साहस का अर्थ है डर और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहना। छोटी छोटी कोशिशें भी हमें बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल सकती हैं।
1: तो सिमरन, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें विश्वास रखना चाहिए प्रभु पर कि ये समय भी गुजर जाएगा, और अपने मन में उम्मीद की एक लौ जो है वो हमेशा जगा कर रखनी चाहिए।

0: और रश्मि जी, चलते चलते एक मेल और पढ़ दूँ।
1: जी
0: ये
1: जरूर।
0: आया है रानी शर्मा का, और इन्होंने लिखा है कि हर मौसम अपने साथ कुछ परेशानी तो लेकर आते हैं, लेकिन इस मौसम में कमरे के बाहर पैर पहुंचने के लिए पायदान जरूर रखें, और खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे और कालीन का उपयोग ना ही करें तो अच्छा है।
1: जी बिल्कुल। और एक और संदेश हमारे पास आया है, वो कह रहे हैं आप हैं तिलक नगर से उदयन, आप कह रहे हैं भाई बारिश में सावधानी बरतनी जरूरी है, पहले तो छाते का ध्यान रखिए, और सड़क पर अगर पानी दिखे तो धीरे चलिए, क्योंकि पता नहीं नीचे सड़क है या गड्ढा है भाई, और मच्छरों से बचकर रहना वो कह रहे हैं जरूरी है, क्योंकि भाई अब घर घर घूमने का सीजन आ गया, क्योंकि इस समय भाई ध्यान रखना जरूरी है, अगर पार्क में बच्चों के साथ जाएं तो जरूर कुछ ना कुछ मच्छर जो बचाने की जो क्रीम है बच्चों पर जरूर लगा लें, क्योंकि इस समय डेंगू और चिकनगुनिया का भी मौसम आ गया है, हम आप बता दें सभी सुनने वालों को। तो सिमरन आगे क्या कहना चाह रही हैं?
0: आगे बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि समय जो देख रही हूँ घड़ी का, वो होने वाला है
1: जी,
0: समाप्त।
1: तो अनुमति लेते हैं अपने सभी सुनने वालों से।
0: तो यूं ही सुनते रहिए, और इसी वादे के साथ रश्मि जी और मुझे यानी सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जेएएसी ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during a student protest over the NEET issue. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated Indian athletes who won medals at the Commonwealth Games, including para-athlete Sharmila Dhankar on winning the gold. He also applauded Anahat Singh on winning the World Junior Squash Championship. Later, when Mr. Birla tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering over the alleged police action against students during the protest. The Speaker said the House should function smoothly, engage in meaningful dialogue and deliberate on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill.
2: I appeal that no matter how much deadlock there may be or how big the issue is, I request the honourable members that there should be no disruption during question hour. A positive message should go out across the entire country that discussions and dialogue take place in the parliament.
1: As the uproar continued, the Speaker adjourned the House till 2 p.m. The Rajya Sabha was also adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the House assembled at 11 a.m., several union ministers laid the papers on the table of the House. The report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution was also presented. The government has approved the Reserve Bank of India RBI's proposal to introduce polymer banknotes in the denominations of 10 and 20 rupees. In a written reply in the Lok Sabha, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary informed that RBI had sent a proposal to the government for the introduction of 1 billion pieces each of 10 and 20 rupees polymer banknotes for field trials. He said regular issuance of polymer banknotes in these two denominations will be done after successful completion of field trials. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan was held today at Parliament House. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and other leaders were present at the meeting. MPs from Trinmool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India NCPI, also attended the alliance meeting. In Assam, the flood situation has shown further improvement, with the number of affected districts coming down to 6. According to the latest official report, Shivasagar, Golaghat, Charaideo, Jorhat, Nagaon and Kamrup metropolitan districts continue to be affected by the deluge. Rescue and restoration work is underway. Prime Minister Narendra Modi today met members of parliament from Assam and discussed the prevailing flood situation in various parts of the state. Sharing the information through a social media post, the Prime Minister said the centre is working closely with the Assam government in assisting those affected. He also prayed for everyone's safety and well-being. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Chhattisgarh and Odisha for the day. An orange colour warning for very heavy rainfall has been issued for Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh till tomorrow. Heavy rainfall conditions will continue over parts of northeast India, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Gujarat, West Bengal and Vidarbh during the next 2 days. At least 20 people were killed and several others injured during a long march organized by the Joint Awami Action Committee, JAAC, in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In a social media post, JAAC said the long march caravans had reached Rawalkot. The march was organized after talks between JAAC and the Pakistani authorities reportedly failed to reach a mutually acceptable outcome. India's para-athlete Sharmila Dhankar won the gold medal in the women's shot put event at the Commonwealth Games in Glasgow last night. With this achievement, Sharmila also became India's first ever Commonwealth Games para-athletics gold medalist. Her triumph ended India's 20-year wait for a para-athletics medal at the Games. Indian high jumper Sarvesh Kosari also clinched a silver medal in the men's high jump event at the Scotstoun Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading with marginal gains in the afternoon session today. The Sensex added 79 points to 76,915 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आप हमारे प्रसारण DRM 810 किलोहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं, साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर भी। श्रोताओं, दोपहर के 1:10 हुए हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीतों से सजी फिल्म की थोड़ी सी कहानी और जानकारी, साथ में उसके वो खूबसूरत गीत जो आज भी लोकप्रिय हैं और लोगों की जबान पर हैं। सुनेंगे और चर्चा करेंगे इस फिल्म के बारे में, लेकिन उससे पहले एक संदेश।
4: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
5: जी,
4: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
5: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
4: पर ये होगा कैसे?
5: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
4: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
5: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
4: बस
5: बस
4: समझ गया।
5: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: यहाँ श्रोताओं, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, ताकि आप जो डिजिटल लाभ आप ले पा रहे हैं, हम ले पा रहे हैं बदलते हुए दौर में, इस बदलती हुई प्रौद्योगिकी का जो फायदा हम घर बैठे उठा पा रहे हैं, उसका हमें नुकसान या खामियाजा ना उठाना पड़े। और अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सिलसिला। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एक ही फिल्म से कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम जैसा कि बता रहे हैं कि आरजू फिल्म की बात करने वाले हैं। आरजू फिल्म 1965 में आई थी और इस फिल्म में अगर हम मुख्य भूमिकाओं की बात करें तो राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान रहे और अन्य साथी कलाकार जो जिनकी बहुत अहम भूमिका रही पूरी पटकथा में, उनमें शामिल है महमूद, नाजिमा, नजीर हुसैन, अचला सचदेव और धूमल। राजेंद्र कुमार जो गोपाल और सूरज की भूमिका, दो नाम थे उनके उसमें थे, उषा की भूमिका में थी साधना और फिरोज खान रमेश की भूमिका में। हाउस बोट मालिक जिसे महमूद के नाम से आपने देखा होगा, महमूद आप जानते ही हैं, सरला की भूमिका में नाजिमा थी और दीवान किशन किशोर की भूमिका में थे नजीर हुसैन। गोपाल की मां बनी थी अचला सचदेव और धूमल ने मुंशी अशादौला लाल की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में 1965 की इस फिल्म में जो पटकथा थी और गीत थे वो सभी को पसंद आए। रामानंद सागर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जैसा कि मैंने कहा कि राजेंद्र कुमार और साधना फिरोज खान जैसे सितारों ने अपने अभिनय से एक ऐसी कहानी रची जिसमें श्रोताओं प्यार था, इंतजार था और हालात से जूझता हुआ दिल भी था। शंकर जयकिशन का मधुर संगीत और हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के सधे हुए बोल, इन सब ने एक साथ मिलकर आरजू को एक यादगार एहसास बना दिया। अगर हम गायकों की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले, साथ में एक गाना जो काफ़ी पसंद किया जाता है उसमें तमाम साथी कलाकारों की आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी जो आपको इस कार्यक्रम के सबसे अंत में उस गीत को हम सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो कार्यक्रम का पहला गाना है वो है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी गीत के साथ जिसमें प्यार की नाजुक शरारत और रूठने मनाने की प्यारी सी अदा झलकती है।

क्या खूब बात है इस गीत की। हल्की सी नोकझोंक, थोड़ी सी मासूम जिद और दिल से निकली सच्ची मोहब्बत, यही तो उस दौर के गीतों की पहचान हुआ करती थी। आरजू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां दो दिल मिलते हैं मगर किस्मत उन्हें बार बार परखती है। राजेंद्र कुमार और साधना की जोड़ी में एक सादगी है, एक अपनापन है जो सीधे दिलों तक पहुंचता है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, और इस गीत ने उस दौर के एहसासों को अपने शब्दों और खूबसूरत धुन ने हम सभी के सामने एक तस्वीर सी प्रस्तुत की। आरजू फिल्म का ये पहला गाना, और आइए सुनते हैं एक और दिलकश नगमा जो अपने शब्दों में ही पूरी तरह उस भावना की तस्वीर खींचता है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

दोस्तों, इस गीत में कितनी खूबसूरती से प्यार का इजहार है, बिना किसी दिखावे के, बस दिल की सीधी सी बात। फिल्म में फिरोज खान का किरदार कहानी में एक अलग रंग भरता है और यहीं से रिश्तों की राह थोड़ी उलझने लगती है। दरअसल सूरज, जिसका पहले नाम गोपाल होता है, राजेंद्र कुमार की बात मैं कर रहा हूँ, वो छुट्टी में कश्मीर जाते हैं और वहाँ पर अपने असली नाम नहीं, नकली नाम के साथ वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें हो जाता है प्यार उषा यानी साधना से, जो सूरज नाम से, सरजू नाम से उनसे मिलते हैं। और एक एक्सीडेंट में उनके साथ कुछ ऐसी ही दुर्घटना होती है कि उनके पैर खो जाते हैं, वो अपाहिज हो जाते हैं और फिर वो उषा यानी साधना से दूर होने लगते हैं ताकि वो अपने जीवन में खुश रह सके। और फिर एंट्री होती है फिरोज खान की, जिसका जिक्र मैंने किया, रमेश की, और यहाँ पर प्रेम त्रिकोण का ये उलझन की उलझन, यहाँ इस फिल्म की पटकथा को

और जो दर्शक होते हैं उनके प्रति उनके उन उनको अपने प्रति आकर्षित करती हुई नजर आती है। कार्यक्रम का जो अगला गीत है, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आरजू सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि उन एहसासों की दास्तां है जहाँ जुदाई भी है और जुदाई भी उतनी ही सच्ची लगती है जितना मिलन। और जब दर्द शब्दों में ढलकर सुरों में मिलता है तो वो गीत हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। तो अब सुनिए एक ऐसा ही गीत जिसमें इंतजार और तड़प की गहराई साफ झलकती है और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़।

हसरत जयपुरी के बोलों को सुंदर संगीत शंकर जयकिशन के साथ, ये मधुर आवाज लता मंगेशकर की और आरजू फिल्म, आप आरजू फिल्म के गाने सुन रहे हैं एक ही फिल्म से के अंतर्गत। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने हर भाव के लिए अलग रंग की धुनें रची, जो आज भी श्रोताओं को गीतों के साथ गुनगुनाने को बाध्य करती हैं। और जिस गीत को हम सुन रहे हैं, इसके हर एक शब्द में एक सच्चाई है, एक खामोश पुकार है, जिसे हसरत जयपुरी ने महसूस करते हुए लिखा। और इसीलिए जब कोई सुनता है तो वो भी उन भावों के पीछे वो दर्द, वो कहानी, वो एहसास महसूस कर पाता है। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के शब्द जब सीधे दिलों के साथ जुबान तक पहुंचते हैं तो मधुर गीत बन जाते हैं। आइए एक और गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सा नगमा ये भी है, और इस गीत को फिल्माया गया है राजेंद्र कुमार और साधना पर।

श्रोताओं, आरजू का हर गीत अपने आप में एक एहसास है, कभी मुस्कान देता है तो कभी आंखें भी नम कर देता है। ये फिल्म उस दौर की याद दिलाती है जब मोहब्बत में सादगी थी, इजहार में संकोच था और इंतजार में सुकून। आज के तेज दौर में भी ये गीत हमें थोड़ी देर ठहर कर दिल की आवाज सुनने का मौका देते हैं। आरजू के इन मधुर गीतों के साथ आज का ये सुरीला सफर अब अपने समापन की ओर है, और अब कहानी का वो पहलू इस गीत के माध्यम से जो इस पूरी फिल्म की पटकथा को एक नया मोड़ देता है। ये गीत अदाकारा साधना से उनके मन में चल रहे तूफानों को प्रतिबिंबित करता है, और ऐसा लगता है जैसे खुद उनका दिल उनसे सवाल कर रहा है और साधना यानी उषा अपने ही सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। कव्वाली की तर्ज पर आइए सुनते हैं आशा भोसले और मुबारक बेगम के स्वर में ये गीत।

श्रोताओं, संगीत की ये जो झलक आप सुन पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे फिल्म के जितने भी गाने थे, सभी गानों में अलग अलग तरह का संगीत, अलग अलग के भाव, मूड, और शंकर जयकिशन ने ऐसा चाहा होगा कि शायद आखिरी गाने में सभी गानों की एक झलक, सभी गानों की धुनों की झलक हम दे देंगे। तो आशा भोसले और मुबारक बेगम के स्वर में इस गीत के साथ ही और साथियों की आवाज़ों के साथ ही आज का एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम को अब संपन्न करने की मैं यानी देवेंद्र त्रिपाठी चाहूंगा अनुमति। उम्मीद करता हूं आरजू फिल्म की कुछ छोटी मोटी बातें और ये गाने आपको पसंद जरूर आए होंगे। फिलहाल दीजिए अनुमति, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 1:40 होने को है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।

दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है ताकि वो साइबर जराइम मामलों, खासतौर से साइबर माली धोखादेही मामले में E0 FIR दर्ज कर सकें। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए इंतहाई तेज बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक के लिए बहुत तेज बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला मिश्रकी भारत, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, मगरबी बंगाल और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई शोरगुल के दौरान शुरू होने के फौरन बाद ही मौतल कर दी गई।

0: संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: And for whatever interest. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन कर

0: करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
1: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
2: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
3: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी है। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
4: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15

0: लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ बासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशो रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशो शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं हमें स्टूडियो की घड़ी में। इस समय 2:30 और 14 सेकंड हुए हैं। समय है आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार का। हर बार की तरह हिंदी सिने जगत की किसी महान हस्ती की बात करते हैं हम अपने इस कार्यक्रम में। तो शुरू करें अपना कार्यक्रम, उससे पहले आपके लिए ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्वागत अभिनंदन आपका हमारे शो एक ही कलाकार के इस सफर में। आज हूँ आपके साथ मैं, यानी स्वीकारें मेरा मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक ही कलाकार की करें बात, उससे पहले क्यों ना आप ही लगाएं कयास इस तराने से। जरा पहचानिए तो कौन है हमारे आज के कलाकार।

0: जी हाँ, आज आपको लेकर चलेंगे 1940 से 1960 के दशक की ओर। तब हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग में एक उर्दू शायर, लेखक और गीतकार का नाम उभरा, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई अविस्मरणीय गीत दिए। नाम था संवाद लेखक और गीतकार राजा मेहंदी अली खां। शायद ही ऐसा कोई हो जिन्होंने इनके लिखे गीत को ना सुना हो। लग जा गले आपकी नजरों ने समझा और मेरे पिया गए रंगून जैसे कई अमर और सदाबहार गीत हिंदी सिनेमा में इनकी ही देन है। हेलो,
1: हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

राजा मेहंदी अली खान साहब का जन्म हुआ झेलम जिले में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब महज 4 साल की उम्र में ही पिता का साया उनके सर से उठ गया और माँ हेबा साहिबा, जो उर्दू शायरा थीं, उन्हीं से विरासत में मिला उन्हें लेखन का हुनर। बेहतरीन लेखन शैली और भाषा पर मजबूत पकड़ के हुनर ने उन्हें 1942 में दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में बतौर लेखक स्थापना दी। और इसी दौरान राजा मेहंदी अली खान की मुलाकात कथाकार सआदत हसन मंटो से हुई, जो हिंदी फिल्म जगत में उस दौर में बड़ा रुतबा रखते थे। उनके ही कहने पर राजा मेहंदी अली साहब मुंबई आ गए और वहां पर अभिनेता अशोक कुमार की सहायता से उन्हें मिली

एक ही कलाकार में आज हमारे कलाकार हैं गीतकार राजा मेहंदी अली खां। बहुत ही कम समय में राजा मेहंदी अली खां के गीत हिंदी फिल्मी जगत को एहसास का नया मुकाम देने वाले वो गीत बने जिसे हम आज भी याद करते हैं। और संगीतकार मदन मोहन जी के साथ उनकी जोड़ी ने तो ऐसा कमाल किया कि मदन मोहन के कर्णप्रिय संगीत के जुगलबंदी वाले गीत आज भी हम सभी के एहसासों में ताजगी का एहसास कराते हैं और हमारे दिल की बगिया को महकाते हैं।

बहुत ही कम समय में और हिंदी सिने जगत में ऊंचा मकाम उन्होंने हासिल किया था, राजा मेहंदी अली खां। संगीतकार राजा मेहंदी अली खां 1964 की वो फिल्म कौन थी के गीत लिखे और उसमें संगीत दिया उस दौर के मशहूर संगीतकार और गजलों के बेताज बादशाह मदन मोहन जी ने। फिर तो फिल्म के सभी गीत सुपरहिट होने ही थे क्योंकि उनकी जोड़ी ही इतनी कमाल की थी। विशेषकर लग जा गले, ये वो गीत था जिसे कई रियलिटी शो में गाया गया था और इसे बहुत पसंद किया गया था। उसी तरह इसे फिल्म का एक और गीत था, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। चलिए सुनते हैं वो गीत।

सचिन देव बर्मन, ओपी नैयर और इकबाल कुरैशी सभी के साथ राजा मेहंदी अली खां के सभी गीत बड़े मकबूल हुए दोस्तों। और ये जो गीत आप सुन रहे थे, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, ये गीत बरसात के इस रिमझिम फुहारों में हमें प्रकृति के नज़ारों की याद करा जाते हैं, है ना। और ये जो गीत है वो प्रकृति की मुस्कान के साथ हमें वहीं ले जाता है जहाँ इस गीत का फिल्मांकन हुआ था। जी हाँ, शिमला में ही पिक्चराइज किया गया था ये गीत। और उनकी एक फिल्म आई थी शहीद, और उसमें भी ये गीत था, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, जो उस दौर में बहुत लोकप्रिय हुआ था। सन 1951 में मदहोश, मेरा साया, अनपढ़, वो कौन थी, सभी फिल्मों में राजा मेहंदी अली खां साहब के बोल थे और मदन मोहन साहब का संगीत था। इस जोड़ी ने ऐसा कमाल किया कि उनके गीत इतने मशहूर हुए कि वो आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। और साथियों, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:59 हो चुके हैं और अब समय है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज का।

मैटनी मेलोडी का ये सफर आज है आपका मनीषा के साथ। तो आपका स्वागत करती हूँ इस गीत के अंदाज के साथ। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60 के दशक में, 60 के दशक में बनने वाली उन हिंदी सिनेमा के गीतों के बारे में जो हिंदी सिने जगत का स्वर्ण युग माना गया था, जिसमें मेलोडी के साथ थी सादगी और शब्दों की गहराई का वो संगम जो आज भी हमारे दिलों को छूता है। इस दौर के अमर गीतों में वो सदाबहार नगमे शामिल हैं, वो गीत शामिल हैं जिनकी धुनें सुनते ही हमारा दिल तरोताजा हो जाता है।

मैडनी मेलोडीज़ में हम सुन रहे हैं 1960 के दशक के वो सदाबहार गीत जिन्हें सुनकर हमारा दिल आज भी गुनगुनाने लगता है उन गीतों को। तो आप इस सफ़र में हैं मेरे यानी मनीषा के साथ, करेंगे आगे भी बात, लेकिन फ़िलहाल सुनते हैं ये संदेश।

0: साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, 1960 का वो दौर था जब मुगले आजम और संगम और गाइड जैसी महान फिल्में उस दौर में बनी थी, जिसमें सेंसरशिप में ढील, ब्लैक एंड व्हाइट से निकलकर रंगीन सिनेमा के युग का विस्तार बढ़ा और यथार्थवादी कहानियों का उदय हुआ, जो वास्तविक धरातल की सच्चाई को फिल्मों में सफलतापूर्वक उतारने की कला थी वो इस जमाने में, इस दशक में साफ दिखाई देने लगी। तो आइए सुनते हैं इस दौर का एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, जिसे सुनकर आप जरूर खुश होंगे।

0: को साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: महकनी मेलोडीज में हम बात कर रहे हैं 60 के दशक में बनी हुई गीतों की। साथियों, 60 के दशक में संगीतकार और गीतकार मिलकर कहानी, उस कहानी के हिसाब से लिखते, धुने बनाते थे जो वो फिल्म की कहानी होती थी। इस तरह गीत, सुर, साज और आवाज का संगम ही उस दौर के गीतों को अमर बना देता था। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की जादुई आवाज़ गीतों को इस तरह अपनी आवाज़ में ढालती थी कि वो गीत खुद ब खुद मुस्कुराने लगते थे।

साथियों, 60 के दशक की खासियत में शास्त्रीय संगीत की धुनों का प्रयोग भी था। कई गीतों में ये प्रयोग किया गया और उन गीतों का अर्थ और मर्म उनके प्रयोग से इतना गहरा हो गया कि सारी कहानी गीतों में ही बयां हो जाती थी। उस दौर में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की जादुई आवाज़ें संगीतकारों का शास्त्रीय रागों में जैसे राग भैरवी, शिव रंजनी का प्रयोग लोक धुनों का सुंदर समागम हुआ करती थी और उन्हें आज भी सदाबहार गीतों के रूप में हमें सुनाई देती है।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से आपका स्वागत है मैटनी मेलोडीज में, और आज बात हो रही है 60 के दशक में बनने वाली फिल्मी गीत संगीत की। वो जमाना शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे दिग्गज गीतकारों ने अपनी लेखनी से उस दौर में कई बेहतरीन रचनाएं लिखीं और बोल लिखे। विविध वाद्य यंत्रों को सुर सरिता का साज बनाया गया, यहाँ तक कि सितार, बांसुरी और वायलिन के साथ साथ विदेशी वाद्य यंत्रों का भी बेहतरीन प्रयोग उस दौर में हुआ। चलिए सुनते हैं उस दौर का एक और खूबसूरत सा नगमा।

जीवन के सभी रंगों को सहेजने का हुनर 1960 के दशक के गीतों में हमें साफ दिखाई देता है। प्यार, खुशी, दर्द, गम और देशभक्ति की भावना, सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए वो दौर हमें आज भी अपने गीतों से खुश कर जाता है। तो चलिए, मैटनी मेलोडीज के इस सफर में हम सुनते हैं ये अंतिम गीत आज की प्रस्तुति।

मैटनी मेलोडीज के सफर में आप मनीषा के साथ सुन रहे थे ये कार्यक्रम। और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 3:29 और 55 सेकंड हैं। लीजिए पेश है उर्दू मजलिस।

0: मंदिरों को गंदा करता है, नालियों को बंद कर देता है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी के में भी देख चुके हैं, और मछलियों, कछुओं और समुद्री परिंदों की जिंदगी को खतरे में डाल देता है। इसलिए प्लास्टिक पॉल्यूशन सिर्फ कचरे का मसला नहीं है, बल्कि पानी, माहौल और इंसानी सेहत के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी है।
1: शुक्रिया अब्दुल। सामईन के लिए मैं वाजे कर दूं, आलमी हिद्दत से यहाँ मतलब ग्लोबल वार्मिंग है। बहरहाल, प्लास्टिक की आलूदगी यकीनन हमारे माहौल और पानी दोनों के लिए एक संजीदा चैलेंज बन चुका है। लेकिन पानी के बहरान की एक और बड़ी वजह ग्राउंड वाटर की मुसलसल कमी भी है। इसी हवाले से मैं माज साहब से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी रोशनी डालें, ग्राउंड वाटर इतनी तेजी से क्यों कम हो रहा है।
2: देखिए, ग्राउंड वाटर के कम होने की बहुत सी वजहात हो सकती हैं। सबसे पहले देखा जाए तो खेती में ट्यूबवेल और बोरवेल का हद से ज्यादा इस्तेमाल, ग्राउंड वाटर के पानी को बहुत ज्यादा जमीन से निकाला जाता है जिसकी वजह से उसका लेवल डाउन हो जाता है। उसके अलावा आजकल आप देखते हैं कि शहरों में हर जगह कॉन्क्रीट की सड़कें और इमारतें बन रही हैं जिसकी वजह से जब बारिश का पानी गिरता है तो वो जमीन के अंदर जज्ब नहीं हो पाता और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाता। उसके अलावा तालाबों और झीलों का खात्मा भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज को कम कर देता है। इसके अलावा देखा जाए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब यह है कि बारिश के पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसको प्रिजर्व करना, बचा के रखना।
1: बहुत खूब माज, आपने ग्राउंड वाटर की कमी की बुनियादी वजूहात को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया। अब जमीन की बात हुई है तो जरा जमीन के सबसे अहम हिफाजती निजाम यानी जंगलात की तरफ रुख करते हैं। मैं फिर रुख करता हूँ नेहा साहिबा की तरफ और जानना चाहता हूँ जंगलात की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन और पेड़ पौधों की कमी का मौसम और बारिश पर क्या असर पड़ता है।
3: जी जी बिल्कुल। देखिए, जंगलात हमारे जमीन के कुदरती मुहाफिज हैं। जब दरख्तों की बेदरी कटाई होती है तो माहौल का तवाजुन बिगड़ जाता है और दरख्त फिजा में नमी को बरकरार रखते हैं और बारिश के निजाम को मुनज्जम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जंगलात की कटाई से दर्जा हरारत में इजाफा, बारिश के अंदाज में तब्दीली, खुश्क साली और सैलाब जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं। हुकूमत हिंद ने इस मसले से निपटने के लिए कई इकदाम शुरू की थी, जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में बनाई गई थी जंगलात के तहफ्फुज के लिए और माहौल के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए, और ग्रीन इंडियन मिशन, इन नेशनल अफोरेस्टेशन प्रोग्राम और आप नगर वन योजना जो 2020 में बनाई गई। इन तमाम पॉलिसीज बनाने का मकसद जंगलात की कटाई को कम करना और बारिश के निजाम को बेहतर बनाना है। देखिए, जरूरत इस अम्र की है कि हुकूमत के साथ साथ अवाम भी दरख्तों के तहफ्फुज को अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि एक दरख्त सिर्फ साया ही फराहम नहीं करता बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए साफ हवा, मुतवाजन मौसम और जिंदगी के तहफ्फुज की जमानत भी बनता है।
1: शुक्रिया नेहा, बहुत अच्छी बात कही आपने। पेड़ सिर्फ हमें साफ हवा ही फराहम नहीं करते बल्कि माहौल का तवाजुन बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन आज के दौर में शहरों के तेजी से फैलान भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसी तनाजुर में अब्दुल हनान मलिक साहब से सवाल करना चाहूंगा, पक्के मकान, कॉन्क्रीट सिटीज और अर्बनाइजेशन का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है।
0: जी बिल्कुल। इस मामले पे आगे बात करने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि अर्बनाइजेशन के मायने क्या है। तो इसका मायने ये है कि जब गांव धीरे धीरे शहरों में तब्दील होते हैं और हर तरफ इमारतें, सड़कें और कॉन्क्रीट का निजाम बन जाता है तो इस अमल को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि अर्बनाइजेशन तरक्की के लिए जरूरी है, लेकिन अगर ये मुनासिब मंसूबों के बगैर की जाए तो माहौल पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले तो नई इमारतें बनाने के लिए अक्सर बहुत सारे दरख्त काट दिए जाते हैं जिससे फितरती हरियाली और ठंडक दोनों ही कम हो जाती है। दूसरी तरफ कंक्रीट और एस्फाल्ट दिन भर सूरज की गर्मी को जज्ब करते हैं और रात तक धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। इसी वजह से शहरों का दर्जाए हरारत करीबी देहाती इलाकों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है और इसी चीज को हम हीट आइलैंड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सीमेंट और स्टील जैसे तामीरी मवाद की मैन्युफैक्चरिंग से भी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के मुताबिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर दुनिया के तकरीबन 37% ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। 37%। इसलिए जरूरत सिर्फ ज्यादा इमारतें बनाने की नहीं है बल्कि ग्रीन बिल्डिंग्स, ज्यादा

0: दरख लगाने और मुनासिब मंसूबा बंदी की है ताकि तरक्की और माहौल दोनों साथ साथ चल सके।
1: बहुत खूब, तरक्की जरूरी है लेकिन अगर उसके साथ माहौल का ख्याल ना रखा जाए तो उसके नुकसानात भी सामने आते हैं। इसी सिलसिले की आखिरी कड़ी के तौर पर मैं माज साहब से जानना चाहूंगा, नदियों का कटाव, एनरोचमेंट और वाटर पॉल्यूशन पानी के बहरान को किस तरह बढ़ाते हैं?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये तीनों ही चीजें पानी के बहरान को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। सबसे पहले तो नदियों का कटाव उनकी कुदरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाता है, और अगर हम बात करें इंक्रोचमेंट की तो उसका मतलब ये है कि नदियों और तालाबों के किनारों पर कब्जा पानी के बहाव को रोक देता है। वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो पानी मौजूद है वो भी पीने या फिर खेती के काबिल नहीं रहता। फैक्ट्री का गंदा पानी, प्लास्टिक का कचरा और घरेलू गंदगी जब नदियों में डाली जाती है तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मछलियां और दूसरी मखलूक भी मुतासिर होती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी नदियों और पानी के जखीरे की हिफाजत करें।
1: शुक्रिया माज। अब तक हमने माहौलियाती तब्दीली और पानी के बहरान की वजूहात और उनके असरात पर गुफ्तगू की, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम ये भी जानें मसाइल से निपटने के लिए हमारी हुकूमत की तरफ से क्या इकदामात किए गए हैं। सबसे पहले मैं नेहा जोहरा साहिबा की तरफ रुख करता हूं और ये जानना चाहता हूं कि जल शक्ति अभियान क्या है और इसका मकसद क्या है।
3: जी देखिए, पानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है लेकिन आज ये एक बड़ा मसला बन चुका है। इसीलिए हुकूमत हिंद ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया। इसी मुहिम का मकसद क्या था? पानी का तहफ्फुज, बारिश के पानी को जमा करना, जेर जमीन पानी की सतह को बेहतर बनाना। इसके लिए तालाबों, झीलों, आबे जखायर बहाली और आवाम में पानी बचाने की बेदारी पैदा की जाती है। देखिए, इसका अहम जो हिस्सा है वो कैच द रेन है, जिसका मकसद बारिश के पानी को वहीं महफूज करना है जहां वो गिरे। देखिए, पानी हमारी आने वाली नस्लों की अमानत है, इसलिए हर शहरी को और उन सब की जिम्मेदारी है, चाहे शहरी हो या गांव के रहने वाले हो, हम सब की जिम्मेदारी है कि इसे जाया होने से बचाएं। और आखिर में मैं अपने चंद अशार से यही कहना चाहूंगी कि पानी है तो जिंदगी है, पानी है तो बहार, इसकी हर बूंद में छिपी है आने वाली नस्लों की पुकार। आज अगर हमने बचाया, आज अगर हमने बचाया, कल यही सरमाया होगा, जल शक्ति का ये पैगाम हर दिल का नारा होगा।
1: बहुत खूब नेहा, यकीनन जल शक्ति अभियान पानी के तहफ्फुज की सिमत एक अहम कदम है। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अब्दुल हनान मलिक साहब से ये जानना चाहूंगा कि नमामि गंगे मिशन और कैच द रेन कैंपेन के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें।
0: जी बिल्कुल, नमामि गंगे मिशन भारत सरकार का एक अहम फ्लैगशिप मुहिम है जो 2014 में शुरू किया गया था। इसका मकसद गंगा और उसकी शाखाओं को साफ करना, पानी की आलूदगी कम करना और उनकी फितरती हालात को दोबारा बेहतर बनाना है। इसके दो बड़े बुनियादी मकसद हैं। पहला, निर्मल गंगा यानी साफ और आलूदगी से पाक गंगा। दूसरा, अविरल गंगा मायने यानी गंगा का लगातार बहना। इस मुहिम के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी जो नदी नाली को साफ करने वाले प्लांट है उनको लगाया जा रहा है। सनाती आलूदगी यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है। दरियाओं के किनारे को बेहतर बनाया जा रहा है और गैंगेटिक डॉल्फिन जैसे जानवरों खतरे में जो मौजूद है उनकी हिफाजत की जा रही है। इस मुहिम के अच्छे नतीजों की वजह से यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इसे दुनिया के टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स में भी शामिल किया है।
1: शुक्रिया अब्दुल साहब, ये तमाम इकदामात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पानी की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ सतह पर काम किया जा रहा है। इसी हवाले से मैं माज साहब से गुजारिश करूंगा कि अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर मिशन और प्लांटेशन ड्राइव जैसे इनिशिएटिव पर रोशनी डालें।
2: देखिए, मेरे ख्याल में ये तमाम इनिशिएटिव्स पानी के बहरान से निपटने के लिए काफी अहम हैं। अटल भूजल योजना का मकसद ग्राउंड वाटर को बेहतर तरीके से संभालना है। अमृत सरोवर मिशन के जरिए नए तालाब तैयार किए जा रहे हैं और पुराने तालाब की मरम्मत की जा रही है ताकि बारिश का पानी जाया ना हो। प्लांटेशन ड्राइव दरख्तों की तादाद बढ़ाती है जिससे जमीन की नमी बरकरार रहती है और माहौल भी बेहतर होता है। लेकिन इन तमाम स्कीम की कामयाबी तभी मुमकिन है जब आवाम भी जिम्मेदारी समझे और सरकार के साथ मिलकर काम करे।
1: शुक्रिया माज।

0: यकीनन ये तमाम इकदाम काबिले तारीफ हैं, लेकिन किसी भी स्कीम की कामयाबी सिर्फ उसके शुरू होने में नहीं बल्कि उस पर मौसर अमल और अवाम के तआवुन में होती है। किसी भी मसले का असल हल तभी मुमकिन होता है जब हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी तरफ से भी अमली कदम उठाएं। इसलिए अब मैं तमाम स्पीकर से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी तजावीज पेश करें। सबसे पहले मैं नेहा जोहरा साहिबा की तरफ रुख करता हूँ।
1: देखिए, चाहे जल शक्ति अभियान हो या अटल भूजल योजना हो या हम गंगा एक्शन प्लान को ले लें या फिर आंदोलन चिपको को देखें, लेकिन सबसे ज्यादा मसला ये है जब तक आवाम और सरकार एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगी तो इस मसले का हल नहीं होगा। तो मेरी सबसे गुजारिश यही है और हम सब से भी मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि हम अभी से बल्कि आज ही से इस पर गौर व फिक्र करें और पानी की बहरान से हम खुद को बचाएं और आने वाली नस्लों को खुदावंदी की इस नेमत से उनका तारुफ कराएं। जी
0: शुक्रिया नेहा, ये बात सही है कि अगर हमने इस वक्त पानी के बहरान पर तवज्जो ना दी तो आने वाली नस्लें बहुत परेशान रहेंगी। इसके बाद मैं अब्दुल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी तजावीज पेश करें।
2: जी, मेरे नजदीक कुछ हल है जिनको मैं पेश करना चाहूंगा सबके सामने। पहला हल मेरा ये है कि मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी हल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल है। आज के जमाने में भारत में AI, IoT सेंसर्स और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से पानी के इस्तेमाल, ग्राउंड वाटर की सतह और लीकेजेस पर नजर रखी जा सकती है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और वसाइल का बेहतर इंतजाम मुमकिन होता है। अगर हम टेक्नोलॉजी को मुस्तकिल और माहौल दोस्त प्लानिंग के साथ जोड़ दें तो पानी की बचत और क्लाइमेट चेंज के असरात से निपटने की सलाहियत दोनों मजबूत हो सकती है। मेरे नजदीक दूसरा हल ये है कि फितरत के साथ मिलकर काम करना है। बड़े पैमाने पर सजरकारी, दलदली इलाकों की बहाली और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हर शहर और गाँव का हिस्सा बनाना होगा। राजस्थान में जोहत और मुख्तलिफ रियासतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मंसूबों ने दिखाया है कि अगर बारिश के पानी को सही तरीके से जखीरा किया जाए तो ग्राउंड वाटर की सतह नुमाया बेहतरी आती है और पानी की कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मेरा तीसरा हल थोड़ा मुख्तलिफ और जदीद हल है जिसको मैं पेश करना चाहूंगा। शहरों में मियावाकी टेक्निक के जरिए छोटे लेकिन घने जंगल लगाए जा रहे हैं। ये आम जंगल के मुकाबले में कई गुना तेजी से उगते हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं, हवा को साफ बनाते हैं और शहरों का दर्जाए हरारत कम करने में मदद करते हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे कई शहरों में इस टेक्निक की कामयाबी का इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल यह है कि मियावाकी की टेक्निक है क्या? तो इस मामले में मैं थोड़ा सा कुछ पेश करना चाहूंगा कि मियावाकी की टेक्निक जापानी बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी ने इजाद की थी। इसके तहत हम 3 या 5 मुकामी पौधे यानी कि नेटिव सैपलिंग्स को पर स्क्वायर मीटर में लगाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसे आमोदी तौर पर बढ़ाया जाए, यानी वर्टिकली ग्रो किया जाए, जिससे होता यह है कि जो पौधे हैं वो 10 गुना तेजी और 30 गुना घने प्रकार से बढ़ते हैं मुकाबले दूसरे पौधों के।
0: बहुत खूब अब्दुल, आज के तरक्याती दौर में टेक्नोलॉजी पर रोशनी डालना बहुत जरूरी था। जैसा कि इन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम पानी ग्राउंड वाटर का लेवल चेक करके और उसके अंदर और बेहतरी ला सकते हैं, क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं उस पर भी हम सोच सकते हैं। इसके बाद मैं माज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी तजावीज पेश करें।
3: आखिर में चंद तजवीज मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले तो हर घर और स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फरोग देनी चाहिए। पानी का फिजूल इस्तेमाल रोकना हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर शख्स साल में कम से कम एक दरख्त जरूर लगाए। नदियों और तालाबों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। बच्चों को बचपन से ही पानी बचाने की तालीम देनी चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे यकीन है कि अगर हम और सरकार साथ मिलकर काम करें तो हम पानी के बहरान को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
0: बहुत शुक्रिया माज, और आप तमाम स्पीकर्स का भी दिल से शुक्रिया। यहाँ पे मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। शिकायतों से कभी हल नहीं निकला करता, शिकायतों से कभी हल नहीं निकला करता, एक कदम हम भी उठाएं तो सफर आसान हो।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: आज की इस गुफ्तगू में हमने माहौलियाती तब्दीली और पानी के बहरान की वजूहात, उनके असरात पर गुफ्तगू की। हमें उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू सिर्फ मालूमात तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि हम सबको

0: अपनी रोजमर्रा जिंदगी में माहौल और पानी की हिफाजत के लिए अमली कदम उठाने की तरफ रागिब करेगी। इजाजत लेने से पहले चंद अल्फाज अर्ज करना चाहूंगा। पेड़ कटते रहे और शहर सजते रहे, फिर एक दिन हवा ने पूछ लिया मेरा घर कहाँ है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: हम अक्सर ये सोचते हैं कि माहौल को बचाने के लिए दूसरे क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि हम खुद इस जमीन और हवा की हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसी फिक्र और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी और तमाम साथियों की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
2: सामईन कराम, आपने सुना हमारे नौजवानों की फिक्र अंगेज गुफ्तगु, जिसने माहौलियाती तब्दीली और पानी के बहरान जैसे संगीन मसले पर रोशनी डाली। ये बात खुशाइंद है कि नई नस्ल न सिर्फ इन मसाइल को समझती है बल्कि उनके हल के लिए अमली तजावीज भी पेश करती है। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू मजलिस हमेशा से नौजवानों को ये मौका फराहम करता रहा है कि वो अपनी आवाज बुलंद करें और मुआशरे में मस्बत तब्दीली का जरिया बने। हमें यकीन है कि आज की ये गुफ्तगू आपके दिलो दिमाग को रोशन करेगी और आपको भी इस सिमत में सोचने पर आमादा करेगी। इसी उम्मीद के साथ हम सब मिलकर एक बेहतर और पायदार मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएंगे। प्रोग्राम बज़्म नौबहार का ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की तरतीबो पेशकश इंतजार सैफी की थी। तो सामईन कराम, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और मौजूआत और कुछ नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान शाहनवाज हाशमी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए किसी भी डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान, 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उल्लेख किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ संभाग में परभणी मुदखेड़ डबल लाइन खंड पर विद्युत कर्षण प्रणाली के उन्नयन के लिए 163 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना में 164 किलोमीटर ट्रैक पर मौजूद 25 किलोवाट विद्युत कर्षण प्रणाली को अधिक उन्नत 50 किलोवाट प्रणाली में परिवर्तित करना शामिल है। साथ ही बढ़ी हुई विद्युत मांग को पूरा करने के लिए उन्नत विद्युत आपूर्ति अवसंरचना भी शामिल है। राष्ट्रमंडल खेलों में आज 5 भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। महिला वर्ग में प्रीति पवार, प्रिया घनघस और परवीन हुड्डा प्रतिस्पर्धा करेंगी। वहीं पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और कपिल पोखरिया अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

24x7 पर। और श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 4:10 हुए हैं। ये समय है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना देने का। नेहा, जिनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, ये 7 मई 2026 से गुरुग्राम से लापता हैं। इनका रंग साफ है, सामान्य शरीर और कद 5 फुट 3 इंच है। इनके संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो आप गुरुग्राम पुलिस स्टेशन सेक्टर 7 IMT मानेसर में संपर्क कर सकते हैं। प्रीति मिश्रा की उम्र 18 वर्ष, शरीर सामान्य और कद 5 फुट 4 इंच। ये 20 जून 2026 से फर्श बाजार शाहदरा से लापता हैं। सामान्य रंग और सामान्य शरीर। इनके संबंध में अगर आपको कोई भी सूचना मिले तो आप फर्श बाजार शाहदरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन पर संपर्क कर सकते हैं। सुगनी नाम की एक महिला, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, कद 5 फुट और शरीर सामान्य है, ये 7 जुलाई 2026 से शाहदरा दिल्ली से लापता हैं। इनके संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया शाहदरा पुलिस स्टेशन फर्श बाजार में संपर्क कर सकते हैं। सुहानी कुमारी की उम्र 17 वर्ष, कद सामान्य, कद 5 फुट और शरीर की बनावट सामान्य है। ये 21 जुलाई 2026 से शाहदरा दिल्ली से लापता हैं। इनके संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो आप फर्श बाजार पुलिस स्टेशन में संपर्क कर सकते हैं। अमित प्रसाद, इनकी उम्र 28 वर्ष है, शरीर हृष्टपुष्ट और कद 5 फुट है, शरीर पर सफेद रंग का निशान है और ये गुरुग्राम हरियाणा से लापता हैं। 28 जुलाई 2026 से ये गुरुग्राम से लापता हैं। इनके संबंध में अगर आपको जानकारी मिले तो थाना सेक्टर 5 गुरुग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं। रोहतास कटारिया, इनकी उम्र 62 वर्ष, ये लगभग 1 वर्ष पूर्व गुरुग्राम से लापता हैं। शरीर सामान्य है, कद 5 फुट 8 इंच और हाथ पर टैटू है। इनके संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो आप सेक्टर 5 गुरुग्राम में संपर्क कर सकते हैं पुलिस स्टेशन पर। और जगदीश नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र 62 वर्ष है, ये 13 मई 2026 से अमनपुरा गुरुग्राम से लापता हैं। शरीर की बनावट दुबली पतली, कद 5 फुट 2 इंच और रंग सामान्य। इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो आप सेक्टर 5 गुरुग्राम थाना हरियाणा में आप संपर्क कर सकते हैं। और अजय पासवान नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 37 वर्ष है, रंग सांवला है, शरीर हृष्टपुष्ट, कद 5 फुट 8 इंच, ये 28 जुलाई 2026 से गुरुग्राम से लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी अगर आपको कुछ मिलती है या प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सेक्टर 5 गुरुग्राम हरियाणा में संपर्क कर सकते हैं। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 4:15 हुए हैं और ये समय है युवाओं के कार्यक्रम यू वाणी का।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त सोनाली।
2: और मैं हूं दिव्यांश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: दिव्यांश, एक सवाल पूछूं, अगर किसी दिन दुनिया की सारी किताबें अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा?
2: सबसे पहले तो हम खुश हो जाएंगे।
1: हो सकता है, लेकिन फिर इतिहास कौन सुनाएगा, कहानियां कौन सुनाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हजारों साल पहले लोग कैसे जीते थे?
2: सही बात है, लेकिन सोचो, किताबें भी तो हमेशा से नहीं थीं।
1: बिल्कुल, एक समय ऐसा था जब ना कागज था, ना किताबें, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, फिर भी कहानियां थी, गीत थे, लोक कथाएं थी और लोग अपनी पूरी सभ्यता अगली पीढ़ी तक पहुंचा देते थे।
2: यानी इंसान ने अपनी कहानियां सुनाने का तरीका समय के साथ बदल लिया, लेकिन कहानी सुनाना कभी नहीं छोड़ा।
1: और शायद यही कला और संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात है, ये समय के साथ बदलती रहती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती।
2: तो साथियों, आज की शाम हम भी एक ऐसी ही यात्रा पर निकलेंगे जहां शुरुआत होगी बिना किसी किताब के, और ये सफर हमें ले जाएगा गुफाओं की दीवारों से लेकर अमीर खुसरो के सूफियानी रचनाओं तक।
1: और इस पूरे सफर में साथ होंगे आपके पसंदीदा गीत। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत के साथ, चली कहानी फ्रॉम द मूवी तमाशा।

काल से लो चली कहानी, पनघट काल से लो चली कहानी, सरपट दौड़ती है फकत जुबानी, छुटपुट आशिकी में ढली कहानी, अनगिन साल से है वही।

0: कि उस समय लेखक भी नहीं थे और लिखने की भाषा भी नहीं थी।
1: मतलब कहानी थी लेकिन किताबें नहीं थीं।
0: बिल्कुल, हमारी सबसे पहली लाइब्रेरी किसी इमारत में नहीं थी, वो लोगों की याददाश्त में थी। दादी नानी की कहानियां, लोकगीत, वीर गाथाएं, भजन, किस्से, एक पीढ़ी सुनाती थी, दूसरी याद करती थी और फिर वही आगे सुनाती थी। इसे ही कहते हैं ओरल ट्रेडिशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने और सुनाने की इस परंपरा को ही श्रुति कहते हैं।
1: मतलब उस समय इंसान की याददाश्त ही गूगल ड्राइव हुआ करती होगी।
0: बिल्कुल, और सोचो अगर किसी को कोई कहानी याद नहीं रहती तो शायद वो कहानी हमेशा के लिए खो जाती।
1: यानी उस दौर में लोगों की आवाज ही उनकी किताब हुआ करती होगी।
0: और इसीलिए आज भी जब हम कोई लोकगीत सुनते हैं तो लगता है जैसे सदियों पुरानी कोई आवाज आज भी हमारे बीच जिंदा है।
1: लेकिन सोनाली, एक समय ऐसा भी आया होगा जब इंसान ने सोचा होगा कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे जाने के बाद भी रह जाए।
0: और शायद तभी इंसान ने पत्थरों को बोलना सिखा दिया।
1: वाह, क्या बात कही। सच तो यह है, अगर आज हमें हजारों साल पहले के इंसान की झलक मिलती हो तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमें रॉक शेल्टर्स और केव्स में मिलेगी।
0: मतलब जैसे भीमबेटका।
1: बिल्कुल, भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्रों को देखिए साथियों, कहीं लोग शिकार कर रहे हैं, कहीं नृत्य कर रहे हैं, कहीं जानवरों के झुंड भी दिखाई देते हैं। किसी ने अपना नाम नहीं लिखा है, पर अपनी पूरी दुनिया पत्थरों पर छोड़ दी। इसीलिए उन्हें देखकर डर लगता है कि न मानो कैसे इतिहास नई और कोई जिंदगी हमारे सामने पूरी चल गई हो।
0: दोस्तों, और फिर समय बदला।
1: हाँ, फिर कला सिर्फ जीवन दिखाने तक सीमित नहीं रही, उसने कहानियां भी सुनाने शुरू कर दी। अजंता की गुफाओं में जाइए, वहां दीवारों का सिर्फ रंग नहीं पूरा का पूरा जीवन भरा है। बुद्ध के जीवन से देखिए, जातक कथाएं सजी हैं, यानी जो कहानियां कभी लोग सुनते थे सुनाते थे उन्हें कलाकारों ने चित्रों में अमर कर दिया है।
0: दिव्यांश, यानी उस समय अगर किसी को पढ़ना भी नहीं आता हो तब भी वो इन चित्रों के जरिए पूरी कहानी समझ सकता था।
1: एग्जैक्टली, यही तो कला की सबसे बड़ी ताकत है सोनाली। भाषा बदल सकती है लेकिन चित्रों की भाषा सदियों तक समझी जाती है।
0: लेकिन दिव्यांश, इतिहास हमेशा इतना शांत भी नहीं रहा।
1: मतलब
0: समय बदला, युद्ध हुए और उनके साथ कला और साहित्य का स्वर भी बदलने लगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने, झांसी की रानी जैसी रचनाओं ने वीरता और बलिदान को शब्द दिए।
1: सोनाली, लेकिन इन्हीं बदलते दौर में एक ऐसी आवाज उभरी जिसने तलवारों के बीच भी प्रेम और इंसानियत की बात की, अमीर खुसरो। फारसी और हिंदवी के साथ लेकर के उन्होंने एक ऐसी रचना लिखी जो आज भी लोगों के दिलों को जिंदा रखती है, और उनकी ये पंक्तियां शायद उसी एहसास को खूबसूरती से बयां करती हैं। साथियों, खुसरो दरिया प्रेम का, जो उल्टी वागी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार।
0: सच है, प्रेम की भाषा कभी पुरानी नहीं होती और अमीर खुसरो की रचनाएं इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। तो आइए सुनते हैं अमीर खुसरो की खूबसूरत रचना छाप तिलक।

0: खूबसूरत गीत के बाद दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे युवा पीढ़ी और जनसंचार के बदलते स्वरूप पर देवेश शुक्ला जी के साथ संतोष द्विवेदी जी द्वारा। ये सेगमेंट है मन से माइक्रोफोन।
1: आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेश शुक्ल जी। देवेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी।
1: देवेश जी, इस समय हमें लाखों करोड़ों युवा श्रोता सुन रहे हैं, उनके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के दौर में और आज के दौर में जो जनसंचार का स्वरूप बदला है उसको आप कैसे देखते हैं?
2: पहले तो आपने जो विषय रखा है युवा पीढ़ी और जनसंचार का बदलता स्वरूप, ठीक है, बहुत सारे बदलाव आए हैं। जनसंचार का जो बदलता स्वरूप आज आप वर्तमान में देख रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया है, वो अभी युवा पीढ़ी के जन्म से ही शुरू हुआ है, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आए हुए 25 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं। तो 25 वर्ष का जो युवा है उसके जन्म के समय से ही ये बदलाव शुरू हुए हैं, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात की, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसने युवा पीढ़ी के सोचने और समझने के जो तरीका है उसको कैसे प्रभावित किया है?
2: अब आप देखिए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैंने अभी आपसे जैसे बात में कहा कि जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का आए हुए 20 से 25 वर्ष हुए हैं, और अगर इनको देखा जाए तो सोचने का तरीका जो है, पहले वन वे ट्रैफिक हुआ करता था, अखबार या मीडिया या न्यूज चैनल जो भी हैं, आप टीवी में कोई बात सुनाते थे तो एक तरफा ट्रैफिक रहता था, मतलब अपनी बात आपने कही, युवा तक पहुंची, वो बड़ों तक पहुंची, हर एक समाज के हर वर्ग तक वो बात पहुंची, लेकिन उसकी वापसी नहीं होती थी। आज की डेट में जो है वो आप देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से, चाहे आप एक्स जो पहले ट्विटर था, आज फेसबुक है, उसमें जो युवा है वो अपनी सोच को प्रदर्शित करता है।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि पहले जो था सिस्टम वन वे ट्रैफिक होता था, अभी फीडबैक का भी सिस्टम है, तो जैसे आप कोई पोस्ट करते हैं तो फिर उस पर आपको प्रतिक्रियाएं भी मिलती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे जो पारंपरिक माध्यम रहे हैं, जैसे कि हमारा रेडियो है, अखबार है,

0: टेलीविजन है, उसी में एक शब्द आता है ट्रॉलिंग का भी।
1: हाँ, ट्रोलिंग शब्द आपने बहुत अच्छा यूज किया, तो इसका देखिए कुछ लोगों को इसमें बुरा लग सकता है। क्या है कि आप इसमें जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, युवा पीढ़ी को लेकर देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के बात कर रहे हैं, उसमें आपकी मर्जी नहीं चल सकती है। हो सकता है कि वो आपको अच्छा भी लगे, हो सकता है बुरा भी लगे। किसी को मिठाई पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को गोलगप्पे पसंद है, तो ऐसे नहीं कह सकते। जो आप कह रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, वो आपकी मर्जी के अनुसार ही वह उसका उत्तर दे, ऐसा नहीं हो सकता।
0: जी बिल्कुल, और वैसे भी ये लोकतंत्र है तो हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि लोग आपसे, जरूरी नहीं कि हर बार सहमति हो, आपको असहमति का भी स्वागत करना चाहिए। शुक्ल जी, हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में जब फेक न्यूज, जो भ्रामक सूचना है, इनका अंबार है, इसके बीच में युवा सही खबर कैसे तलाशे।
1: हाँ, ये बात आपने जो है बहुत अच्छी उठाई है। इन सब के लिए युवा को जागरूक होना पड़ेगा, उसको अध्ययन करना पड़ेगा, उसको जनसंचार के माध्यम से अपने आप को पब्लिक में जाना पड़ेगा, जो आज की डेट में हम देख रहे हैं लुप्त प्राय हो रही है। लोगों का आपस में बातचीत करना लगभग सा बंद हो गया है। जब आप संपर्क में रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, उसकी बात को आप समझेंगे, अपनी बात को आप रखेंगे, तो आपको असलियत समझ में आएगी, क्या गलत है क्या सही है। बहुत सारा अध्ययन करना पड़ेगा, साथ साथ में एजुकेशन के मामले में, आपके पास डिग्री है वो अलग विषय है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे आप क्या बात रख रहे हैं, पत्रकारिता के माध्यम से आप क्या बात रख रहे हैं, तो इस सब के लिए सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए जब आप बात को रख रहे हैं। और किसी ने कह दिया, कुछ भी कह दिया, तो ऐसे नहीं चलता है। आपने कान से सुना, आपने अध्ययन किया नहीं, क्या विषय था, किसको क्या कहा गया, हो सकता है आपको ना कहा गया हो, हो सकता है किसी और परिप्रेक्ष्य में वो शब्द का प्रयोग किया गया हो, क्योंकि आपका तो ध्यान केवल मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पे था, तो आपने इसका अध्ययन किया ही नहीं कि वो विषय आपके लिए रखा गया था, किसी और के लिए रखा गया। तो ये बड़ा अध्ययन की बात है और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि जब तक वो उस विषय का अध्ययन प्रॉपर नहीं करेंगे, तब तक उनकी बात को लोग मजाक में टालेंगे। युवा को सीरियस होना पड़ेगा, अपनी बात को पूर्ण तरीके से सही साबित करने के लिए उस विषय का प्योर ज्ञान होना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं, तो अगर आपको विषय का ज्ञान होगा तभी आप सही और गलत खबर में अंतर कर पाएंगे, और उस खबरों के अंबार में से सही और मुफीद खबर या जो आपके लिए उपयोगी खबर है उसे आप निकाल पाएंगे।
1: जैसे एग्जांपल देता हूँ, आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे डॉक्टर बनकर नहीं, लेकिन वो डॉक्टर है नहीं, उनका मेडिकल फील्ड से कोई नाता नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझेंगे, आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो जिसने जैसा बोल दिया वैसा अपना लिया, हो सकता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक रहे।
0: जी बिल्कुल, जैसे कि इतने सारे जो सूचनाओं के जो माध्यम हैं, उन सूचनाओं के माध्यम में से हमें ये चुनना पड़ेगा, हमें अपनी मानसिकता जो हमारी है वो इस तरीके से रखनी पड़ेगी, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम सही खबर को उसमें से चुन सकते हैं।
1: आपने कहा ना युवा पीढ़ी मानसिक रूप से सजग है, फिजिकल रूप से भी पूरी तरीके स्वस्थ है, ऐसा नहीं है कि वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। गलत और सही क्या है, इसका भेद करने के लिए अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो उस विषय का अध्ययन जब तक उसके पास नहीं होगा, तब तक वो हंसी का पात्र बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।
0: जी बिल्कुल, शुक्ल जी, जैसे आपने कहा कि जिस भी विषय के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, आप उसमें से कुछ सही गलत जान सकते हैं, वो तभी संभव है जब आपने उस विषय का अध्ययन किया हुआ हो। शुक्ल जी, जैसे सोशल मीडिया ने युवाओं की अभिव्यक्ति को एक नया आयाम तो दिया है, उनकी स्वतंत्रता इस मामले में काफी पहले है, पीछे के दशक को अगर देखें वो अपने आप को और अधिक माध्यमों से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ चुनौतियां भी आई हैं, आप इसे कैसे देखते हैं?
1: देखिए, कोई भी वस्तु जब नई होती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, उसके निगेटिव पहलू भी होते हैं, उसके पॉजिटिव पहलू भी होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप पर, युवा पर, कि उस चीज को उसकी पॉजिटिविटी पे ध्यान दे या उसकी निगेटिविटी पे ध्यान दे। अगर किसी ने कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया है, आप सड़क पे जा रहे हैं, तो आप उसको कितना ध्यान देते हैं, कितना तवज्जो देते हैं, ये निर्भर आप पे करता है। यदि कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति सही ना हो सकता है वो किसी तनाव में हो और आपको कुछ बोल रहा है या अपने आप मन में ही बोल रहा है, अगर आप उसको अपने ऊपर ले रहे हैं कि हाँ उसने मुझको बोला, तो ये स्थिति ऐसी ठीक नहीं है। अपने आप की सोच भी जो है वो बदलनी पड़ेगी समय के साथ साथ, चूंकि इतने बदलाव आए हैं। पहले अखबार था, अखबार भी किस प्रकार से निकलता था, हाथ से लिखा हुआ अखबार आता था, आज से 200 वर्ष पहले अखबार की शुरुआत हुई थी। आप चाहते हैं बदलाव एकदम से हो जाए, नहीं हो सकते, क्योंकि युवा पीढ़ी जो आज उसका इस्तेमाल कर रही है सोशल मीडिया का, वो अभी बाल्यावस्था में ही है। धीरे धीरे अध्ययन और समय के साथ साथ में बदलाव होते जाएंगे और वो अपने आप अपने रास्ते पे ठीक तरीके से
0: आ जाएंगे। देवेश जी, जैसे आपने कहा हर चीज में समय लगता है, तो समय के साथ जो समस्याएं हमें दिख रही, शायद इनमें भी कुछ ना कुछ सुधार आएगा और नई समस्याएं भी आएंगी, तो उस सबका जो आधार है वो अध्ययन है। अध्ययन अगर हम करते रहेंगे विषयों का तो हम उसमें से निकल जाएंगे। मैं एक आपसे अंतिम प्रश्न ये जानना चाहूंगा, जो युवा पत्रकार आपको अभी सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: युवा पत्रकार जितने भी हैं उनको मेरा यही संदेश है, विषय को तभी रखें जब आपके पास उसका पूरा अध्ययन हो, और जितना अधिक अध्ययन करेंगे आपकी समाज में विषय के क्षेत्र में उतनी अच्छी आपकी इमेज बनेगी और भविष्य भी आपका उतना अच्छा उज्जवल होगा।
0: देवेश जी, आपका आकाशवाणी आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शुक्ला जी के साथ खास बातचीत। उम्मीद है ये चर्चा युवा पीढ़ी और जनसंचार के बदलते स्वरूप को समझने में सहायक रही होगी।
3: सोनाली, एक म्यूजिक ब्रेक तो बनता है।
2: बिल्कुल।

0: के उजियारे में बंधा मानव का हर हाल।
1: वाह कमाल है ना, अच्छी रचनाएं कभी पुरानी नहीं होती।
0: बिल्कुल, दिलचस्प बात यह है कि 1939 में कोलकाता के शॉर्ट वेव रेडियो सेवा के उद्घाटन के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने आकाशवाणी शीर्षक से एक कविता लिखी थी। उसी कविता से आकाशवाणी शब्द को नई पहचान मिली।
1: दोस्तों, टैगोर के लिए रेडियो सिर्फ तकनीक नहीं थी, बल्कि ऐसा माध्यम था जो विचारों, संस्कृति और इंसानों के बीच की दूरियों को कम कर सकता था। दिव्यांश, मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि एक साहित्यकार ने उस समय रेडियो में सिर्फ तकनीक नहीं देखी, बल्कि इंसानों को जोड़ने की उसकी क्षमता को पहचाना।
0: बिल्कुल, बात तो सही है।
1: चलिए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत कतिया करूं फिल्म रॉकस्टार से।

0: चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट का। 28 जुलाई को इंटरनेशनल नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। इसका मकसद है हमें याद दिलाना कि फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और बायोडायवर्सिटी को बचाना सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, हम सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथियों, छोटे छोटे कदम जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना भी बड़े बदलाव ला सकता है।
1: आज की तारीख भारत की राजनीति के इतिहास में भी खास महत्व रखती है। 28

0: जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने भारत के पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। किसानों के हितों और कृषि सुधारों के लिए उन्हें आज भी किसानों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है।
1: और अब बात आज की तारीख से जुड़े साहित्य के महत्वपूर्ण नाम की। 28 जुलाई को प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, बल्कि जिन लोगों के संघर्षों को अपनी रचनाओं में जगह दी, उनके बीच जाकर उनके जीवन को समझा भी और उनके लिए काम भी किया।
0: और आज ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। इस दिन का संदेश साफ है, टाइमली टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और सही अवेयरनेस के जरिए हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन से काफी हद तक बचाव संभव है। इसलिए अपनी सेहत के प्रति सजग रहना भी उतना ही जरूरी है।
1: इतिहास के पन्नों से गुजरते गुजरते अब वक्त है एक नई राह पर आगे बढ़ने का। अगला गाना आओ मिलो चलें, मूवी जब वी मेट से, ये रहा साथियों।

0: दोस्तों, अब वक्त है क्विक अपडेट्स का, जहां दिन भर की कुछ खास और दिलचस्प बातें हम आप सभी को बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्लासगो से आई एक ऐसी खबर से जिसने हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। भारत पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने वुमेन शॉट पुट F57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा।
1: अब बात एक ऐसे बदलाव की जो आने वाले समय में भारत का नक्शा भी बदल सकता है। एक नए रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक प्रदूषण और महंगे मकानों से परेशान होकर अब टीयर टू और टीयर थ्री शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, इंदौर, वडोदरा और प्रयागराज जैसे शहर बेहतर नौकरी के अवसर और बेहतर जीवन शैली की वजह से लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में ड्रीम सिटी की परिभाषा बदल जाएगी।
0: बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है।
1: दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिव्यांश, अब जरा रफ्तार धीमी करते हैं, सुनते हैं अगला गीत मस्त मगन फ्रॉम द मूवी टू स्टेट्स।

0: अभी आप सुन रहे थे आपका और हमारा अपना प्रोग्राम युववाणी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है yuvvanifeedback@gmail.com, yuvvanifeedback@gmail.com पर।
1: तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। उम्मीद है आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा। कल फिर इसी समय मिलेंगे नए प्रोग्राम नई ऊर्जा के साथ। मैं सोनाली
0: और मैं दिव्यांश।
1: अपनी फीडबैक yuvvanifeedback@gmail.com पर भेजना ना भूलें।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। युवाओं का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ और स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को भी छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे दिखावटी चुनाव कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद पर 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में भारतीयता की भावना को और मजबूत करना है। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Lok Sabha has taken up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, taking cognizance of the recent incidents of the paper leak, the Prime Minister himself decided that there is a need to further strengthen the legal framework to prevent malpractices.
4: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav questioned the government's decision of recruiting official through outsourcing in the National Testing Agency, which conducts the NEET examination. The discussion is underway. The Rajya Sabha has been adjourned for the day following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. When the House met after the first adjournment at 2 p.m., Micro, Small and Medium Enterprises Minister Jitan Ram Majhi introduced the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. During the introduction of the bill, the opposition members started sloganeering over the alleged police action against students. As the uproar continued, Deputy Chairman Harivansh adjourned the House till tomorrow to meet again at 11 a.m. India has termed the so-called Legislative Assembly elections being conducted in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and hide its grave human rights violations in the region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal called it a cosmetic electoral exercise and said that Jammu, Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of India.
5: Mr. Jaiswal said that the ongoing mass protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are the direct consequence of Pakistan's economic exploitation, its denial of the people's fundamental rights, and its administrative oppression. At least 20 people were reportedly killed and several others injured during a long march organized by the Joint Awami Action Committee in POJK. According to reports, many of the injured are in critical condition and the death toll is feared to rise. The Supreme Court today observed that recent nationwide protests over the NEET paper leak warranted a thorough, fair and impartial investigation into the allegations of injuries to the students and police officials. It also directed the release of minor student protesters arrested during the demonstrations and having no previous criminal records. The court asked the authorities to preserve electronic and digital evidence relating to the protests. The three-judge bench headed by Chief Justice Suryakant was hearing a batch of petitions alleging excessive use of police force during the demonstrations. The Indian Railways has sanctioned the project worth 163 crore rupees for upgradation of the electric traction system on the Parbhani-Mudkhed double line section in Nanded division of South Central Railways. The project includes conversion of the existing 1 by 25 kilovolts electric traction system to a more advanced 2 by 25 kilovolt system. In shooting, India's Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon secured the bronze medal in the 10-meter air rifle mixed team event at the ongoing ISSF World Cup in Hangzhou, China today. And that is the end of this news bulletin.
6: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:10 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंजनी का।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले अपने सभी श्रोताओं को राजेश और सरिता
1: सरिता
0: का नमस्कार।
1: नमस्कार राजेश। कहा जाता है ना कि जिस प्रकार कोयल की मधुर कूक से बगिया जो है जीवांत हो जाती है, उसी प्रकार लोकगीत जो है ना हमारी संस्कृति और परंपरा में नई ऊर्जा का संचार करती है। और भाई जो हमारा ये लोकरंजनी कार्यक्रम है ये कुछ ऐसा ही है।
0: बिल्कुल। और आपने जब कोयल की बात की है तो देखिए, कोयल अपनी मीठी कूक के लिए प्रसिद्ध पक्षी है। यह हरे भरे पेड़ों वाली बगिया में रहना पसंद करती है और वसंत ऋतु में इसकी मधुर आवाज़ वातावरण को आनंदमय बना देती है। बगियों में सुंदर फूल, पेड़ पौधे, कोयल की कूक से बगिया की शोभा और बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ रोली बरुआ बता रही है।
1: सुनते हैं रोली बरुआ से ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे रोली बरुआ से ये लोकगीत। और जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय लोकगीत में प्रेम, रूठना मनाना और मधुर नोकझोंक की अपनी अलग ही मिठास होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सरिता, और चाहे शहर हो या गांव हो, आज भी मनोरंजन का एक बड़ा अगर साधन कुछ है तो वो फिल्म है, सिनेमा है, मूवी का थिएटर है। और भले ही आज सिनेमा हॉल जो पहले सिंगल स्क्रीन हुआ करता था, आज मल्टीप्लेक्स ले लिया हो, लेकिन आज भी वही है।
0: लेकिन कहते हैं ना, अब जो लोकगीत का अपना आनंद है वो और किसी में नहीं। और ऐसा ही एक लोकगीत जो बिल्कुल चंचल और मनभावन लोकगीत है, पिया मैं तो एक ना मानूंगी, जिसमें एक स्नेह भरी अदा, आत्मीय संवाद और लोक जीवन की सहज भावनाएं बड़ी खूबसूरती से छलकती है।
1: बिल्कुल, और इसमें एक जिद भी है जो राजबाला करती हैं कि हमें आप ले चलो और उसके बिना तो हम मानोगे नहीं।

0: कर पावेगा। भीमराव में तू क्यों कह देखेगी, बोल में तेरा देवर पावेगा।
1: कैसी बात कह दी पियाजी,
0: देवर
1: से कोई घबराने की बात थोड़ी ना, वो तो बच्चा है, उसे तो एक चॉकलेट देके अपने फेवर में कर लूंगी मैं।
0: लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।
1: कह दे।

0: अभी आप राजबाला से सुन रहे थे ये लोकगीत।
1: और देखिए सरिता, किसी भी जो भारतीय स्त्री होती है उनके लिए जो एक सुहाग के तौर पर पति जो है वो सब कुछ होता है, लेकिन लेकिन जब उसी की पति की जिंदगी में कोई जब दूसरी औरत आ जाए फिर वो क्या स्थिति बनती है एक पत्नी के लिए, तो उस स्थिति को चित्रण करते हुए इस लोकगीत में आप सुन सकते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं सविता शर्मा से ये लोकगीत।

मैं होती लूली लंगड़ी तो लाते सौतनिया, जो मैं होती लूली लंगड़ी तो लाते सौतनिया, मैं तो चलू।

0: तो अभी सविता शर्मा से सुन रहे थे ये लोकगीत। राजेश कहते हैं कि मुस्कान जीवन की सबसे सुंदर भाषा है, और जब ये मुस्कान लोकगीतों के सुरों में ढल जाती है तो वातावरण आनंद और उल्लास से भर उठता है।
1: बिल्कुल सरता से ही कहा आपने। कहा जाता है जिंदगी ये हंसी खुशी कैसे बिताएं, कैसे आप चाहे दुखों का पहाड़ कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने जीवन में हंसना, खुश खुद को खुश रखना आपने अगर सीख लिया है तो सब यूं ही निकल जाता है आसानी से। और इसीलिए हंसने को लेकर कैसे करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा क्या कुछ गाने के जरिए कह रही है, आइए सुनते हैं।

0: तो अभी आप कर्मपाल शर्मा और मंजू शर्मा से सुन रहे थे ये लोकगीत।
1: और इसी के साथ लोकरंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं। अपने सभी साथियों को नमस्कार।
0: नमस्कार। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है तुषार पाराशर। कार्यक्रम के संयोजक थे शिव नंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंजनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। शाम के 5:30 बजे हैं और ये समय है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरे युवा साथी आकाश।
1: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में।
0: और आकाश, आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कॉमनवेल्थ खेलों में इस समय भारतीय दल अपनी चुनौती पेश कर रहा है। लगातार भारतीय खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं, तो कुल मिलाकर किस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स इस समय चल रहे हैं, इस पर आइए आपको सुनाते हैं हमारे युवा साथी आकाश की खास रिपोर्ट।
2: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि ग्लासगो में चल रहा है, उसको शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं और सबसे पहले बात 5वें दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि की। भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकड़ ने महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीतते हुए इतिहास रच दिया। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। वहीं एथलेटिक्स में सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में 2.25 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक अपने नाम किया। वेटलिफ्टिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ज्ञानेश्वरी यादव ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग और विल्लूरी अजय बाबू ने पुरुष 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके अलावा शिल्पा के शयाला ने शॉटपुट और विद्या रानी देवी ने महिला 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में 2 और पदक जोड़ दिए। अब बात आज यानी 6वें दिन की। तैराकी में साजन प्रकाश और श्री हरि नटराज अपनी अपनी स्पर्धाओं में उतरेंगे। एथलेटिक्स में राजेश रमेश, विशाल टीके, पूजा और गुलवीर सिंह पर सभी की निगाहें रहेंगी। वेटलिफ्टिंग में निरुपमा देवी सेराम और हरजिंदर कौर पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी। मुक्केबाजी में प्रीति, प्रिया, परवीन, जादूमणि सिंह और कपिल पोखरिया अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके अलावा लॉन बॉल्स, पैरा स्विमिंग और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भी भारतीय

0: खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। कल यानी सातवें दिन लॉन बॉल्स, वेटलिफ्टिंग और एथलेटिक्स में भारत की पदक जीतने की उम्मीदें कायम रहेंगी। संजना, दिलबाग सिंह, सेराम, निरुपमा देवी, पारुल चौधरी सहित कई खिलाड़ी पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले, इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर है। भारत अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य यानी कुल 10 पदकों के साथ 8वें स्थान पर बना हुआ है। कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय तोमर ने बात की जाने माने खेल विशेषज्ञ और प्रसार भारती संवाददाता संजीव दत्ता से। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: और इस बार की अगर हम बात करें तो अब तक, आज तक भारत ने जो स्वर्ण पदकों की बात है तो वो 2 स्वर्ण और 5 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम अब तक कर लिए हैं। 8वें स्थान पर है, 10 पदक भारत अब तक अपने नाम कर चुका है, तो एक बहुत उज्जवल भविष्य है। हालांकि इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में केवल 10 ही खेलों को सम्मिलित किया गया है। जिन खेलों में हमारी सबसे ज्यादा चुनौती थी, चाहे वो शूटिंग हो या वेटलिफ्टिंग के अलावा, शूटिंग के अलावा हमारे पास कुश्ती है, तो कुश्ती में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, शूटिंग में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, हॉकी में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो ऐसे खेल जिनमें भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है उन खेलों को इसमें नहीं जोड़ा गया है, तो ये थोड़ा सा भारत के लिए निराशाजनक जरूर रहा है।
2: बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि अक्सर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की जब बात करते हैं तो हमारे खिलाड़ी वहां पर एक पावर हाउस की तरह अपना प्रदर्शन करते हैं और बहुत सारे पदक जीतते हैं, लेकिन इस बार खेलों की संख्या कम है और कुछ खास तौर से कुछ ऐसे खेलों को अलग कर दिया गया है जिसमें भारतीय खिलाड़ी बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे थे। अब जैसे आगे बॉक्सिंग के मुकाबले हैं, वेटलिफ्टिंग के भी कुछ मुकाबले चल रहे हैं, तो क्या लगता है सर, कुछ और पदकों की संख्या बढ़ सकती है?
1: बिल्कुल, भारत ने अब जैसे मुक्केबाजी के अभी रिजल्ट तो अभी पूरे आए नहीं है क्योंकि राउंड ऑफ 16 के मुकाबले हुए हैं और राउंड ऑफ 8 के मुकाबले आपके होने बाकी हैं, तो राउंड ऑफ 8 के बाद ही हमारे पदकों की संख्या होगी। मगर लवलीना की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेमीफाइनल में उनको प्रवेश मिला है क्योंकि उनके मुकाबले में उनको वेट कैटेगरी में बाई मिली, तो बाई से वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में गई है, तो इससे एक उन्होंने पदक तो अपना सुनिश्चित, कांस्य पदक तो अब तक हम सुनिश्चित कर चुके हैं, मगर कांस्य से और आगे जाएंगे, तो उनका जब मुकाबला होगा तो सुनिश्चित है कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। सचिन की अगर हम की बात करें तो स्कॉटलैंड को उन्होंने पास किया, 4-1 का डिसीजन रहा, और अपना जादूमणि ने जो अपना 5-0 से अपने मुकाबले को जीता, तो वो ये दर्शाता है कि मुक्केबाजी में हमें 14 मुक्केबाज जो हमारे गए हैं, 14 में से हमें, मैं जो मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन है कि हम कम से कम 10 मेडल तो श्योर इसमें लेंगे ही लेंगे।
2: बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और संजीव जी, आप तो मुक्केबाजी से जुड़े रहे हैं और हमेशा से मुक्केबाजी का बहुत गहन विश्लेषण आपने किया है, तो जब भी हम मुक्केबाजी की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय से, खास तौर से पिछले कुछ सालों से, मुक्केबाजी एक ऐसा खेल बनके उभरी है जिसमें भारत का पदक एकदम पक्का माना जाता है। भारतीय मुक्केबाज आज एक पदक की सबसे बड़ी उम्मीद माने जाते हैं, तो इस बार जो हमारी टीम गई है, आपको लगता है सर इसमें कुछ और ऐसे मुक्केबाज हो सकते थे जो निश्चित तौर पर गोल्ड मेडल जीत?
1: देखिए, ये जो प्रक्रिया है, जो चयन प्रक्रिया चली थी लगातार पूरे साल, पहले तो होता था कि कंपटीशन से पहले आपका चयन होता था, मगर इस बार जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी नई प्रणाली चलाई है, वो पूरे साल जो प्रतियोगिताएं जितनी भी चलती हैं उन प्रतियोगिताओं में पॉइंट सिस्टम उन्होंने किया हर एक बॉक्सर के लिए, तो पॉइंट सिस्टम से वो अपने आप को आकलन करते हैं, तो खिलाड़ी का चयन होता है और उसके बाद एक चयन प्रक्रिया तो रहती है, तो वो पूरे साल की परफॉर्मेंस के आधार पर जो इस बार की टीम, मैं कहता हूं मुक्केबाजी की आप बात कर रहे हैं, तो मुक्केबाजी की जो टीम इस बार गई है तो वो ही अपने आप में सबसे बेस्ट टीम है, बिल्कुल निचोड़ जिसे कहते हैं ना कि वो टीम वहां पर पहुंची है। अगर पुराने बॉक्सर्स की बात करें जैसे डिंगू सिंह, अखिल कुमार, विजेंदर सिंह, सुजन सिंह, मनोज कुमार, अमित पंघेल, गौरव सोलंकी, विकास कृष्णा, नीतू ढांडर, ये ऐसे मुक्केबाज हैं जिन्होंने हमेशा भारत को स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं और आने वाले समय में भी भारत का बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है, चाहे वो वेटलिफ्टिंग ही क्यों ना हो। वेटलिफ्टिंग में आप देखिए, मीराबाई चानू ने अपनी 3री हैट्रिक की है, 3रा स्वर्ण पदक लिया है, हालांकि एक रजत पदक भी है बर्मिंघम में, सबसे पहले उन्होंने रजत पदक से ही शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार 3 संकटों में उन्होंने स्वर्णिम सफलताएं दिलाई, तो मैं कह सकता हूं कि चाहे वो वेटलिफ्टिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो रेसलिंग हो, तो ये गेमें ऐसी हैं, हालांकि इस बार रेसलिंग नहीं है, पर ये गेमें ऐसी हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक गौरवशाली इसका इतिहास रहा है।
2: कहीं ना कहीं संजीव जी, इस बार

0: वेट लिफ्टिंग में हम स्वर्ण पदक थोड़े कम ले पाए हैं, थोड़ा सा चूक हुई है, क्योंकि ब्रॉन्ज और सिल्वर हमारे अधिक आए हैं, स्वर्ण पदक तक हम थोड़ा कम पहुंच पा रहे हैं।
1: कल की अगर हम बात करें बिंदिया रानी की, आप उसका लिफ्ट देखें कितना अच्छा उसने लिफ्ट किया, गेम रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, मगर नाइजीरिया के लिफ्टर उनसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करके उसने भी उनका गेम रिकॉर्ड उसी समय तोड़ा। तो ऐसा नहीं है कल अजय बाबू ने अपना गेम रिकॉर्ड बनाया स्नैच का। तो ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी क्षमताएं दक्षताएं प्रस्तुत कर रहे हैं, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप अपनी क्षमताएं दक्षताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी खिलाड़ी का आकलन कम कर सकते, दूसरे भी राष्ट्रमंडल जो है राष्ट्र हैं वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। तो पूरा साल हमारा जो एक ट्रेनिंग शेड्यूल चला, चाहे वो वेटलिफ्टिंग का हो तो या बॉक्सिंग का हो, किसी भी गेम का हो, तो वो अपने आप में पूरी तरह से परिपक्व और पूर्ण तैयारी के साथ उतरा है। तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो रहती है। आप देखिए कि जहां मीरा भाई चानू ने 101 का पहले गेम रिकॉर्ड करना चाह रही थी, पर एकदम 105 पे फिर उन्होंने गेम रिकॉर्ड किया और अपनी तीसरा प्रयास को उन्होंने पूर्ण ही नहीं किया, मतलब उसके लिए वो तीसरे अटेम्प्ट के लिए आई नहीं, दूसरे अटेम्प्ट तक ही उन्होंने अपने आप को सीमित रखा। क्योंकि अब ये भी है कि वो अब आगे हो सकता है शायद आने वाली प्रतियोगिता एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स की भी अपने दिमाग में लेकर चल रही है, तो ये उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है।
0: संजीव जी, आपने तो खेलों को बहुत नजदीक से देखा है और बहुत सारे जो राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं उनको भी आप बहुत नजदीक से उनका गहन अध्ययन करते हैं। तो अब अगर हम बात करें इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भारतीय खिलाड़ी गए हुए हैं उनसे जो पदक की उम्मीद है, तो अगर हम भारतीय टीम की पूरी बात करें तो पहले तीन स्थान पर क्या भारतीय टीम हो सकती है?
1: पहले तीन स्थान पर आपने बहुत ऐसा प्रश्न पूछा है। पहले तीन स्थान की तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा प्रदर्शन जो है अन्य खेलों में इतना अच्छा नहीं रहा। लॉन बॉल हमारा बहुत अच्छा बॉल हम बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, महिला टीम ने जहां बर्मिंघम में स्वर्णिम सफलता दिलाई थी, मगर इस बार हमारी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रही है। अन्य राष्ट्र भी बहुत अच्छे उस पर चल रहे हैं। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल में तो हम पहले तीन पायदान पर तो नहीं दिखेंगे, मगर हाँ हम अपना प्रदर्शन पहले से बहुत बेस्ट करेंगे ये मैं कह सकता हूँ। हालांकि ये बहुत अभी जल्दबाजी होगी कि हम ये कहें कि ओवरऑल हम कितने अच्छे मेडल ले पाएंगे, मगर हमारा प्रदर्शन पहले से बेहतर रहेगा। इतने कम खेल होने के बावजूद हमारा प्रदर्शन थोड़ा सा यहाँ पर इस वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि हम हमारे यहाँ पर जिन खेलों में हमारा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व रहता था वो खेल इसमें सम्मिलित नहीं है इस बार, तो इसलिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे पायदान पे। इस समय आज की डेट में आप देखें आज हम 8वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया 26 स्वर्ण 13 रजत और 20 कांस्य पदक लेकर पहली पायदान पर है। इंग्लैंड 9 स्वर्ण 14 रजत और 11 कांस्य पदक लेकर 34 पदक है उसके पास, और कनाडा 7 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक लेकर तीसरे स्थान पर है। स्कॉटलैंड, अब आप एक चीज और देखिए, इंग्लैंड स्कॉटलैंड ये जो ऐसी कंट्रीज हैं ये बहुत बढ़ चढ़कर इन पावर गेम्स में बहुत अपना अच्छा प्रदर्शन दे पा रही है। तो हम यहाँ पर सिर्फ हमारी एक त्रुटि यही रही कि हमारी जो जिन गेमों में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन गेमों के सम्मिलित ना होने की वजह से हम पायदान में थोड़ा नीचे हैं।
2: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
0: कॉमनवेल्थ खेलों पर ये थी खास रिपोर्ट आकाश की, और जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी और संवाददाता, प्रसार भारती संवाददाता संजीव दत्ता ने भी बताया कि कई खेल ऐसे हैं जिसमें हम अच्छा खेलते हैं, खास तौर से रेसलिंग है, शूटिंग है, जो कॉमनवेल्थ खेलों में इस बार नहीं है, तो वो भी एक हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारी पदक तालिका इस बार थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक निराशा एथलेटिक्स एथलेटिक्स में, तो कॉमनवेल्थ में वैसे भी हम बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ का जो स्तर है, कॉमनवेल्थ खेलों का स्तर बहुत हाई होता है। और दूसरी तरफ जो हमारी वेटलिफ्टिंग है, जहां वेटलिफ्टिंग से हम काफ़ी सारे स्वर्ण पदक जीत सकते थे, लेकिन वहां पर भी अब हम रजत और ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष हमारे खिलाड़ियों को करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम वेटलिफ्टिंग के स्तर की बात करें तो कई कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहां पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप से भी, जो भारतीय राष्ट्रीय सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, उससे भी कम वजन उठाने पर वहाँ पदक मिल जाता था।

0: अपना बेस्ट यहाँ पर दें। खैर, कॉमनवेल्थ खेलो में तो बहुत सारी गतिविधियाँ चली रही हैं, लेकिन एक गतिविधि जो है वो दिल्ली में भी हो रही है, और वो हो रही है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार टेबल टेनिस को सम्मिलित नहीं किया था, इसीलिए उन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए दिल्ली में टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, और ये दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेली जा रही है। किस तरह से ये चैंपियनशिप चल रही है, क्या क्या इस चैंपियनशिप में हो रहा है, इस पर एक खास रिपोर्ट बनाई है हमारे सहयोगी आकाश ने, आइए सुनते हैं।
1: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शानदार आगाज हो चुका है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 7 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है। इस बार टूर्नामेंट का शुभंकर मयूर रखा गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के कार्यक्रम में टेबल टेनिस शामिल नहीं होने के कारण इस चैंपियनशिप का महत्व और भी बढ़ गया है। प्रतियोगिता में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा और नाइजीरिया सहित 25 से अधिक देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मेजबान भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय महिला टीम ने ग्रुप बी के अपने पहले मुकाबले में मालदीव को 3-0 से हराकर विजयी अभियान की शुरुआत की। युवा खिलाड़ी यशस्वी घोरपरे ने एसत रफा नजीम को सीधे सेटों में हराकर भारत की जीत सुनिश्चित की। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने भी अपने पहले मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंदी टीम को 3-0 से मात देकर जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआती मुकाबले में शानदार तालमेल और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए खिताब की दावेदारी मजबूत कर दी है। भारतीय टीम में पुरुष वर्ग में मानव ठक्कर, मानुष शाह, जी साथियान, हरमित देसाई और पयास जैन, जबकि महिला वर्ग में श्रीजा अकुला, सुतीर्था मुखर्जी, यशस्वी घोरपड़े, सिंड्रेला दास और स्वस्तिका घोष शामिल हैं। वर्ष 2019 में कटक में आयोजित पिछली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने सभी 7 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। घरेलू दर्शकों के समर्थन के बीच भारतीय टीम इस बार भी उसी प्रदर्शन को दोहराने और एक बार फिर खिताबी वर्चस्व कायम रखने के लक्ष्य के साथ प्रतियोगिता में उतर चुकी है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप पर और अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय तोमर ने बात की डीडीई दिल्ली सरकार एस सुनील से। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: अजय जी, ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स को बढ़ाने की पहल है, जिसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट अपना पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करा रही है, 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जिसमें अराउंड 25 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के प्लेयर्स भाग ले रहे हैं और डेलीगेट 27 कॉमनवेल्थ कंट्रीज से आए हुए हैं इसके अंदर, जो 27 तारीख से शुरू हुई है और 2 अगस्त तक चलेगी।
0: इस बार जिस तरह से कॉमनवेल्थ खेलों में टेबल टेनिस को सम्मिलित नहीं किया गया है और उसी समय में ये कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हो रही है, तो सर कहीं ना कहीं एक संदेश है कि टेबल टेनिस जो एक ऐसा खेल है जो बहुत लोकप्रिय है, उसको कॉमनवेल्थ में होना चाहिए था।
2: बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी। दिल्ली गवर्नमेंट का ये मानना था कि टेबल टेनिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और जिसको दिल्ली गवर्नमेंट प्रोत्साहन भी देना चाहती है। ये ऐसा गेम है जिसमें मेडल प्रॉस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने 5 ऐसे स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसको पुश करेगी और जिनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बनाएगी, जिसमें टेबल टेनिस भी एक है। और क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ग्लासगो में चल रहे हैं टेबल टेनिस इंक्लूडेड नहीं था, तो उसी समय पे ताकि टेबल टेनिस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम टेबल टेनिस का कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप कराएंगे।
0: 2019 में जब चैंपियनशिप हुई थी भारत में टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, उस समय भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी और सभी स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। इस बार क्या लगता है आपको कि भारतीय टीम कितनी मजबूत है और जो बाकी देशों के खिलाड़ी आए हैं उनके प्रदर्शन को देख के क्या लगता है सर कि किस तरह से इस बार चैंपियनशिप डिसाइड होगी?
2: इंडिया की टीम जो है बहुत ही मजबूत टीम है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अपने ग्रुप स्टेज टीम इवेंट्स चल रहे हैं, ग्रुप स्टेज में अपने सारे मैच अभी मेंस और वुमेन्स टीम दोनों ने जीते हैं और अच्छी तरह जीते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट से। तो वी आर कॉन्फिडेंट दैट इंडिया विल रिपीट इट्स परफॉर्मेंस एंड विन मेडल्स अक्रॉस द बोर्ड।
0: सर आपने बताया कि कुछ 5 खेल ऐसे हैं जिनको दिल्ली सरकार काफी बढ़ावा देगी, टेबल टेनिस भी उनमें से एक है, तो बाकी अन्य 4 खेल कौन कौन से हैं?
2: टेबल टेनिस के अलावा जो बाकी गेम्स हैं वो है रेसलिंग, एथलेटिक्स, जूडो और स्विमिंग।
0: बहुत अच्छी बात।

0: आपने बताई, दिल्ली में हमेशा से खेलों का एक कल्चर रहा है और दिल्ली सरकार के विभिन्न जो केंद्र हैं, खेलों के केंद्र हैं, जहां से स्कूल नेशनल्स के लिए खिलाड़ी तैयार होते हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। चाहे हम उनमें ओलंपियन देख सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियन देख सकते हैं, इवन भारतीय टीम के इस समय जो क्रिकेट के कोच है गौतम गंभीर, वो दिल्ली गवर्नमेंट के सेंटर से निकल के आगे बढ़े हैं। वीरेंद्र सहवाग दिल्ली गवर्नमेंट के सेंटर से निकल के आगे बढ़े।
1: कोहली भी जो है
0: विराट
1: वो भी दिल्ली गवर्नमेंट के सेंटर से बढ़े हैं। विकासपुरी के सेंटर से उन्होंने शुरू कर दी थी,
0: जी
1: वो
0: जी
1: दिल्ली
0: जी जी
1: गवर्नमेंट का ही सेंटर है।
0: तो सर, इस तरह से जब दिल्ली सरकार इतना प्रोत्साहन देती है तो सर कितना अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे मेडल लेके आते हैं।
1: सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों को इसी बात की होती है कि हमारे सेंटर से बच्चे निकल के आगे जा रहे हैं। आप एक चीज को देखिए कि ओलंपिक्स में जितने भी मेंस में रेसलिंग मेडल्स मिले हैं वो सारे दिल्ली गवर्नमेंट के छत्रसाल स्टेडियम से ही निकले हैं। जो
0: जी
1: भी आज तक मेडल मिला है रेसलिंग का मेंस में, इस हिसाब से ओलंपिक्स में एथलेटिक्स के अंदर भी दिल्ली से छत्रसाल स्टेडियम से ही कई लोग निकले हैं। अमोद जेकब हो गए आपके, सार्थक भामरी आपके हो गए, तिजेश्वर शंकर जो कि नेशनल रिकॉर्ड होल्डर डेकैथलन में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल रहे हैं, उन्होंने भी अपनी शुरुआत और काफी टाइम तक प्रैक्टिस छत्रसाल स्टेडियम से ही करी है। तो ऐसे ही काफी लोग हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्टेडियम्स के अंदर प्रैक्टिस करके उनके कोचेस के अंदर ट्रेनिंग लेके आगे बढ़े हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी स्पोर्ट्स को लेकर यही है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एथलीट्स, इनको पूरा सपोर्ट करें ताकि ये अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके। और इंडिया जो है ओलंपिक्स की जो तैयारी कर रहा है 2036 की, उसमें जो मेडल्स हमने मिलने हैं उसमें दिल्ली का एक बहुत भारी शेयर रहे।
0: सर, आज आप हमारे साथ हैं, देश के कोने कोने में लोग आपको इस समय सुन रहे होंगे। खेलों में कितना आज भविष्य बन सकता है और खेल कितने महत्वपूर्ण है एक व्यक्तित्व के विकास के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे सुनने वालों को?
1: देखिए खेल का, स्पोर्ट्स का जो है इंसान के लाइफस्टाइल में बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं सपोर्ट रहता है। नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि वो अपना डिसिप्लिन सिखाता है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपके अंदर। अगर आज की डेट में आप देखते हैं जो बच्चे ड्रग्स के नशे के आदतों में पड़ रहे हैं, उससे भी निकलने में स्पोर्ट्स काफी हेल्प करता है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में और हमारे जो शिक्षा और खेल के मंत्री हैं आशीष सूद जी के नेतृत्व में, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसे कई स्कीम्स निकाली हैं जिसमें स्पोर्ट्स का बढ़ावा बने। ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स, इन सब में जो बच्चे मेडल लेकर आते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए हाईएस्ट प्राइज मनी ऑल ओवर द कंट्री जो है आज की डेट में वो दिल्ली गवर्नमेंट देता है। इसके अलावा ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए स्कूल के बच्चों को 5 लाख तक का प्रोत्साहन देना और एलाइट एथलीट्स को 20 लाख तक का ट्रेनिंग सपोर्ट देना। इसके अलावा पार्टिसिपेशन सपोर्ट, ये सारी योजनाएं दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आए हैं। इसके अलावा फ्यूचर में स्पोर्ट्स जो एथलीट्स हैं हमारे, उनको मेडिकल सपोर्ट के लिए, उनको रिहैबिलिटेशन के लिए, फिजियोथेरेपी सपोर्ट के लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स बना रहा है जिससे उनको जो हमारे स्टेडियम से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबको उसकी हेल्प मिले। और भी ऐसी कई स्कीम्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट बना रही है स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए।
0: ये थे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन दिल्ली सरकार, जो बता रहे थे कि दिल्ली सरकार और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने मिलकर जिस तरह से टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित की है और वो अभी इस समय चल रही है दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, वहां पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से खिलाड़ी आए हुए हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि दिल्ली में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के ढेर सारे केंद्र हैं जहां पर आप निशुल्क कोचिंग भी ले सकते हैं और खेलों में अपना करियर बना सकते हैं। और वहीं खेलों में लगातार शानदार परफॉर्मेंस हमारे शूटर्स जो हैं, शूटिंग के खिलाड़ी हैं, वो दे रहे हैं, और इस समय वर्ल्ड कप में क्या सूरत हाल है इस पर सुनते हैं हमारे सहयोगी आकाश की खास रिपोर्ट।
2: चीन के हांगझोउ में स्थित फुयांग यिनहू स्पोर्ट्स सेंटर में 20 से 29 जुलाई तक आयोजित ISSF राइफल, पिस्टल और शॉटगन विश्व कप 2026 में भारतीय निशानेबाजों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 61 देशों के 680 से अधिक निशानेबाजों की मौजूदगी वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। भारत की सबसे बड़ी सफलता महिलाओं के 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में मिली, जहां युवा निशानेबाज ईशा सिंह ने बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में ईशा ने 40 अंक हासिल कर

0: मेजबान चीन की युए युए झांग को 37 अंकों पर पीछे छोड़ दिया। इस जीत के साथ ईशा सिंह ने न केवल भारत को स्वर्ण पदक दिलाया बल्कि वर्ष के अंत में इटली के रोम में होने वाले ISSF वर्ल्ड कप फाइनल के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया। इसी स्पर्धा में भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कांस्य पदक मुकाबले में शूट ऑफ जीतकर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। इस तरह भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य दोनों पदक जीतकर डबल पोडियम फिनिश दर्ज की। टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में संयम बिज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला था। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने पूरे दल का मनोबल बढ़ाया। अब तक भारत के खाते में एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य यानी कुल 3 पदक आ चुके हैं और भारतीय टीम पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों में अपनी जगह बनाए हुए है जबकि मेजबान चीन पहले स्थान पर बना हुआ है।
1: कॉमनवेल्थ खेलों में इस बार शूटिंग को शामिल नहीं किया है लेकिन भारतीय निशानेबाज लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और विश्व कप में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और वहीं अंडर 17 विश्व कप, रेसलिंग विश्व कप, वहां पर भी काफी सारी गतिविधियां हो रही हैं और किस तरह से पहलवान वहां पर अपनी ताल ठोक रहे हैं, आइए सुनते हैं।
0: अजरबैजान की राजधानी बाकू के नेशनल जिम्नास्टिक एरिना में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हो गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के माध्यम से आयोजित ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगी। 7 दिनों तक चलने वाली इस विश्व चैंपियनशिप में दुनिया भर के उभरते हुए पहलवान विश्व खिताब के लिए अपना दमखम दिखा रहे हैं। चैंपियनशिप का आयोजन 3 प्रमुख वर्गों, ग्रीको रोमन, महिला कुश्ती और पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में किया जा रहा है। प्रतियोगिता की शुरुआत ग्रीको रोमन मुकाबले से हुई जिसमें विभिन्न भार वर्गों के क्वालिफिकेशन और सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। 29 जुलाई से महिला कुश्ती की स्पर्धाएं शुरू होंगी जबकि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक पुरुष फ्री स्टाइल मुकाबलों के साथ प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में पहुंचेगी। भारत ने इस विश्व चैंपियनशिप में तीनों वर्गों में प्रभावशाली युवा पहलवानों का मजबूत दल उतारा है। विशेष रूप से महिला कुश्ती में भारतीय खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। 53 किलोग्राम, 57 किलोग्राम और 61 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय महिला पहलवानों को पदक का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वहीं ग्रीको रोमन और पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं। ये प्रतियोगिता केवल विश्व खिताब की लड़ाई नहीं बल्कि भविष्य के ओलंपिक सितारों की पहचान का भी महत्वपूर्ण मंच है। लॉस एंजलिस 2028 और ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक की तैयारियों के लिहाज से ये चैंपियनशिप युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा साबित करने का सुनहरा अवसर मानी जा रही है। ऐसे में भारतीय खेल प्रेमियों की नजरें भी बाकू में युवा पहलवानों के साथ प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी।
1: वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 17 की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है और ये जो अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 जो जूनियर स्तर पर जो चैंपियनशिप्स होती हैं वही आने वाले, वही खिलाड़ी आने वाले कुछ समय में ओलंपिक चैंपियन भी बनते हैं क्योंकि यही वो पड़ाव है जिससे खिलाड़ी खेलकर आगे बढ़ता है। और लगातार इस तरह की चैंपियनशिप से जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा रहता है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि वो अधिक से अधिक चैंपियनशिप्स खेले अपने जूनियर स्तर पर ताकि उसको एक एक्सपोजर मिल जाए ताकि वो बड़े स्तर पर जब खेलने जाए तो उसको कोई वहाँ पर दिक्कत ना हो। और वहीं अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की और भारतीय घरेलू फुटबॉल सत्र के सबसे पुराने बल्कि डूरंड कप के अगर हम बात करें इतिहास की तो डूरंड कप का ये 135वां संस्करण है। मतलब आप ये देखिए कि डूरंड कप 2026 की जब शुरुआत हुई है 25 जुलाई को तो ये डूरंड कप का 135वां संस्करण है। कितने साल पुराना ये टूर्नामेंट है और दुनिया में बहुत पुराने जो फुटबॉल के टूर्नामेंट्स हैं उनमें से एक डूरंड कप है और इसमें मोहन बागान ने इसको 17 बार जीता है और इतिहास की सबसे सफल टीम रही है मोहन बागान। और उसके बाद ईस्ट बंगाल की टीम है जिन्होंने 16 बार इस खिताब को जीता और वो दूसरे स्थान पर है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि 135 संस्करण हुए हैं जिसमें से 17 बार वो टीम जीती है जो सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक बार जीती है। तो कितना मुश्किल है इस को जीतना, डूरंड कप को जीतना, ये इसी बात से साबित होता है कि यहाँ पर जो भारत की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल की टीम्स होती हैं वो यहाँ पर खेलती हैं। और डूरंड कप में जो ग्रुप बनाए गए हैं इस बार वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी और ई और एफ, छह ग्रुप बनाए गए हैं और इन सभी में भारत की जो बेस्ट टीम्स हैं, मोहन बगान, ईजी, ईस्ट बंगाल एफसी, साउथ यूनाइटेड एफसी, सीआईएसएफ, इस तरह की जो मोमडन स्पोर्टिंग, इंडियन आर्मी, जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं इंडिया में, भारत में फुटबॉल की, वो सभी इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं। और डूरेंट कप में आज जो मुकाबला खेला जा रहा है वो टीआरएसयू एफसी बनाम नोरेको एफसी का मुकाबला इस समय खेला जा रहा है और ये इम्फाल के कुमार लेमान मुख्य स्टेडियम में खेला जा रहा है। और इसके बाद यूनाइटेड, साउथ यूनाइटेड एफसी का मुकाबला सीआईएफएस प्रोटेक्टर से शाम को 7 बजे किशोर भारती क्रीडांगन जो कोलकाता में है वहां पर खेला जाएगा। तो ड्रोन कप के मुकाबले अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, जमशेदपुर में भी ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 4 जगहों पर ये मुकाबले हैं, शिलोंग में हैं, तो ये मुकाबले लगातार खेले जाएंगे और भारत के बेस्ट से बेस्ट फुटबॉलर यहाँ पर शिरकत करेंगे। और वहीं अब भारतीय क्रिकेट टीम का भी चयन कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खास तौर से ये जो टीम तैयार हुई है ये है श्रीलंका दौरे के लिए। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन कर दिया गया। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है जिसमें कप्तान बनाया गया है शुभमन गिल को और केएल राहुल को उसमें उपकप्तान बनाया गया। यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा जैसे सरीके खिलाड़ी इस टीम में टीम का हिस्सा हैं। तो दोस्तों अब स्टूडियो घड़ी में बता रही है कि हमें आपसे विदा लेनी होगी। मैं अजीत तोमर, मेरे सहयोगी आकाश और हमारे कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
0: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
2: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
3: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। तो सरिता, आज हम अपने इस कार्यक्रम में सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे से। यह हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन वायरल हेपेटाइटिस यानी लीवर की सूजन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, जांच और उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है आज का दिन।
1: बिल्कुल। और कहते हैं ना, इस बीमारी से होने वाली मृत्यु और गंभीर जटिलताओं को कम करना भी इसका उद्देश्य है इस दिन का। और ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक की भी जयंती है और इसके उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज इसी दिन हुई है और इसका टीका विकसित करने का भी आज का ही दिन रहा है।
0: बिल्कुल। और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूच ब्लूमबर्ग के जन्मदिन की याद में, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी, ये आज का दिन मनाया जाता है। और वर्ष 2030 तक जो उद्देश्य है वो ये है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में हेपेटाइटिस को खत्म करना और लोगों को इसके प्रशिक्षण, परीक्षण, टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है। तो इसलिए इसमें जो वायरस को लेकर के
1: मतलब
0: हम
1: अगर राजेश भाई कहा जाए तो इस वर्ष जो ये हम अगर हम बात करें तो इसका संदेश यही है कि आप सही समय पर जांच, उचित उपचार और जागरूकता के माध्यम से आप इस बीमारी को रोक सकते हैं। और हम सभी का कर्तव्य है कि स्वयं जागरूक तो हमें बनना ही है, साथ ही साथ अपने परिवार तथा समाज को भी इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में भी हमें जानकारी देना
0: बिल्कुल
1: चाहिए,
0: यही यही मैं कहना चाह रहा था कि
1: क्योंकि
0: हेपेटाइटिस एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके प्रति लोगों को जागरूक करना जरूरी है। लोगों को इस बीमारी के प्रति सचेत करने के लिए इस दिन का खास महत्व है। और जागरूकता के अभाव में दुनिया भर में लोग हेपेटाइटिस की चपेट में आ रहे हैं। लीवर से जुड़ी इस बीमारी के कारण जान को खतरा रहता है और यही वजह है कि आज इस तरह से जागरूक किया
1: जी
0: जा
1: हाँ। और
0: रहा
1: कहते हैं कि स्वस्थ लीवर स्वस्थ जीवन की आधारशिला है।
0: है।
1: और भाई, ये तो हेपेटाइटिस की जानकारी थी राजेश भाई। और आज जो हमारे युवा है ना, युवा के हर कोई जो है ना, डिजिटल की दुनिया में जी रहा है। तो
0: डिजिटल, बिल्कुल, जब हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया

0: की बात करें तो लगातार सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो हर जगह देखा जा सकता है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ग्रामीण स्तर पर भी। तो आज सोशल मीडिया यानी डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में किस तरीके से युवाओं के लिए एक मौका है, ये इस पर आइए एक बातचीत सुनते हैं सुरेंद्र सिंह से।
1: अनिल तिवारी से, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं।
0: जी
2: ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएशन रोजगार का एक बेहतरीन माध्यम बन रहा है। ग्रामीण युवा अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करके कृषि, बागवानी, स्थानीय संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन जैसे विषयों पर वीडियो, रील्स और ब्लॉग बनाकर आज अच्छी कमाई कर रहे हैं। आज ढेर सारे युवा डिजिटल क्रिएशन के जरिए अपनी पहचान बना चुके हैं और स्वरोजगार के मार्फत आय बढ़ाने में सक्षम भी हुए हैं तथा अन्य युवाओं को भी वो प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अनेक युवा अपनी रुचि के हिसाब से विभिन्न विषयों पर कंटेंट तैयार कर लोगों में जागरूकता तो ला ही रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इस काम से खुद की आय बढ़ाकर वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला रहे हैं तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज से ठीक 11 साल पहले वर्ष 2015 में भारत ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना था। आज मिशन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर आज 1050 मिलियन तक हो गई है। डिजिटल इंडिया एक सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़कर अब एक जन आंदोलन का रूप पकड़ लिया है। पूरे देश में शासन, वाणिज्य, दैनिक जीवन तथा रोजगार प्राप्त करने के अवसरों को मौलिक रूप से बदल रहा है। ग्रामीण युवाओं के बीच डिजिटल कंटेंट क्रिएटिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंडिया AI मिशन के तहत मुफ्त में कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। युवाओं को AI और आधुनिक तकनीक स्किल में प्रशिक्षित करने के लिए कई तरह की राष्ट्रीय कौशल पहलों और डिजिटल कैंपेन की भी शुरुआत हुई है। डिजिटलीकरण से ग्रामीण भारत में जबरदस्त बदलाव हो रहा है। अधिक से अधिक युवा प्रौद्योगिकी को आज अपना रहे हैं और डिजिटल दुनिया से खुद भी जुड़ रहे हैं और लोगों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। मोबाइल प्रौद्योगिकी अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है और अधिक से अधिक युवा अपने दिनचर्या में डिजिटल उपकरणों को अपना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 24 वर्ष के 94% युवाओं के पास आज मोबाइल फोन की सुविधा है, हालांकि शहरों में यह 97% है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 24 वर्ष के 90% युवाओं के पास अब इंटरनेट का कनेक्शन है, जो यह दर्शाता है कि यह पीढ़ी तेजी से इंटरनेट से जुड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में ईमेल और इंटरनेट बैंकिंग की भी लोकप्रियता बढ़ी है। डिजिटल कौशल को लगातार अपनाने से ग्रामीण भारत और अधिक सशक्त हो रहा है तथा प्रौद्योगिकी के नए नए अवसर विकसित होने की संभावनाएं बढ़ी है। सरकार ने भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का निर्माण किया है। डिजिटल इंडिया पहल ने प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप और नवाचार योजनाओं को लागू किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जेन नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप डोमेन, स्पेसिफिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नेक्स्ट जनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम जैसी योजनाएं शामिल है। इसके अलावा भारत नेट परियोजना भी महत्वपूर्ण है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को ऑप्टिकल फाइबर लाइनों से जोड़ती है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड योजना दूर दराज के समुदायों को 4G सेवा प्रदान करती है। इसे इंटरनेट उपलब्धता बढ़ाने के लिए ही अपनाया गया है। भारत BPO प्रमोशन स्कीम और नॉर्थ ईस्ट BPO प्रमोशन स्कीम कम सेवा वाले क्षेत्रों में IT और ITES विकास को प्रोत्साहित करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी की भी संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। PM वाणी कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में सार्वजनिक Wi-Fi हॉटस्पॉट प्रदान करना है। इन सभी परियोजनाओं ने मिलकर डिजिटल संभावनाओं को बढ़ाया है तथा भारत की डिजिटल क्रांति को जमीन पर उतारने में अपेक्षित मदद की है। आज आए दिन अनेक ऐसे युवा की कहानी सामने आती है, जो केवल एक मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर YouTube, Instagram, Facebook पर व्यापक पहुंच के जरिए हर महीने लाखों की कमाई कर रहे हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के लिए प्रति क्षण नए नए आइडिया पर काम हो रहा है। जीवन के छोटे बड़े हर अवसरों की नवीन प्रस्तुति लोगों को लुभा भी रही है। भारत में वेडिंग इंडस्ट्री में तकनीक और संवेदनाओं के संगम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। अब शादी की रस्मों के साथ साथ भावनाओं और अनकहे पलों को सहेजने के लिए वेडिंग कंटेंट क्रिएटर की मांग बढ़ रही है। यह डिजिटल बदलाव गांव के लिए एक नए अवसर के रूप में है। गांव के युवाओं के लिए स्वरोजगार का इससे एक नया और मजबूत जरिया बन रहा है। गांव देहात की शादियों में भी पारंपरिक फोटोग्राफर के साथ साथ वेडिंग कंटेंट क्रिएटर और वेडिंग सोशल मीडिया मैनेजरों की मांग बढ़ रही है। इनका मुख्य काम शादी की रस्मों के साथ साथ माँ की ममता, पिता के मौन और पर्दे के पीछे उन अनकहे जज्बातों को सहेजना है जो अक्सर बड़े कैमरों की नजर से छूट जाते हैं। इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब सर्च और अन्य वीडियो प्लेटफॉर्म के तेजी से विस्तार से नई पीढ़ी की सोच को बदल दिया है। आज युवा अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को हफ्तों बाद नहीं बल्कि उसी रियल टाइम में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर शादी की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। कंटेंट क्रिएटर कैमरे के जरिए सिर्फ चेहरों को नहीं बल्कि रिश्तों की धड़कन और भावनाओं को भी रिकॉर्ड करते हैं जो लोगों को पसंद आता है। आलम यह है कि अब गांव में भी एल्बम कब मिलेगा की जगह पहला सवाल यह होने लगा है कि रील कब आएगी। इस डिजिटल बदलाव के कारण छोटे कस्बों, गांवों और ग्रामीण अंचल के रचनात्मक युवाओं के लिए स्वरोजगार और कैरियर का एक शानदार नया विकल्प बनकर सामने आया है। भारत का ग्रामीण डिजिटल विकास युवाओं को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए बहुत सशक्त बना रहा है, जिससे कि दैनिक जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं। डिजिटल क्रांति के कारण गांव और शहर के विभाजन कम हो रहे हैं। कम लागत वाले हाई स्पीड इंटरनेट और विभिन्न सरकारी पहलुओं की उपलब्धता के साथ ग्रामीण युवा संचार, स्टार्टअप, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, बागवानी और आर्थिक विकास के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बन रहे हैं। यह प्रवृत्ति विकास और अवसर को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका की बढ़ती समझ को दर्शाती है। जैसे जैसे डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है, ग्रामीण युवा देश की भविष्य की कनेक्टिविटी और समावेशिता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हुए हैं। कुल मिलाकर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन आज युवाओं के लिए तेजी से उभरता हुआ कैरियर बन चुका है। फूड ब्लॉगिंग, ट्रेवल ब्लॉगिंग, म्यूजिक फोटोग्राफी, शिक्षा, खेती, बागवानी और वीडियो प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में युवा अपनी प्रतिभा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पहचान और रोजगार दोनों में बदल रहे हैं। छोटे छोटे गांव और पहाड़ी इलाकों के क्रिएटर भी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हाल के दिनों में अनेक युवाओं के सफलता की कहानी यह बताती है कि आज रचनात्मकता सिर्फ शौक नहीं बल्कि मजबूत आर्थिक अवसर बन चुकी है। श्रोताओं, ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल क्रिएशन और डिजिटल उद्यमिता के लिए सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान पीएमजी दशा के साथ साथ राज्यों द्वारा भी प्रोजेक्ट गंगा और डिजिटल इंटरप्रेन्योर की योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य सरकारें इंटरनेट विस्तार के लिए ग्रामीण युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनाती है और व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए की ऋण सहायता भी प्रदान करती है। ग्राम पंचायतों में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। नाबार्ड और एनएसडीसी जैसी संस्थाएं भी डिजिटल इनोवेशन का कार्यक्रम चला रही हैं। ग्रामीण युवा इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए स्वरोजगार प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं तथा अन्य लोगों को भी वीडियो कंटेंट क्रिएशन के जरिए रोजगार प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं।
0: तो इस वक्त हम सुन रहे थे आप कि किस तरीके से ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं, और अनिल तिवारी वरिष्ठ पत्रकार से। और अब क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, वो पूरी तरीके से जो आधारित है एक तरीके से आपके हैं, तो पर्यावरण के बिना हम एक स्वच्छ जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते लाइफ की, तो इसीलिए जरूरी है। और आज खास दिन इसलिए भी है क्योंकि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है, 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को प्रकृति, वन, जल, वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।
1: बिल्कुल राजेश भाई, आपने सही कहा कि बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई

0: हम अपने जीवन में कोशिश करें, खुद लगाएं पेड़, दूसरों से भी लगवाएं, और किस तरीके से इसका संरक्षण किया जाए उस पर जो है वो जोर देना चाहिए। दूसरा, जल की बचत करनी चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, वन्य जीव और जैव विविधता की रक्षा होनी चाहिए, स्वच्छ और हरा भरा वातावरण स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसलिए आइए हम सभी प्रकृति के संरक्षण का संकल्प आज के दिन लें।
1: बिल्कुल, क्योंकि पृथ्वी हमारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है, इसलिए हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना है, प्रकृति के संरक्षण का, जैसा कि राजेश भाई ने कहा, हम सबको संकल्प लेना है।
0: बिल्कुल, तो जानकारी की और भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका मनोरंजन करते हैं, तो सुनते हैं राजपाल सिंह और योगेंद्र सिंह।

0: आप सुन रहे थे राजपाल सिंह और योगेंद्र से ये उपदेश।
1: बिल्कुल।
0: और आज अगर हम अपने देश यानी कि भारत देश की बात करें तो भाई आज हमारा एक मजबूत देश है, विकसित भारत है।
1: बिल्कुल। और हम इससे पहले रोजगार की बात कर रहे थे, और देखिए रोजगार की वजह पर्पस ही, इस उद्देश्य से ही भारत सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई थी, और वो था मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी, और इसका उद्देश्य भारत को एक मजबूत विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बनाना था, जिसमें निवेश को बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना था। और इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि मेक इन इंडिया जो भारत सरकार की पहल थी, इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की, नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी। और सबसे खास बात यह है कि देश में उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया एक तरीके से बूस्ट का काम कर रहा है।
0: बिल्कुल। और इस पहल ने देश में उद्योगों के विस्तार, निवेश को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत में बने हुए उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सेमीकंडक्टर हो, रक्षा उत्पादन हो, रेलवे हो, अंतरिक्ष हो, अक्षय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्र में नई परियोजनाएं स्थापित हो रही है। इससे देश के उत्पादन क्षमता के साथ साथ निर्यात में भी वृद्धि हो रही है।
1: बिल्कुल सत्तावन, ठीक कहा। और भारत जैसे देश में जहाँ पर श्रम प्रधान एक तरीके से देश है, तो वहाँ पर मेक इन इंडिया अगर लाया गया तो इसका बहुत बड़ा मकसद है। और देखिए इसके फायदे जो हैं एक नहीं कई सारे हैं। एक तो उद्योग के विकास को बढ़ावा मिल रहा है इससे, दूसरा विदेशी निवेश जो FDI है उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, देश के नए उद्योग स्थापित करने में मदद मिल रहा है इससे, नए रोजगार के साथ स्वदेशी उत्पादन जो है वो बढ़ावा मिल रहा है। और देखिए लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वोकल फॉर लोकल, मतलब स्वदेशी जो चीज़ें हैं, लोकल चीज़ें, उसके लिए आप वोकल बनो, उन
0: बिल्कुल
1: चीज़ों को खरीदो, उन चीज़ों की जो है मार्केटिंग करो।
0: जी, अपने देश की बनी हुई चीजों को आप बढ़ावा दे।
1: बिल्कुल
0: और ये अभियान जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSEMI को भी एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है, और आधुनिक तकनीक, डिजिटल नवाचार और कौशल विकास के माध्यम से छोटे उद्योग भी वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, जैसा राजेश भाई आपने कहा, ये भावना जो है ना स्थानीय उत्पादों को एक नई पहचान दे रही है, और भारतीय जो उत्पाद है ना उसकी जो मांग है देश विदेश में अब देखा जाए तो बढ़ी है राजेश भाई।
1: बिल्कुल।
0: और बात अगर हम करें कि आपने तो जैसा कि बताया कि भाई इसकी वजह से, मेक इन इंडिया की वजह से उत्पादन बढ़ने का ये अभियान नहीं है बल्कि एक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का ये राष्ट्रीय संकल्प भी है।
1: बिल्कुल। और इसका हर तरीके से आप अगर देखें तो देश की GDP पे लगातार असर पड़ रहा है, बढ़ रहा है। देश आर्थिक लिहाज से अगर कहें तो एक तरीके से बूस्टर डोज का काम कर रहा है। तो हर तरीके से, एक तो अब ये हो रहा है कि कई सारे जो कंपनीज हैं वो लगातार शिफ्ट हो रही है भारत जैसे देश में। भारत में अलग अलग एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की लगातार सरकार की तरफ से कोशिश है, और कई सेक्टर में सफलता मिली भी है। और इसकी वजह से स्किल्ड लेबर जो है उसको काम भारत में रह के मिल जा रहा है, उनको बाहर भारत से, अपने देश से दूर नहीं जाना पड़ रहा है। दूसरा, जब श्रम प्रधान देश में एक तरीके से ये सरकार के लिए कह सकते हैं आप तुरुप का पत्ता है मेक इन इंडिया, तो ये एक तरीके से जो सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत का, तो उसमें मेक इन इंडिया जो है उसको काफी अहम माना जा रहा है।
0: बहुत ही अच्छी आपने बात समझाई राजेश भाई कि मेक इन इंडिया की पहल को अगर देखा जाए ना तो 2000, जैसे हमने बोला कि 14 में शुरू हुआ था, 10 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं और आज जो है भारत एक नए भारत के रूप में दिखना शुरू हो गया
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और सरकार की तरफ से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, और इसको लेकर तमाम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें मेक इन इंडिया का एक अहम जो भूमिका है वो हो सकती है।
0: तो ये हमने अभी जानकारी दी अपने भाई बहनों को मेक इन इंडिया के बारे में, और इन जानकारी के बाद हम क्यों ना अपने भाई बहनों का मनोरंजन कर दे। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र सिंह से ये उपदेश।

0: तो इसी के साथ ग्राम संसार कार्यक्रम संपन्न करने का वक्त अब हो गया है। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और
1: संयोजक थे
0: शिवनंदन
1: शिवनंदन
0: लाल।
1: लाल।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
2: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
1: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इस रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि

0: योग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी चार बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। चीन में आईएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। तो आज कार्यक्रम में कुछ बातें करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, सूचनाएं देंगे, साथ में कल के कार्यक्रम के बारे में ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में। आप तो एक बातचीत पहले सुन लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन और खरीफ फसलों की सुरक्षा किस तरीके से हो, और इस पर डॉक्टर ओपी सिंह, जो कि पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, इनसे बात कर रहे हैं शिवनंदन लाल जी। तो आइए सुनते हैं ये पूरी बातचीत।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आप फसलें उगाते हैं और उसको उगाने के लिए आपको मौसम, जलवायु और वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, और जब ये वर्षा समय के साथ न हो और आपको आसमान की तरफ देखना पड़े, या कभी कभी आपने बिजाई कर दी है, एकदम बरसात ज्यादा हो जाए, तो आपको जो फसलों से उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसके क्या कारण हैं और इससे कैसे आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं, तो इस पर आज हम डॉक्टर ओपी सिंह जी से विस्तार से बात करेंगे। आप प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर ओपी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और उससे जो हमारी फसलें हैं उनकी सुरक्षा की बात। उससे पहले तो जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एकदम बरसात एकदम धूप, क्या यही जलवायु परिवर्तन है या ये कुछ और है?
2: देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे कि जलवायु परिवर्तन का जो मौसम बदल रहा है, वो मौसम बदलने के कारण हमारी जो फसलें हैं और उनमें खरीफ की फसलों पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और अभी हमने देखा है कि हमारे दिल्ली और एनसीआर के एरिया में लगभग 28 जून को बरसात आती है, लेकिन किसी कारणवश वो लगभग 8 से 10 दिन देर से हुई है, और इसकी वजह से जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उन पे उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ज्यादा तापमान होता है या ज्यादा भारी बारिश होती है और सूखे की स्थिति भी बनती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को कम समय की उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए, और साथ ही जैसे मल्चिंग है या खेतों की मेड़बंदी है उसको करके हम खेतों के अंदर जल को भी संरक्षित कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी एक भारतीय योजना है भारत सरकार की, यदि हमें फसलों से नुकसान होता है तो उन फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ उठा सकते हैं किसान भाई। और इसके अलावा यदि हम देखें तो खरीफ की फसलों से जो होने वाले नुकसान हैं उनमें मुख्य रूप से जो है यदि देखें तो उसमें अनियमित वर्षा है या सूखा है, इसकी वजह से खरीफ की

0: फसलों में नुकसान होता है, और उनमें जो मुख्य फसलें हैं उनमें जैसे धान की फसल है उसमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और मानसून में देरी होने से या सूखे के कारण ये फसल सूख जाती है और पैदावार में इसका भारी गिरावट आती है। इसके अलावा यदि हम देखें कि अत्यधिक बारिश हो रही है या बाढ़ है, उसके अलावा भी अचानक भारी बारिश होने से या जल भराव जिसको वाटर लॉगिंग कहते हैं, उससे फसलों की जड़ें सड़ जाती हैं और पौधे नष्ट होते हैं जिससे हमें पैदावार में गिरावट आती है। यदि हम देखें कि तापमान जैसे बढ़ रहा है तो जिसको हीट वेव कहते हैं या उच्च तापमान है, इसके कारण जो परागण की प्रक्रिया है फसलों में वो भी बाधित होती है और दानों का विकास ठीक से नहीं होता है। इसके अलावा अभी हम बात करेंगे जैसे कि फसलों की हम सुरक्षा के कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, जलवायु के अनुकूल जो किस्में हैं उनका हमें चुनाव करना चाहिए, जो लंबे समय तक पानी की कमी झेलने वाली या कम अवधि में तैयार होने वाली जैसे धान की फसल है, मक्का की है, बाजरे की है, इन किस्मों का चयन करना चाहिए। साथ ही जो जल संरक्षण है और उसका उचित प्रबंधन पे भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें खेतों के चारों ओर मजबूत मेड़बंदी करें ताकि बारिश का पानी वो खेत में ही संचित रहे, और भारी बारिश की स्थिति में अतिरिक्त पानी निकालने के लिए ड्रेनेज की भी उचित व्यवस्था करें, यानी कि जल निकास की। जैसे भारी बारिश की स्थिति है तो इसके अलावा पानी निकालने के लिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यदि हम देखें तो हमारे जो ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति है, इसका भी उपयोग करें ताकि सूखे की स्थिति में जो सीमित पानी है उसका उपयोग करके हम अपनी फसलों से पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और जो मिट्टी की उर्वरता है उसको भी बढ़ाने के लिए हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैसे कि आप जान रहे और भारत सरकार भी पिछले दिनों से इस पे जोर दे रही कि किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करें और उसके द्वारा जो सुझाई गई उर्वरकों की मात्रा है उसका ही अपनी फसलों में प्रयोग करें ताकि हमारी फसलों से अधिक उत्पादन मिल सके और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। और जैसे कि जैविक खाद है, आप जानते हैं कंपोस्ट खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, इसका उपयोग करें जिससे कि मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है और उससे हमारी फसलों में ज्यादा पैदावार भी मिलती है। इसके अलावा यदि हम देखें फसल विविधीकरण, जिसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, इसमें पानी की कमी होने से उसमें केवल जैसे धान की फसल है उस पर निर्भर रहने के बजाय हमें अन्य खरीफ फसलों का चुनाव करना चाहिए, जिनमें जैसे दाल वाली फसलें हैं, दलहन की फसलें मूंग है, उड़द है, तिलहन है, या मोटे अनाज में आप देख रहे हैं बाजरा है, ज्वार है, रागी है, इन फसलों का हमें चुनाव करके हमें उनका अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके उत्पादन लेना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जैसे अभी ज्यादा एकदम बरसात हो जाती है और मान लीजिए किसी किसान ने फसल बो रखी है तो उसको क्या करना चाहिए?
0: जिस किसान ने फसल बो रखी है यदि हम देखें तो खेत में पानी ज्यादा भर जाता है तो जल निकास की उचित व्यवस्था करें, एक तो यह है। दूसरा यह है कि यदि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, उसमें जड़ें उसकी गल जाती हैं या फसल मरने की संभावना रहती है, तो उसमें पानी का निकास जितना हो सके वो करें, और नहीं तो जैसे ही वो खेत में फसल हो जाए उससे अनाज तो नहीं मिलेगा लेकिन उसकी जुताई करके उससे हरी खाद के लिए उसको उपयोग खेत में कर सकते हैं। साथ ही जो है यदि हम देखें कि हमारे पास अगर तालाब की व्यवस्था है कहीं नीचे की तरफ तो उस पानी को उसमें भी निकास करके वहां पे इकट्ठा करके और हम रबी के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो आसपास में बोरिंग है, कुएं हैं, उनमें जल की मात्रा बढ़ती है और वो रबी की फसलों के लिए काम आती है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि जैसे बरसात है कि कभी और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे बरसात नहीं हो रही है या देर से हो रही है, तो क्या ऐसी कुछ किस्मों का भी विकास किया गया है या आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कौन सी फसलें लगाएं और उसमें किस्मों के बदल में क्या ध्यान रखें?
0: देखिए, जहां देखते हैं कि जहां हमें वर्षा की आवश्यकता है और वहां पे वर्षा नहीं हो रही है और सिंचाई के साधन भी नहीं है किसानों के पास, तो ऐसी अवस्था में उनको कम पानी वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनमें पानी की कम आवश्यकता हो। यदि सूखे की स्थिति पड़ती है तो उसमें हम जो है जैसे हमारी मोटे अनाज मैंने बताया ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन फसलों को बो सकते हैं, इनमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और कुछ दलहन की फसलें हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि मान लीजिए किसी ने पहले से बिजाई कर दी है और बीच में गैप आ गया काफी कि बरसात नहीं होती है, तो उस स्थिति में किसान भाई
0: उस स्थिति में किसानों को यही सलाह दी जाती है, यदि उनको लाइफ सेविंग इरिगेशन उनके पास है तो ऐसी स्थिति में अगर फसल खेत में खड़ी है और बारिश नहीं हो रही है और सूखे की स्थिति झेल रही है, तो फसल के लिए अगर अतिरिक्त सिंचाई का कहीं साधन है तो उससे हम सिंचाई कर सकते हैं, और यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो हमें बारिश का इंतजार करना ही पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी किसान भाइयों की फसल तैयार होती है
0: जी,
1: और उस समय एकदम बारिश आ जाती है और ज्यादा बारिश हो जाती है, फसल गिर जाती है, कभी कभी उसमें बहुत नुकसान हो, ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या करते हैं?
0: ऐसी स्थिति में यही है कि जैसे हमारी फसल तैयार है और बहुत ज्यादा बारिश हो गई या और कोई ऐसी जलवायु परिवर्तन की ऐसी कोई समस्या आ गई जिससे कि फसल में पैदावार में नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में यही है कि एक तो भारत सरकार ने जो है एक योजना चलाई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके यदि उस फसल के लिए बीमा करवा दें तो आपको उसके नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा दी जा सकती है। और साथ ही यदि हम देखें कि ऐसी स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि जैसे उनको नुकसान हुआ है तो अगली फसल में फसल चक्र को अपना के या और दूसरी फसल से भी उसकी भरपाई को किया जा सकता है। दूसरी यह है कि यदि एक फसल को न करके हम विविधीकरण फसल का करें तो उसमें यह होगा कि एक फसल से यदि नुकसान हो रहा है तो दूसरी फसल से उसकी भरपाई हो सकती है, जैसे बागवानी हम कर सकते हैं। तो बागवानी के साथ अगर हम खेती करेंगे तो हमें जो फसल को नुकसान होता है सूखे की वजह से या ज्यादा बारिश की वजह से तो वो दूसरी फसल से उसकी भरपाई की जा सकती है। और साथ ही मैंने बताया कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसका भी लाभ उठाएं और उससे भी आपको नुकसान से बचा जा सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे फसल बीमा योजना का आपने जिक्र किया, फसल बीमा योजना अगर किसी ने फसल बिजाई करी है, बीमा उसका उसी समय होता है कि क्या प्रक्रिया है उसकी?
0: उसकी प्रक्रिया के लिए यही है कि वो जाके अपने पास के जो कृषि विभाग हैं वहाँ पे अपना आधार कार्ड और अपने फसल का खेत का खसरा नंबर लेके उससे पास के जो कृषि अधिकारी हैं उनके यहाँ पे उसका पंजीकरण करवा सकते हैं और साथ ही उस फसल का नाम लिखवा सकते हैं और खेत का एरिया लिखवा सकते हैं। यदि किसी कारणवश सूखे की वजह से या ज्यादा बारिश की वजह से फसल को नुकसान होता है तो उनको उसकी भरपाई फसल सुरक्षा के तौर पर सरकार के द्वारा उनको दी जाती है, जिससे कि उनकी पैदावार से जो होने वाली आमदनी को नुकसान होता है वो भरपाई हो सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जो फसल बीमा योजना में कुछ किसानों से भी तो किस्त पड़ती है?
0: हाँ, किस्त जैसे आती है तो वो किस्त भी उसको वो भरते हैं, उसका भी फिर टाइम होता है, यदि किसी कारणवश फसल को नुकसान होता है तो वो किस्त को फिर दूसरे सीजन में उनको उसकी रियायत दी जाती है।
1: तो जैसे जो हमारे किसान भाई खरीफ फसलों का बीमा कराते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि 3% देना पड़ता है, और जो किसान भाई रबी फसलों का बीमा कराते हैं उसके लिए 2%
0: देना पड़ता,
1: और जो बागवानी फसलें हैं उसके लिए 5%। तो ये अगर प्रीमियम दे करके उनको फसल बीमा योजना मिलती है, और जब उनका कोई नुकसान चाहे फसल की बिजाई से लेकर के उनकी कटाई घर तक आने तक की जिम्मेदारी होती है
0: जी।
1: अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो जिस भी कंपनी से या भारत सरकार की कोई योजना है उसके द्वारा अगर अपनी फसल का बीमा कराते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उसकी भरपाई
0: होती है, और नुकसान से आपको कम नुकसान होता है और आपको जो है उसकी आमदनी लगभग उतनी ही होती है।
1: लेकिन हमारे किसान भाई फिर भी काफी शिकायत करते हैं कि जब उनकी फसल का नुकसान हो जाता है लेकिन उसका आकलन ठीक से नहीं किया जाता है कि नुकसान ज्यादा हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे नुकसान नहीं
0: ऐसा नहीं है। उसके लिए यह है कि यदि आप किसान भाइयों को ये लगता है कि हमारी फसल को नुकसान हुआ है और आकलन नहीं है तो उसकी एक प्रक्रिया है, वो सरपंच के माध्यम से अपने जिले के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और उनके द्वारा जो जिला के जो कृषि अधिकारी हैं या जो गांव स्तर पर जो कृषि अधिकारी काम कर रहे हैं जैसे पटवारी वगैरह, उनसे अपने आवेदन दे करके उससे अपनी फसल का आकलन सही करवा के उसका उचित बीमा प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, किसान भाई अपनी फसलों को जलवायु परिवर्तन से बचाए रखें और अपनी फसलों की फसल सुरक्षा सही तरीके से कर लें, इसके लिए आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हम तो किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन आजकल आप देख रहे हैं कि कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, अनियमित बारिश होती है, या कहीं पे हमें जब जरूरत होती तब नहीं होती है, ऐसे में बारिश होती है, तो उसके लिए बचाव के लिए यही है कि किसान भाई जो है ऐसी फसलों का चुनाव करें जिससे कि उन्हें नुकसान कम हो और साथ ही अपनी फसलों में ज्यादा विविधीकरण अपनाएं, फसल चक्र का पूरा उपयोग करें और बरसात के मौसम में खेतों की ऊंची ऊंची मेड़बंदी करके जल को संरक्षित करें जिससे कि खेत का पानी खेत में ही रहे और उससे अगली फसल को उनसे ज्यादा पैदावार उसकी मिल सके। तो इसके लिए और भी जो है किसान भाइयों के कि बागवानी का चुनाव करें, पशुपालन रखें, तो उससे क्या है कि यदि हमें किसी कारणों से एक फसल से नुकसान होता है या एक व्यवसाय से तो दूसरे व्यवसाय से उसकी भरपाई हो सकती है। तो यही किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप फसलों का विविधीकरण करें, फसल चक्र अपनाएं और हमारी जो उन्नत कृषि प्रणालियां हैं या उन्नत किस्म की प्रजातियां हैं या कृषि तकनीक है उसका उपयोग करें और जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हमारा जो फसल विविधीकरण है या जो हमारा फसलों का जो एक फसल के बाद दूसरी फसल ऐसे बोए तो उससे हमें नुकसान की कम होता है और उससे जो दूसरी फसल उससे भरपाई उसकी हो सकती है। सब्जियां लगाएं।

0: अगर पानी ज्यादा है तो मछली पालन भी कर सकते हैं और बागवानी भी लगा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने काफी विस्तार से बताया किस तरीके से हमारे किसान भाई जलवायु परिवर्तन से अपनी फसलों को बचाकर अपनी फसलों की फसल सुरक्षा कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर ओपी सिंह जी, आप कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, निश्चित तौर पर किसान भाई से फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल, तो जलवायु परिवर्तन से कैसे फसलों को बचाएं, इस पर आप ये पूरी रिपोर्ट सुन रहे थे और शिवनंदन लाल जी बात कर रहे थे, डॉक्टर ओपी सिंह, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा। और अब बात करेंगे किसान सुविधा मोबाइल ऐप, ये क्या है, क्या उद्देश्य है इसका और कैसे हमारे किसान भाई इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, सरकार किस लिए इसको लेकर के आई है, क्या कुछ सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन इसका उद्देश्य देखिए ये है कि भारत सरकार की तरफ से ये एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है, किसान सुविधा मोबाइल ऐप, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। वैसे तो हमारे किसान भाइयों को ये मालूम है, वो इस्तेमाल खुद कर रहे हैं, ये ऐप किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने और सही समय पर निर्णय लेने में मदद करता है। अब इसका ऐप का उपयोग किसान खेती से जुड़ी सही जानकारी के साथ ही मौसम का पूर्वानुमान मिल जाता है, इससे किसान अगले कुछ दिनों के मौसम की जानकारी भी ले सकते हैं इस ऐप से। इसके अलावा बारिश, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति जैसी जानकारी भी इस ऐप के जरिए मिलती है। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ऐप में मंडी के भाव की जानकारी भी उपलब्ध रहती है, किसान विभिन्न मंडियों में अपनी फसलों के वर्तमान बाजार भाव देख सकते हैं, इससे किसान अपनी उपज बेचने का सही समय और स्थान चुन सकते हैं। ऐप में फसल सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जाती है, फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों की पहचान करने में इससे सहायता मिलती है, रोग और कीट नियंत्रण के उपाय भी बताए जाते हैं, साथ में पौध संरक्षण के लिए आवश्यक सुझाव उपलब्ध है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने की सुविधा भी इस ऐप के जरिए मिलती है, किसान अपनी समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी होती है, आधुनिक खेती के तरीके और नई तकनीकों का विवरण इसमें उपलब्ध रहता है। इसके अलावा बीजों की जानकारी भी ऐप में उपलब्ध रहती है, उन्नत किस्म के बीजों की जानकारी, उर्वरकों के सही उपयोग की जानकारी, कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग, ऐप में मृदा स्वास्थ्य यानी सॉयल हेल्थ से संबंधित जानकारी, किसान मिट्टी परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नज़दीकी कृषि केंद्र, इसके अलावा सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी आप इस ऐप के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो बड़े काम का ये ऐप है और जिन्होंने इसको नहीं डाउनलोड किया है तो वो किसान भाई ऐप से डाउनलोड करके और अपने खेती से संबंधित तमाम फ़ायदे जो हैं वो ले सकते हैं, उठा सकते हैं। और आइए एक सुनते हैं ब्रजपाल सिंह करोड़ा जी से कि कह रहे हैं उठ बंदे जाग रे, तो ये क्या कह रहे हैं, क्यों जगा रहे हैं, वो पहले सुनते हैं, आइए।

और अब बात कर लेते हैं इस वक्त कृषि कार्य में किस तरीके से जो कृषि वैज्ञानिक है वो क्या कुछ सलाह दे रहे हैं इस वक्त करने के लिए। तो वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को ये सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार का छिड़काव ना करें, साथ ही खड़ी फसलों और सब्जी नर्सरियों में उचित प्रबंधन करें, दलहनी फसलों और सब्जी नर्सरियों

में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा धान की फसल में यदि पौधे का रंग पीला पड़ गया हो तो पौधे की ऊपरी पत्तियों पीली और नीचे की हरी हो तो इसके लिए जिंक सल्फेट हेप्ट्रा हाइड्रेट 21% ये 6 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इसके अलावा किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजरा मक्का सोयाबीन सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य जो है वो मौसम साफ हो तो शीघ्र करें और सभी फसलों को सफ़ेद मक्खी और चूसक कीटों की नियमित निगरानी करें। तो इसी के साथ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब गजल और कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं चंद खूबसूरत सी कव्वालियां।

0: श्रोताओं गीत गजल के कवाली के कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुनी ये खूबसूरत सी कवालियां। यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समितियों की आर्थिक सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कामों पर असहनीय बोझ न डालें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण को जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। ये जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि योजना का पोर्टल अगले महीने की तारीख से पंजीकरण के लिए खोल दिया जाएगा।
3: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का लाभ 21 साल से 60 साल तक की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कुछ श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इनमें पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता योजना या पेंशन ले रही महिलाएं, आयकर देने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी महिलाएं और आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाली महिलाएं शामिल हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जिम्मेदारी और महिलाओं के समग्र विकास को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र के 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ शिविरों को अब अधिकतम 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही कांवड़ समितियों को पहले की तरह 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि अन्य सभी श्रेणियों के शिविरों की अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कांवड़ समितियों को पर्याप्त सहयोग देकर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो नमो भारत कॉरिडोर पर इस महीने की 30 तारीख से लेकर अगले महीने की 14 तारीख तक हर रोज 52 अतिरिक्त ट्रेन फेरे चलाने का निर्णय लिया है। NCRTC ने बताया कि अतिरिक्त ट्रेन फेरों की शुरुआत के साथ अब नमो भारत ट्रेनें हर

0: 8 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध हुआ करेंगी। निगम ने कहा कि तेज समयबद्ध और विश्वसनीय सेवा के कारण नमो भारत इस अवधि में यात्रियों के लिए प्रभावी विकल्प साबित होंगी। दिल्ली सरकार ने आज विश्व प्रकृति संरक्षण के दिवस के अवसर पर असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस अभियान में राजधानी के 5 विद्यालयों के 430 से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के हरित भविष्य के निर्माण में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से सरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, हरित और पर्यावरणीय रूप से अधिक सशक्त राजधानी के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग ईसीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी काम का असहनीय बोझ न डाला जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। दिल्ली में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए सरकारी, नगर निगम और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को बूथ स्तर के अधिकारियों और जनगणना कर्मचारियों के रूप में बड़े पैमाने पर तैनाती को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की गईं।
1: मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि हालांकि चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए शिक्षकों की मांग करने का संवैधानिक अधिकार है, फिर भी उसे बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के तहत दिए गए जनादेश का ध्यान रखना चाहिए। ये गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती को नियंत्रित करता है और केवल जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए ही ऐसी नियुक्ति की अनुमति देता है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान शिक्षकों को चुनाव संबंधी कार्य सौंपते समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए वैधानिक जनादेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि स्कूल में 6 से 8 घंटे बिताने के बाद शिक्षकों से चुनाव संबंधी कार्य करवाना उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से काफी तनावपूर्ण हो सकता है। इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने एक विस्तृत हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि स्कूल के घंटों के दौरान SIR ड्यूटी के लिए किसी भी शिक्षक को तैनात नहीं किया जा रहा था और ये अभ्यास सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सख्त अनुपालन में किया जा रहा था। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं प्रशांत कुमार।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पद के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उल्लेख किया।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में भारतीयता की भावना को और मजबूत करना रहा है। पिछले 4 वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं, जिनसे औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को मिटाने में सफलता मिली है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति संपदा के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी नामक खेल क्षेत्र और समर्थ आंगन वाड़ी सहपालन शामिल हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने हरित और समावेशी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक निशुल्क इलेक्ट्रिक बस सेवा, राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरसेप्टर राही का भी शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि भारत का संवैधानिक लोकतंत्र उन संस्थाओं की मजबूती पर आधारित है जो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक दूसरे का सम्मान करती हैं। ये बात श्री गुप्ता ने आज युवा जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा के परिसर का भ्रमण करने आए 45 प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।
3: श्री विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि शक्तियों का विभाजन संस्थाओं को एक दूसरे से अलग करने का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संवैधानिक ढांचा है जिसमें शासन का प्रत्येक अंग संयम, उत्तरदायित्व और अन्य संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करते हुए कार्य करता है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशिक्षुओं से संवाद भी किया। इसमें भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और संसदीय संस्थाओं की गरिमा की रक्षा करने में विधायिका की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा श्री गुप्ता ने संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रियाओं और देश की सेवा में संवैधानिक संस्थाओं की साझा जिम्मेदारी के महत्व पर भी बल दिया। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज द्वारका के सेक्टर 29 में एक आधुनिक डॉग शेल्टर की आधारशिला रखी। श्री संधू ने बताया कि लगभग 6,000 से अधिक वर्ग मीटर में फैली ये सुविधा आवारा कुत्तों के लिए सुरक्षित आश्रय, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ दिल्ली नगर निगम द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसमें आवारा कुत्तों की सेहत का ध्यान रखा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जनसेवा सदन से रोहिणी तक डीटीसी बस में यात्रा कर क्षेत्र का व्यापक स्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न मार्गों पर यात्रा कर मॉनसून के दौरान शहर की जमीनी स्थिति का आकलन किया और नागरिक सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कामों की समीक्षा की।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन से बस द्वारा निरीक्षण यात्रा प्रारंभ की, जो मधुबन चौक होते हुए रोहिणी सेक्टर 33 के डीडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक पहुंची। यात्रा के दौरान उन्होंने मार्ग में लैंडफिल साइटों पर चल रहे कचरा निष्पादन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राजधानी में कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए चल रहे अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री गुप्ता ने वर्षा के कारण संभावित जल भराव वाले क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों की सफाई व्यवस्था और सड़क किनारे जमा मलबे और कचरे की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के चौड़ीकरण, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर दिल्ली कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण को अपनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जल, वायु, वन और भूमि का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार है। उन्होंने सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण के प्रति अपने संकल्प को और सशक्त करने तथा हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल दिल्ली के निर्माण में साझा जिम्मेदारी निभाने को कहा। मुख्यमंत्री ने आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर सभी लोगों से हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए समय पर जांच, टीकाकरण कराने और आवश्यकता पड़ने पर उचित उपचार लेने का आह्वान भी किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सही जानकारी और समय रहते उठाया गया कदम अनेक जीवनों की रक्षा कर सकता है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने सभी लोगों से स्वास्थ्य के प्रति सजग जीवन शैली अपनाने को कहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के एक मामले में दिल्ली लोक निर्माण विभाग के एक सहायक अभियंता और एक निजी कंपनी के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें उसी कंपनी का प्रतिनिधि और एक कर्मचारी भी शामिल है। जांच एजेंसी के अनुसार लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अपने पद का दुरुपयोग कर रोहिणी स्थित एक निजी कंपनी को विभाग की ओर से सौंपे गए विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनुचित आधिकारिक लाभ पहुंचा रहे थे। राजधानी के नरेला क्षेत्र में दिल्ली मादक पदार्थ नियंत्रण विभाग ने हरियाणा के खाद्य और औषधि प्रशासन और दिल्ली पुलिस के साथ दो दिवसीय संयुक्त अभियान चलाकर नकली दवाओं के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान भारी मात्रा में नकली दवाइयां, रासायनिक कच्चा माल, मैन्युफैक्चरिंग उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 25.5 डिग्री सेल्सियस। विभाग ने कल भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समितियों की आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली के शिक्षकों पर चुनाव संबंधी कामों का असहनीय बोझ न डाला जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण को जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। DRM 810 किलो हर्ट्ज पर।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए खूबसूरत से ये फिल्मी गीत। आइए इस खूबसूरत नगमे से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

0: को साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: गीत मालिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आइए कार्यक्रम मुख्य गति देते हुए एक और खूबसूरत से गीत की ओर लेकर चलते हैं और स्वर हैं सोनू निगम और अलका याग्निक के।
3: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
4: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: को साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: कपड़ों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
2: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
3: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
2: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
1: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
4: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
5: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है।

0: कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
1: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गयी। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। FIR वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
2: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडेसा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
2: ओडेसा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
3: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ।

0: प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
1: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम्पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरी नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरी नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: President Draupadi Murmu today presided over a special book release ceremony at Rashtrapati Bhavan, marking the completion of 4 years of her presidency. Vice President C.P. Radhakrishnan released 5 commemorative books on the occasion. Speaking at the event, President Murmu said, over the past 4 years, she has encouraged the youth to remain rooted in moral values and work towards the progress of the nation and society.
1: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें और विकास की मुख्य धारा में भी शामिल हैं।
0: In his address, the Vice President said President Murmu gave importance to the sentiments of the common people and emphasized on inclusive participation. Odisha is facing a flood emergency as incessant monsoon rains continue to raise water levels in major rivers, with the Baitarani crossing the danger mark and the Mahanadi witnessing a steady rise. Our correspondent has the details.
2: The India Meteorological Department has issued a red alert for Sundargarh, Sambalpur, Bargarh and Jharsuguda districts in western Odisha, while an orange alert has been sounded for 13 other districts. National Disaster Response Force teams have been deployed in the red alert districts to undertake rescue and emergency preparedness measures. As a precautionary measure, all schools in Bhadrak and Jharsuguda district will remain closed tomorrow, while rail services have been disrupted in certain stretches owing to waterlogging and adverse weather conditions. The state government has assured that the situation is under constant surveillance and all necessary precautionary measures are in place. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: The flood situation in Assam has shown further improvement as flood waters continue to recede in most affected areas. However, relief and rehabilitation efforts remain in full swing. Prime Minister Narendra Modi today met members of parliament from Assam in New Delhi and discussed the prevailing flood situation in various parts of the state. In a social media post, the Prime Minister said the centre is working closely with the Assam government to assist those affected by the floods. Meanwhile, the IMD has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Vidarbh during the next 2 days. The IMD issued an orange alert for heavy rainfall for Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh till the 31st of this month. Benchmark domestic equity indices ended nearly flat today. The Sensex dipped 70 points to close at 76,766. The Nifty dropped 11 points to settle at 23,985. On to sports. In shooting, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon secured the bronze medal in the 10-meter air rifle mixed team event at the ongoing ISSF World Cup in Hangzhou, China today. With this, India's medal tally at the tournament has risen to 4, including 1 gold, 1 silver and 2 bronze. At the Commonwealth Games, India's Srihari Natraj qualified for the semi-final of men's 100-meter backstroke swimming competition at Glasgow in Scotland today. Athlete Vishal Tike progressed to the semi-finals of men's 400-meter race. Para-swimmers RVBK Budijina and Ali Imam also qualified for the men's 50-meter freestyle S13 final. India is currently placed at the 8th position in the overall standings with 10 medals, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbh region for next 2 days. At ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. That is all in the news at 9. Good night.
3: खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें पेपर लीक मामले में सख्त सजाएं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज है। हुकूमत ने कहा है कि ये नया कानून तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ की खातिर उसके अज़्म की अक्कासी करता है, जबकि अपोजिशन ने तालीमी निज़ाम में वसी तर इस्लाहात पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए कम उम्र तलबा की रिहाई का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र, बिहार और आसाम की हुकूमतों ने तलबा के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग के दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद असम्बली इंतखाबात उसके गैर कानूनी कब्जे को छुपाने के लिए महज एक दिखावा है। जून के महीने में सनअती पैदावार की शरह तरक्की पिछले 23 महीनों की बुलंदतरीन सतह 7.3% हो गई। ओडिशा में शदीद बारिश के सबब बड़े दरियाओं में तुगयानी आने की वजह से सैलाब की संगीन सूरतहाल पैदा हो गई है। अगले दो रोज के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते के लिए इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएसएसएफ निशानेबाजी वर्ल्ड कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिस टीम मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। ये बिल पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। ये कानून सख्त जुर्माने जैसे 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार करार दिए गए मुजरिमों की जायदाद जब्ती जैसे अहम इल्तजाम का इजाफा करेगा। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के हालिया वाकयात का नोटिस लेते हुए फैसला किया कि इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। डीएमके के दयानिधि मारन ने बहस में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट मरकजी मौजू है जो यकसा नहीं है और तलबा मुखालिफ है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुकूमत पर तलबा के मफादात के तहफ्फुज में नाकाम रहने और निजाम तालीम को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तलबा से किए गए वादों को पूरा करे। मोहतरमा गांधी ने मजीद कहा कि नौजवान निजाम तालीम में अपना एतमाद बहाल करने के लिए मुजाहरे कर रहे हैं और जवाबदेही तय करना चाहते थे। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज, टीडीपी के लाबू श्री कृष्णा, शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और दिगर अराकी ने पार्लियामेंट में बहस में हिस्सा लिया। राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के मुजाहरों के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के हंगामे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई जब दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो मरकजी वजीर जीतनराम मांझी ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट तरमीमी बिल 2026 को मुतारफ कराया। बिल के तारुफ के दौरान अपोजिशन अराकीन ने तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई पर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा आराई जारी रहने पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ हालिया मूलगीर एहतजाज के दौरान तलबा और पुलिस अहलकारों के जख्मी होने के इल्जाम की मुकम्मल मुनसिफाना और गैर जानबदाराना तहकीकत जरूरी हैं। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे कम उम्र तलबा जिनका कोई सबका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है उन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को हिदायत दी कि एहतजाज से मुतालिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद महफूज रखे जाएं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उन दरखास्तों की समाअत कर रही थी जिनमें एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। अदालत आलिया ने कहा कि तहकीकात में उन 200 से ज्यादा जख्मी पुलिस अहलकारों के अहल खाना के खदशात को भी मलहूज रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम रियासतों को जहां एहतजाज हुए हिदायत दी कि वो एहतजाज से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरों की फुटेज, वायरलेस मुवासलाती रिकॉर्ड, PCR لاگز اور دیگر تمام ڈیجیٹل شواہد محفوظ رکھے ہیں۔ عدالت عالیہ نے یہ بھی حکم دیا کہ احتجاج کرنے والے طلبہ سے متعلق اکٹھا کیا گیا تمام ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ رکھا جائے، تاہم اسے عوامی سطح پر جاری نہ کیا جائے۔ بینچ نے دلی حکومت کو درج ایف آئی آر کی تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی، لیکن یہ بھی واضح کیا کہ عدالتی کارروائی مکمل ہونے تک احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ بینچ نے دلی، مہاراشٹر، بہار، کیرلا، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے چیف سیکرٹریز سے بھی درخواستوں میں عائد کیے گئے الزامات پر جواب طلب کیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے داخلی امور کے ریاستی محکمے کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر ریاست بھر میں حال ہی میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے خلاف سبھی درج معاملے واپس لے لے۔ ایف آئی آر واپس لینے کا عمل متعلقہ عدالتوں سے اجازت ملنے کے بعد شروع ہوگا۔ ممبئی، پونے، ناگپور اور چھترپتی سمبھاجی نگر جیسے اہم شہروں میں احتجاج ہوئے تھے۔ یہ قدم مرکز کی اس گارنٹی سے مطابقت رکھتا ہے کہ مظاہروں میں شامل طلبہ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بہار اور آسام کی ریاستی حکومتوں نے ان لوگوں کے خلاف معاملات اور دیگر قانونی کارروائی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جو مبینہ طور پر نیٹ یو جی امتحان میں بےضابطگیوں کے سلسلے میں احتجاج میں شامل ہوئے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج اپنی صدارت کے 4 سال مکمل ہونے کے موقع پر راشٹرپتی بھون میں کتابوں کے اجرا کی ایک خصوصی تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر نائب صدر سی پی رادھا کرشن نے 5 یادگاری کتابوں کا اجرا کیا۔ اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ صدر کا آئینی عہدہ محض ایک اعزاز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ راشٹرپتی بھون تک پہنچنا ان کے ذاتی خوابوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ حکومت نے 1 اگست سے 30 نومبر تک ملک بھر میں چینی کے تاجروں کے لیے ذخیرہ کرنے کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت کے مطابق اس اقدام کا مقصد ذخیرہ اندوزی کو روکنا، قیاس آرائی پر مبنی تجارت کی حوصلہ شکنی کرنا اور مناسب قیمتوں پر چینی کی مسلسل دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد قانون ساز اسمبلی انتخابات کو پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے دنیا کی توجہ ہٹانے اور خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوان نے انتخابات کو محض دکھاوا قرار دیا۔
4: ہم نے پاک ادھکرت کشمیر میں سو کالڈ الیکشنز کے بارے میں خبریں دیکھی ہے۔ اس مسئلے پر بھارت کا پکش صاف اور نرنتر رہا ہے۔ جموں کشمیر، لداخ جو کہ کیندر شاست پردیش ہیں، ان کا پورا بھوبھاگ بھارت کا ابھن اور اوچھید انگ ہے۔ وہاں چل رہے لیپا پوتی والے الیکشن، پاکستان دوارا جموں کشمیر کا اپنے اویدھ قبضہ اور وہاں کے لوگوں کا مانو ادھیکار کا ہنن کچھ چھپانے کا پریاس ہے۔
3: کل راولا کوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک طویل مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے، جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ صنعتی پیداوار کے اشارے آئی آئی پی کے ذریعے پیمائش کردہ بھارت کی صنعتی پیداوار اس سال جون کے مہینے میں 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 4 اہم شعبوں نے جون کے مہینے میں مثبت نمو کا مظاہرہ کیا۔ اشارے میں سب سے زیادہ حصہ رکھنے والے مینوفیکچرنگ کے شعبے نے 7.8%، بجلی اور گیس فراہمی کے شعبے نے 10.6% نمو کا مظاہرہ کیا۔ وہیں پانی کی فراہمی، نکاسی اور فضلے کے بندوبست کے شعبے کی نمو 6.1% رہی، تاہم کانکنی اور کھدائی کے شعبے نے نسبتاً 1% کی معتدل شرح نمو کا مظاہرہ کیا۔ اڈیشہ میں مانسون کی شدید بارش کے پیش نظر ریاست بھر میں اہم دریاؤں میں طغیانی آنے کے بعد سیلاب کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بیترانی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے، جبکہ مہاندی میں بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس سے متاثر ہونے والے اضلاع میں تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے 4 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ اور دیگر 13 کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، اور حساس مقامات پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
5: ओडिशा में मॉनसून की शदीद बारिश के सबब अहम दरियाओं में पानी की सतह में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है, जिससे मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में खदशात बढ़ गए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने मगरबी ओडिशा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बारगढ़ और झारसुगुड़ा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और कुदरती आफात से निपटने वाली टीमें तैनात कर दी हैं। बचाव और हंगामी सूरतहाल से मुतालिक तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। एहतियात इकदामात के तहत कुछ जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे, जबकि कुछ हिस्सों में रेल खिदमात भी मुतासिर रह सकती हैं। रियासती हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि सूरतहाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और सभी जरूरी एहतियाती इकदामात किए जा रहे हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
3: रियासत केरलम के 10 जिलों में शदीद बारिश से मुताल्लिक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
6: रियासत केरलम के 14 में से 10 जिलों में शदीद बारिश से मुताल्लिक येलो अलर्ट जारी किया गया है। शाम तक 4 मजीद जिलों में भी इस वार्निंग को जारी कर दिया गया है। पूरे केरलम में अगले 4 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
3: इस दौरान भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 2 रोज के दौरान छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने इस माह की 31 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जापान के जनूबी सूबे कुमामोटो में 7.1 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया है, जिसके नतीजे में हजारों घरों की बिजली गुल हो गई, सड़कें टूट गईं और कम से कम 50 अफराद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक कई अफराद जुजवी तौर पर मुनहदिम होने वाले एक शॉपिंग मॉल में फंस गए। जापान के कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाले अदारे ने तकरीबन 3,00,000 लोगों को महफूज परागाहों में मुंतकिल होने की हिदायत दी है। हुक्काम ने अरियाक समंदर में और के साहिली इलाकों के लिए सुनामी से मुतालिक एडवाइजरी भी जारी की है। शूटिंग में आज चीन के हांगजू में जारी ISSF आलमी कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम मुकाबले में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय जोड़ी ने कांस्य का तमगा जीता। इसके साथ ही टूर्नामेंट में भारत के तमगों की तादाद बढ़कर 4 हो गई है, जिनमें सोने का 1, चांदी का 1 और कांस्य के 2 तमगे शामिल हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत के श्री हरि नटराज ने आज 100 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया। नटराज अपनी हीट में 5वें मकाम पर रहे, जबकि मजमूई तौर पर वो 13वें मकाम पर रहे। उन्होंने 55:58 में ये कामयाबी हासिल की। भारत के पैरा तैराकों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आरवी के बीडीगिना और अली इमाम ने मर्दों के 50 मीटर फ्री स्टाइल S13 फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें पेपर लीक मामले में सख्त सजाएं और फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम की तजवीज है। हुकूमत ने कहा है कि ये नया कानून तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ की खातिर उसके अज़्म की अक्कासी करता है, जबकि अपोजिशन ने तालीमी निजाम में वसी तर इस्लाहात पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए कम उम्र तलबा की रिहाई का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र, बिहार और आसाम की हुकूमतों ने तलबा के खिलाफ दर्ज मामलात वापस लेने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग के दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद असम्बली इंतखाबात उसके गैर कानूनी कब्जे को छुपाने के लिए महज एक दिखावा है। जून के महीने में सनती पैदावार की शरह नमू पिछले 23 महीनों की बुलंदतरीन सतह 7.3% हो गई है। ओडिशा में शदीद बारिश के सबब बड़े दरियाओं में तुगयानी आने की वजह से सैलाब की संगीन सूरतहाल पैदा हो गई है। अगले 2 रोज के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते के लिए इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम मुकाबले में कांस्य का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मां बिंदु कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: हिमा बिंदु जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद
1: जी हिमा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले एक बहुत ही ऐसा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा जहां पर हम भारत को खेल की दुनिया में अग्रणी बनाने की बात करते हैं। सरकार के लक्ष्य की अगर बात करें तो 2036 तक भारत को दुनिया के अग्रणी खेल देशों में शामिल करने और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल करने का विजन हम लेकर के चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी आज की नीतियां हैं और जिस तरह से हमारी जो तैयारियां चल रही हैं वो किस दिशा में जा रही हैं और अभी तक कहां तक हम पहुंच चुके हैं और आगे हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या अवसर आने वाले हैं?
2: जी, अगर हम नीतियों के बारे में बात करें तो पिछले साल में खेलो भारत नीति लागू हुआ है और इसका अगर हम इसमें क्या है अगर इसमें देखा जाए तो उसमें 5 स्तंभ की बात होती है। विश्व मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल और खेल को जन आंदोलन रूप में कैसे बनाना है और शिक्षा के साथ खेल को कैसे हमको एकीकरण करना है, ये हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसी से बहुत स्पष्ट रूप में हमारे सामने रहती है। अगर अवसर की बात करें, हम ये सब तो हासिल करने की जरूरत है, इस सबको सशक्तिकरण करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमको इस दिशा में हम जब जाते हैं तो बच्चों को खेल से जुड़ने का प्रयास हम सबको करना है और ये सिर्फ खेल से नहीं और खेल और शिक्षा को एकीकरण से ही ये हो सकता है। उनको जब सुविधा सही टाइम पे देंगे, सही टैलेंट खोजना, हमको टैलेंट पूल को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाना, यही हमारा सबसे ज्यादा अवसर है।
1: जी हिमा जी, खेलो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये जो गेम्स हैं, जो खेल खेले जाते हैं खेलो इंडिया के अंतर्गत, वो स्कूल, यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा, विंटर, बीच, वाटर स्पोर्ट्स, ट्राइबल गेम्स तक पहुंच चुके हैं, तो ये जो विस्तार दिया जा रहा है इन खेलों का, तो इससे आपको लगता है कि भारत की खेल संस्कृति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और इसका सकारात्मक असर लगातार हमारे जो युवा प्रतिभा है, खेल प्रतिभा, उस पर पड़ रहा है?
2: अगर हम खेलो इंडिया प्रतियोगिता की बात करें, ये सबसे सक्सेसफुल मैकेनिज्म रहा है स्पोर्ट्स के प्रति। इसमें बच्चों को एक तो खेल के ऊपर इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए और खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए इसमें नेशनल लेवल का कंपटीशन किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे खेलो इंडिया प्रतियोगिता कहाँ कहाँ पे हुआ है देश में, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य में हुआ है, दक्षिण भारत देश में हुआ है, पूरे देश में पहला हुआ है खेलो इंडिया प्रतियोगिता। इसमें बहुत सारे बच्चों को मौका मिला है कि अंतरजातीय स्तर पे एक प्रतियोगिता कैसे किया जाता है। जब बच्चे उस कंपटीशन को देखेंगे उनको एक झिझक नहीं रहता है जब वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं। ये खेलो इंडिया प्रतियोगिता का सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावा अगर हम पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अगर खेलो इंडिया गेम्स का योगदान देखेंगे, ये स्पोर्ट्स इवेंट जब भी होता है कोई भी राज्य में, उस राज्य ये सोचता है कि हम इवेंट्स के बाद क्या करें, मतलब हम लेगेसी प्लानिंग कैसे करना चाहिए, तो उसमें शिक्षा स्पोर्ट्स एक्सलेंस की तरफ जाती है। सपोज इवेंट से हम शुरू करेंगे पर वो जाता है एक्सलेंस के ऊपर और मेडल्स की तरफ जाता है, तो इवेंट्स, स्पोर्ट्स इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एक्सलेंस, ये सब खेलो इंडिया प्रतियोगिता के द्वारा हासिल हुआ है।
1: हिमा जी, आप भारतीय खेलों की अगर हम बात करें और खेलो इंडिया की बात करें तो बहुत ही नजदीकी से आप इन्हें देखती हैं, तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि ये जो योजना रही इसने वास्तव में ग्रामीण और जो छोटे कस्बों की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं, वहां पर नई प्रतिभाओं को खोलने के अवसर हमें ज्यादा प्राप्त हुए, वहां से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल करके सामने आई हैं?
2: खेलो इंडिया का अगर आप उसका लक्ष्य देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एक है मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और फिर स्पोर्ट्स एक्सलेंस है, तो इसके द्वारा खेलो इंडिया में अगर आप ग्रास रूट्स को लेकर बात करेंगे, हम पूरे देश में 1000 के ऊपर खेलो इंडिया सेंटर है और इसमें 28,000 से ज्यादा बच्चे इसमें प्रशिक्षण को प्राप्त हो रहा है उनको, और अस्मिता लीग्स में महिला खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। ये सिर्फ महानगरों में नहीं, छोटे शहर में भी होने लगा है। इसके अलावा जो खेलो इंडिया गेम्स का ब्रांड है वो गांव तक आजकल पहुंच गया है, तो खेलो इंडिया में सिर्फ महानगर के बच्चे नहीं है, इसमें गांव वाले और छोटी शहर बच्चों को भी एक मौका मिल रहा है, एक पहचान मिल रहा है, एक दिशा भी मिल रहा है और सुविधा भी मिल रहा है। अगर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो जिला स्तर पर भी बहुत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा गया है। सो खेलो इंडिया और को ग्रास रूट्स में स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमने जो सक्सेस देखा है खेलो इंडिया के द्वारा ग्रास रूट्स में, उससे ये अंडरस्टैंडिंग पे आ गए कि हमको इसको और मजबूत करने की वजह से और रिजल्ट हमको आ

0: है।
1: यदि मैं आपसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात करूं, जिसे हम सभी टॉप्स के नाम से जानते हैं, तो ये खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। ये भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो इस तरह की जो योजना है, तो भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक प्रदर्शन में काफी बदलाव हमें देखने को मिला है बीते कुछ समय में। तो इस योजना की आज की स्थिति और इसके फ्यूचर के बारे में, और लोगों को इससे कितना फायदा हो सकता है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: टारगेट ओलंपिक स्कीम जो होता है, इसके द्वारा खिलाड़ियों को कस्टमाइज सपोर्ट दिया जाता है। इसमें हम एक्सपर्ट कोचेस, खेल उपकरण, खेल विज्ञान विशेषज्ञ, फॉरेन एक्सपोजर वगैरह दिया जाता है। और इस एथलीट को, जो चुने हुए एथलीट्स है, इनको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग किया जाता है। आपने जैसे बताया कि इसका फल हम सबको पिछले 10 साल में ओलंपिक्स में, आशियाई खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में देखने को मिला है। इसमें हमको आगे ओलंपिक एस्पिरेशंस के हिसाब से अगर सोचे,
1: जी
0: ओलंपिक आकांक्षा के हिसाब से हम अगर सोचे, तो और सपोर्ट करने की जरूरत है। और उसी दिशा में बहुत पहल लिया जा रहा है। एंड डिलीवरी मैकेनिज्म जो है टॉप्स का, उसको मजबूत करने की प्रयास निरंतर जारी है।
1: हिमा जी, आज के समय में भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। तो ये जो युवा शक्ति है, और वो ऐसा युवा जो स्कूल और कॉलेज से निकल रहा है, वहां से पास आउट हो रहा है, तो खेल की संस्कृति की ओर भी आकर्षित हो रहा है। इसमें और बेहतर बनाने के लिए ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, युवा जो है वो खेल संस्कृति का लाभ उठाए, और जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, खासतौर पे ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या फिर विश्व कप हो, इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए वो किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: हम अगर युवाओं के बारे में बात करें, तो दो चीज हमेशा याद में आता है कि एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड और दूसरा है उनका फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो जरूरी है, ये दोनों। और इसमें अगर खेल में हम बात करें, हमेशा पॉपुलेशन की बात होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से मेडल कितना आना चाहिए इसका बात होती है, पर हमको ये मिसिंग लिंक जो है कि इस पॉपुलेशन में कितने बच्चे खेल पा रहे हैं और वो युवा होने के बाद कितने साल खेल पा रहे हैं और खेल के ऊपर उनका समय कितना है, न्यूट्रिशन कैसा है। तो हम खेल को सिर्फ मेडल के रूप में नहीं, खेल को हम अगर जब सेफ सिक्योर लाइवलीहुड के रूप में, खेल को जब हम फिटनेस के रूप में, खेल जीवन के भाग के रूप में जब देखेंगे हम, तब ज्यादा से ज्यादा युवा और बच्चे हम खेल की तरफ आएंगे और तब हमको ऑटोमेटिकली मेडल ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो भी पहल है, खेलो इंडिया के द्वारा या टॉप्स के द्वारा, फिट इंडिया के द्वारा, स्कूल्स के साथ जुड़े रहने का जो प्रयास है, ये सब उसी के लिए है।
1: जी हेमा जी, इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा रहे हैं, और 2026 का ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसमें 124 सदस्यीय भारतीय दल उतरा है। हमारी शुरुआत भी बड़ी अच्छी हुई, स्वर्ण पदक के साथ में हमारी शुरुआत हुई है, और मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक जीता, इतिहास रचा है। तो ये जो सफलता हमें मिल रही है, इस सफलता के लिए आपको क्या लगता है कि अभी जो कुछ समय से हमारी योजनाएं खेल के लिए चल रही हैं और जो तैयारियां हमारी हैं, उनका कितना योगदान है?
0: हमारा तैयारी ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये एक स्टेक होल्डर का रिजल्ट नहीं है, ये बहुत सारे स्टेक होल्डर जब कोलैबोरेशन में और कन्वर्जेंस में काम किया है, उसी का नतीजा है ये आज हम देख रहे हैं। और ये जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे इंटरमीडिएट और ग्रास रूट लेवल पे खेलो इंडिया काम कर रही है, टॉप्स एलीट लेवल के लिए काम कर रही है, और अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स, एशिया गेम्स, ये सब हम देखें, तो एक माहौल बन चुका है देश में। और नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, हॉकी टीम, ये सब एक माहौल बन चुका है। और सक्सेस इज कंटेजियस आज के दिन में स्पोर्ट्स में, और एक को देख के एक और बढ़कर एफर्ट लगा रहे हैं, ये सबको ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस, एक्सपर्ट कोचेस, ये सब मदद हो रहा है। और आगे हम ये उम्मीद है कि हम इससे और गुना मेडल देश के लिए आएगा, उसी के लिए प्रयास है।
1: हिरमा जी, एशियाई खेलों की अगर हम बात करें, तो साल 2014 में भारत ने 57 पदक जीते थे और 2023 में रिकॉर्ड 107 पदक हासिल किए, लगभग दोगुने तक हम पहुंच चुके थे। तो क्या ये बेहतर खिलाड़ियों का परिणाम आप मानती हैं, या जो हमारी देश की सशक्त हुई खेल नीति है उसका असर है?
0: दोनों को क्रेडिट देने की जरूरत है इसमें,
1: जी
0: क्योंकि जब आपको इसमें अगर एक ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट अगर देखा जाए, तो जब नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला टोक्यो ओलंपिक्स में,
1: जी
0: तब उसके बाद एक उम्मीद आई है कि एथलीट्स में कि हम भी कर सकते हैं, और
1: जी
0: एक माहौल भी बन गया कि पूरे देश में कि अगर नीरज चोपड़ा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का स्ट्रेंथनिंग करना, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस हमारा स्पोर्ट्स

0: अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनको मजबूत करना, खेल विज्ञान विशेषज्ञों को बहुत ताकत देना, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को ताकत देना, एथलीट का कस्टमाइज सपोर्ट देना, टॉप्स के द्वारा हमारा सेंटर्स में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ जुड़ के काम करना, तो ये कन्वर्जेंस, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और जो हम मजबूत करने का जो भी एफर्ट्स है, इसी का नतीजा है।
1: हेमा जी, अभी आपने ओलंपिक का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक बात आती है कि अगर हम पैरालंपिक का यहाँ पर जिक्र करते हैं तो भारत ने 2016 में 4 पदक जीते थे पैरालंपिक में, वहीं 2024 में 29 पदक जीते। ये बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि रही है भारत के लिए। तो पैरा खिलाड़ियों का जो ये पहले की तुलना में बेहतर हम परिणाम देख रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है उन अवसरों की ओर इशारा करता है जो उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे की अगर योजना की हम बात करें तो किस तरह के और बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं?
0: अगर हम पैरा खेल की बात करें, ये तो मानना पड़ेगा कि पैरा एथलीट्स जो है हमारा, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी प्रेरणादायक है
1: जी।
0: हम अगर जब वो मेडल जीतते हैं, जो उनका चैलेंजेस पार करके जो मेडल जीतते हैं, वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उसको रिकॉग्नाइज करते हुए जो सपोर्ट उनको मिल रहा है हमको टॉप्स के द्वारा, टॉप्स आजकल पैरा एथलीट्स भी टॉप्स में है
1: जी,
0: और हमारा खेलो इंडिया एथलीट्स जो हमारा उत्कृष्ट एथलीट्स को हम जो सपोर्ट करते हैं उसमें भी पैरा शामिल है। इसके अलावा डेडिकेटेडली खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हुआ है, उसमें से भी बच्चे निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट उस खेलो इंडिया एथलीट्स 6 एथलीट्स पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में
1: जी।
0: तो हमको ये आगे जाके पैरा खिलाड़ी जो भी है उनको प्रोत्साहन करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्लासिफायर्स को बनाने की जरूरत है, एक्सपर्ट कोचेस को इसमें बनाने की जरूरत है हमको, और बहुत सारे फैसिलिटीज। हम खेलो इंडिया में ये भी स्टेप लिया है कि अगर कोई प्राइवेट एकेडमी एक्सेसिबिलिटी के साथ है, वो पैरा फैसिलिटी के लिए अक्रेडिटेशन लेना चाहती है, वो भी सुविधा आज के लिए अवेलेबल है। तो हम पैरा अक्रेडिटेड अकेडमी, जो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन हो सकता है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है आज के दिन में। हम उनके लिए ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र अवेलेबल करने की जरूरत है, इससे बहुत ज्यादा मेडल आने की चांसेस है
1: जी। हेमा जी, बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। देश में खेल संस्कृति विकसित करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं जो बहुत ही छोटी जगहों से आए हैं हमारे सामने, तो इनकी सफलता और भारत की मौजूदा खेल नीति और भविष्य की बात करें तो इनके बारे में आपके विचार क्या होंगे?
0: जो बच्चे आते हैं खेल में, उनके लिए एक भूख होता है, एक लक्ष्य होता है, बहुत बच्चों के लिए एक अपवर्ड मोबिलिटी की मौका होती है स्पोर्ट्स, तो हमको इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की तरफ बहुत बच्चों को हमको नर्चर करने की जरूरत है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल में आना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एकीकरण हो जाता है
1: जी।
0: और हमको देश में बहुत सारे प्रशिक्षित कोचेस का जरूरत है। हमको पीईटीस है, पीईटीस को हम ग्रास रूट कोचेस को डेवलप करने की जरूरत है, वो हमारा देयर और आईज ऑन द ग्राउंड, तो ये प्रशिक्षित कोचेस को बनाने का बहुत जरूरत है। और जैसे बताया था कि टैलेंट खोज और टैलेंट डेवलपमेंट सही टाइम पे करे, सही तरीके से करे, तब हमको ज्यादा से ज्यादा मेडल प्राप्त करने का अवकाश है। और हम सबको और ज्यादा कन्वर्जेंस करने की जरूरत है, इनके लिए जो भी सुविधा स्कीम कानून मजबूत करने की जरूरत है, वो सबकी दिशा में ही प्रयास और सोच दोनों जारी है।
1: हेमा बिंदु जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद निखिल।
2: अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया से भारत में खेल परिदृश्य में आए बदलाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी भारतीय खेल प्राधिकरण में उपनिदेशक एस हेमा बिंदु। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित देश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है, ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
4: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता के अंतर्गत सैम नियाजी और साथियों की आवाज में कव्वाली। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे फतेह अली का सितार पर बजाया गया राग जोग। आपको तबले पर संगत दी मोहम्मद अकरम ने।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में श्री फतेह अली का सितार पर बजाया गया राग जोग, आपको तबले पर संगत दी मोहम्मद अकरम ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक

देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: को साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: साथ ही जैसे कि हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी फिल्में जिसके गीतों में उसका नाम छुपा है। एक ऐसी फिल्म का गीत आपने अभी सुना, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। जी हाँ, फिल्म साजन, ये है फिल्म साजन और ये साल 1991 में आई, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन किया लॉरेंस डिसूजा ने। और बात करें अगर मुख्य कलाकारों की तो संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित इसमें मुख्य किरदारों में नजर आए। नदीम श्रवण का संगीत था और गीत बहुत लोकप्रिय रहे। ये फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। तो चलिए, जैसे कि हम बता रहे हैं कि कुछ ऐसे गीत हम लेकर आ रहे हैं जिसकी फिल्में जो हैं, जो फिल्में हैं उसमें कोई ना कोई एक ऐसा गीत ज़रूर है जहां पर उस फिल्म का नाम लिया जा रहा है। तो अगला जो गीत आप तक पहुंच रहा है उसमें भी फिल्म का नाम छुपा हुआ है।

0: साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: साथी, जैसे कि आज हम ऐसे गीत सुनवा रहे हैं जिसमें उन गीतों के साथ ही साथ उस फिल्म का नाम भी छुपा हुआ है, यानी कि कोई एक ऐसा गीत ज़रूर होता है जहां पर उस फिल्म का नाम भी बताया जा रहा है। जैसे कि साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर, जिसका टाइटल गीत आपने सुना, और उसके बाद हमने आपको सुनवाया फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत, जो कि साल 1994 में आई। काफ़ी पसंदीदा की गई ये फिल्में और लोगों की जुबान पर इन फिल्मों के गीत भी रहे। कुछ ऐसे ही गीतों की श्रृंखला आज हम इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं। तो चलिए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का वो गीत जिसमें सबसे ज़्यादा जो है उस फिल्म के गीतों को पसंद किया गया। ये साल जो था, ये ऐसा साल था जिसमें कि ये कहिए कि आज के जो अभिनेता हैं, जैसे आप और हम बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने फिल्मी फलक पर कदम रखा और एक ऐसा कदम रखा कि उसके बाद उन्हें कोई रोक नहीं पाया।

साल 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया, जो कि एक बहुत बड़ी हिट कहलाई और आज भी लोग इस फिल्म को पसंद करते हैं। जो गीत आपने सुना वो आवाज़ें थी एस वी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की।

साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

साल 2000 में आई फिल्म कहोना प्यार है, जिसका ये गीत आपने सुना। फिल्म में नवोदित कलाकार रहे ऋतिक रोशन और उनके साथ रही अमीषा पटेल। फिल्म काफ़ी लोकप्रिय हुई, खासकर युवाओं को ये फिल्म बहुत पसंद आई। और इस फिल्म का ये गीत सुन लिया है आपने, और अब इस गीत के साथ ही आपसे विदा लेने का भी वक्त हो चला है। लेकिन आपको चलते चलते खूबसूरत से गीत के साथ छोड़कर जा रही हूँ। ये फिल्म जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, ये आई साल 1994 में, और ये एक बेहद ही लोकप्रिय फिल्म रही, जिसने एक बार फिर से बताया कि जो संयुक्त परिवार होते हैं वो कितने वैल्यूएबल होते हैं, यानी कि कितने मूल्यवान होते हैं, और रिश्तों को किस तरह से सजो कर रखा जाता है। आज भी इस फिल्म के गीतों को बहुत पसंद किया जाता है। तो फिलहाल इस गीत को आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसी गीत के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संकेत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। भाजपा की बांसुरी स्वराज ने विधेयक को परीक्षा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई की दिशा में अहम कदम बताया। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा

0: पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने साइबर सुरक्षा में सेंध लगने की मीडिया रिपोर्टों को गलत और अपुष्ट बताते हुए खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संबंधित एजेंसियों ने इस मामले की गहन जांच की है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर साझा किया जा रहा अधिकांश डेटा गोपनीय नहीं है। कुछ दस्तावेज वर्ष 2020 से 2022 के दौरान हुई पुराने डेटा लीक से जुड़े हैं। मंत्रालय के अनुसार कुछ लोगों ने पुराने दस्तावेजों में फेरबदल कर उन्हें नया और गोपनीय बताने की कोशिश की है। जांच में यह भी सामने आया कि ये दस्तावेज पुराने हैं, इनमें कई बार संशोधन हो चुके हैं और इनका वर्तमान संचालन से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। अनुभवी खिलाड़ी रविन्द्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by V.C. Pramod. The Lok Sabha took up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment 2026 Bill incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special task force fast courts for the court day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the new legislation reflects the government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice so that the

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। रात के 12:10 और 10 सेकंड हो चुके हैं। श्रोताओं, अब ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम का, जिसका नाम है सुरों का सफरनामा। श्रोताओं, हम बात करते हैं कार्यक्रम सुरों के सफरनामे की, और जिसमें आप सुनते हैं सुरों की दुनिया की, संगीत की दुनिया की, फिल्मी दुनिया की, उस आवाज को, उस संगीत को जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं। आज एक ऐसी ही मदहोश कर देने वाली आवाज की हम बात करेंगे, जिसे सुनते ही हम सबके जहन में कुछ यूं ख्याल आता है कि ये जो दिल है, ये समय है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी आवाज की गुजारिश करता है और उसकी आवाज सुनने को दिल तरसता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुमार सानू की।

तो हम बात कर रहे हैं कुमार सानू की, एक ऐसे गीतकार की जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था। कुमार सानू का मूल नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। उनके पिताजी स्वयं एक अच्छे गायक और संगीतकार थे। उन्होंने ही कुमार सानू को गायकी और तबला वादन सिखाया था। गायक किशोर कुमार को अपना आदर्श मानने वाले सानू ने गायकी में अपना खुद का अलग अंदाज बनाए रखा है। उनको पहला ब्रेक जगजीत सिंह ने दिया। उन्होंने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने जगजीत सिंह ने जब उन्हें काम दिलाया तो जगजीत सिंह ने उन्हें कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया। उन्होंने 1989 यानी 1989 में आई फिल्म जादूगर के लिए गाना गाया और यही पहला ब्रेक था और यहीं से जो सफ़र है शुरू हुआ था वो अभी भी कायम है। एक के बाद एक ऐसे गाने गाए कुमार सानू ने कि आज भी उनके गीत सुनकर हमारे दिल के तार छिड़ जाते हैं।

प्रथम आप सुन रहे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और बात हो रही है आज कुमार सानू जी की। जी हाँ, कुमार सानू की अगर निजी जीवन की बात करें तो उनकी पहली शादी 1980 के दशक में रीता भट्टाचार्य से हुई थी। उनको 3 बच्चे हुए, जीको, जस्सी और जान कुमार सानू। 1993 में दोनों अलग हो गए। बाद में सानू ने सलोनी भट्टाचार्य से शादी कर ली। इस जोड़े की 2 बेटियां हैं, यानी सानू और सलोनी की 2 बेटियां हैं। शैनन के, जो एक बॉलीवुड पार्श्व गायिका हैं, उनकी छोटी बहन एनाबेले कुमार सानू एक गीतकार और लेखिका है। और वो दोनों बच्चे या जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सिंगिंग इंडस्ट्री से, चाहे गायकी में चाहे लेखनी में, वो भी कुमार सानू जी के पद चिन्हों पर चलते हुए एक नया मुकाम और एक बड़ा अच्छा और अलग मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी

श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं कुमार सानू की, उनकी गायकी की, उनके गानों की। एक दिन में 28 गानों का रिकॉर्ड बनाया है गाकर। एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करवाने वाले वो एकमात्र गायक हैं जिन्होंने 10,000 गाने भी गाए हैं। कुमार सानू का आज के दौर के संगीत के बारे में कहना है कि आज के संगीत से मेलोडी, सुर, ताल गुम होता जा रहा है और उसकी जगह शोर ले रहा है। यही वजह है कि आज के अधिकतर गीत यादगार नहीं होते। उनकी चाहत हमेशा से रही कि काश उन्होंने सचिन देव बर्मन यानी SD देव बर्मन साहब के लिए कोई गाना गाया होता, लेकिन उनके गाने, उनके लिए गाना नहीं गाया, लेकिन कुमार सानू के गाने, उनके गाने आज भी हम सबके चहेती लिस्ट में हैं, हम सबकी विश लिस्ट में होते हैं।

0: बताऊँ, बात हो रही है कुमार सानू की, उनके गीतों की और उनकी उस कलाकारी की जिसकी झलक हर गीत में दिखती है, और इसी के चलते वो हिंदी फिल्म जगत की एक बहुत ही मशहूर गायक है, जिन्होंने अपने गाने की शुरुआत साल 1989 से की थी भले, लेकिन उन्हें अवार्ड्स इतनी मिले उनके गानों के चलते। 2009 में इन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री भी मिल चुका है और ये भारत के फेमस गायकों में से एक हैं। बहुत समय से वो बंगाली फिल्मों में सक्रिय हैं और हिंदी फिल्मों में कम। सन 2009 में उनके अभूतपूर्व संगीत योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। फिल्म राउडी राठौर के गीत छम्मक छल्लो छैल छबीली के साथ दोबारा वापसी की। सन 2014 की रिलीज यशराज फिल्म की ये फिल्म थी, दम लगा के हाइशा की फिल्म में गीत था जो वो दर्द करारा गाया उन्होंने। और इस तरह की जो उनका योगदान था, खासकर उनकी गीत उनकी उनका जो एक जज्बा था संगीत को लेके, वो हम सब ने देखा है और हम सब ने सुना है बिल्कुल इस गीत की तरह।
1: कम ऑन अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे।
2: हाँ, कम ऑन अरुण,
3: कम ऑन अरुण,
2: कम ऑन यार।
4: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
2: अरे ये क्या हुआ, ये तो शम्मा ही बुझ गई। अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिर तो नहीं गया।
1: क्या मालूम।
2: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं।
4: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

श्रोताओं, बात हो रही है कुमार सानू की और उनके गीतों की। कुमार सानू को अधिकतर 1990 के दशक की फिल्मों में दिए गए पार्श्व गायन के लिए जाना जाता है। जुर्म फिल्म के जब कोई बात बिगड़ जाए से उन्हें पहली सफलता मिली, लेकिन उन्हें आशिकी ने सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म ने उन्होंने शुरुआत कर लगातार 5 सालों तक 1991 से लेकर 1995 तक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व पुरस्कार जीता, यानी जो सर्वश्रेष्ठ मेल सिंगर का अवार्ड था फिल्म फेयर का, लगातार 5 सालों तक उन्होंने जीता, 1991 से लेकर 1995 तक, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

0: आपका क्या ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
0: पॉइंट नोटेड मिस्टर
1: रोहित।
0: मिस्टर
1: रोहित।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम सुनो का सफरनामा और बात हो रही है कुमार सानू की। अगर हम उनकी जो अवार्ड्स हैं उसकी बात करें तो मैंने आपको बताया 1991 से लेकर 1995 तक लगातार उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है गायकी में। गानों की बात करें तो 1991 में अब तेरे बिन फिल्म आशिकी से और 92 में मेरा दिल भी कितना पागल है साजन से और 1993 में सोचेंगे तुम्हें प्यार फिल्म दीवाना और 1994 में काली काली आंखें फिल्म बाजीगर से और 1995 में फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये 5 लगातार उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को आज भी वो होल्ड करते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम सुरों का सफरनामा यही खत्म होता है, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं कुमार सानू की एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ। बने रहे हमारे साथ और सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज़ 24।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1 बजने को है अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ताइपे ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के रौनक चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। विश्व रैंकिंग में 66वें स्थान पर काबिज रौनक ने क्वालिफाइंग मुकाबलों में 2 जीतें दर्ज की। पहले मैच में उन्होंने कनाडा के जोशुआ गुएन को 21-15, 21-11 से हराया। इसके बाद रौनक ने ताइपे के कुओ कुआन लिन को 24-22, 21-10 से मात देकर BWF सुपर 300 टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। दूसरी ओर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज प्रिया घंघास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को 4-1 के अंकों से हराया। इस जीत के साथ उन्होंने भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तुम्हें बिजलियों की चमक हमने दी है, तुम्हें बिजलियों की चमक हमने दी है। तुम इस हुस्न पर खुद पछताओ।

है अरुण कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा तुरंत रोकने और घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। आयोग के अनुसार संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के दौरान हुई झड़पों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई और कई

घायल हो गए हैं। मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि रावलकोट में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरों से वो चिंतित है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उपायों की समीक्षा की। श्री सोनोवाल ने विदेश मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और ओमान, सऊदी अरब, ईरान, रूस और यूक्रेन सहित कई देशों के भारतीय मिशन प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में वैश्विक समुद्री परिवहन मार्गों पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा, आपात स्थिति में सहायता और तैयारियों की जानकारी दी गई। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों बैठकें सकारात्मक और सार्थक रहीं। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों, ड्रोन समझौते, पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की कथित गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की हरजिंदर कौर ने महिला 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश की पदक तालिका में एक और पदक जोड़ दिया है। हरजिंदर ने कुल 227 किलोग्राम भार उठाया। उन्होंने स्नैश में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम का भार उठाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात के 2 बजकर 10 मिनट और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज 24/7।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 27 चैनल पर। रात के 3 बजने को हैं, अब समाचार होंगे। पहले आप हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।

जी हाँ, बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। यह गजल है वाकई बहुत ही शानदार और बेहतरीन गजल। जी हाँ, गजल का मूड बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत ही सुकून देने वाली खूबसूरत गजलें होती हैं। एक और इसी कड़ी में शानदार गजल आ रही है, जिंदगी चंद सवालों के सिवा। जी हाँ दोस्तों, एल्बम भी इसी के द्वारा है और आवाज मीनल जैन की।

यह एल्बम सन 2026 की है और इस गजल को गीतकार हैं मिलिंद गधावी और संगीत से सजाया है जयदेव गोसाई और कुणाल परमार ने। आइए सुनते हैं एक और शानदार गजल।

जनाब अब्दुल हमीद अदम साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें अदम साहब ने रंग खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताजा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले कतार से

बेहद बेहद खूबसूरत, लाजवाब, अनमोल खूबसूरत गजल, वाकई बहुत ही शानदार अनमोल रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। यह गजल भी अपने आप में बहुत ही उम्दा है, बेहतरीन है, लाजवाब है। जब आप इस गजल को सुनेंगे तो वाकई खो से चले जाएंगे, जैसे कि रूह में बस जाती हैं कुछ ऐसी गजलें जो जिंदगी भर ताउम्र हमेशा सुनने को जी चाहता है। ऐसी ही एक और खूबसूरत गजल आ रही है, तन्हा तन्हा हम रो लेंगे। बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, बेहतरीन गजल है जगजीत सिंह साहब की आवाज में। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार गजल।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई 2026। सुबह के 4 बजने को हैं। और अब इन मीटरों पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कार्यक्रम के विवरण बता देते हैं और अब से कुछ देर बाद कार्यक्रम का सबसे पहले 5 बजे 5:05 पर, माफ कीजिएगा, 5 बजे हिंदी में समाचार सुनिए और 5:05 पर हिंदी न्यूज़ सुन सकते हैं। 5:10 पर आओ योग करें कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे योग, भद्रासन और अश्वत्थासन और 5:20 पर देशभक्ति गीत फिल्मों से। 5:30 पर होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी, जिसमें आप सुनेंगे अदलखा वोकल राग अहीर भैरव में। 6 बजे न्यूज इन हिंदी और 6:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट पर कार्यक्रम होगा वंदना, जिसमें आज आप सुनेंगे मेरे गणपति बाबा बेड़ा पार करो। 6:40 पर

0: कार्यक्रम होगा चिंतन। साथियों, 5 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। वहीं चर्चा में भाजपा के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके विरुद्ध कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार अब तक नीट विरोध प्रदर्शन के संबंध में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ यह अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAC के मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। भारतोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। वहीं एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मुक्केबाजी में भारत के 3 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है। प्रिया घंघास, प्रीति पवार और जादूमणि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर

0: Nothing Bunjadumuni Singh assured the country of at least a bronze medal after outclassing Male Mingo in the men's 55 kg quarterfinals in Glasgow. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें। आज का योगा है भद्रासन और अश्वत्थासन। तो आइए सुनते हैं आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और सांस भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः सांस भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी सांस लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन सांस पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात सांस भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन सांस का अभ्यास करें, और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी सांस प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन सांस के बाद सांस छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहने जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी सांस से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। आज आपने जाना भद्रासन और अश्वत्थासन। आओ योग करें कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत हयात ढूंढते चलो, सतीश भाटिया द्वारा गायन।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत देश गान, एक और देश गान सुनवा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत देश गान है, सेवा में तेरी भारत। आइए सुनते हैं एक और देश गान।